आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.5 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद है, देश का चैनल देश के लिए। आज सोमवार सितंबर 1947 के ज्येष्ठ मास की सत्रहवीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। सुबह के 7 बजे सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक समय की बात है, एक राजा ने एक बंदर को अपने सेवक के रूप में रखना शुरू कर दिया। जहां भी राजा जाता, बंदर भी उसके साथ जाता। राजा के दरबार में उस बंदर को राजा का पालतू होने के कारण कोई भी रोक टोक नहीं थी। गर्मी के मौसम में एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। बंदर भी शयन कक्ष के पास बैठकर राजा को पंखे से हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी आई और राजा के सीने पर आकर बैठ गई। जब बंदर ने उस मक्खी को बैठे देखा तो उसने उसे उड़ाने का प्रयास किया। हर बार वो मक्खी उड़ती और थोड़ी देर बाद फिर राजा के सीने पर आकर बैठ जाती। ये देखकर बंदर गुस्से से लाल पीला हो गया। गुस्से में उसने मक्खी को मारने की ठानी। वो बंदर मक्खी को मारने के लिए हथियार ढूंढने लगा। कुछ दूर ही उसे राजा की तलवार दिखाई दी। उसने वो तलवार उठाई और गुस्से में मक्खी को मारने के लिए पूरे बल से राजा के सीने पर मार दी। इससे पहले कि तलवार मक्खी को लगती, मक्खी वहां से उड़ गई। बंदर के बल से किए गए वार से मक्खी तो नहीं मरी, मगर उससे राजा की मृत्यु अवश्य हो गई। कहते हैं, मूर्ख की दोस्ती कभी हितकारी नहीं होती।
0: जीवन सौरभ।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.1 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं मित्रावरुण, छंद है अतिशक्वरी।
3: सुषुमा यातमद्रिभिर गोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे आराजाना दिविस्पृशास्मत्रा गंतमुपनः इमे वाम मित्रा वरुणा गवाशिरः सोमाः शुक्रा गवाशिरः। हे मित्र और वरुणदेव, हम इस सोमरस को पत्थरों द्वारा कूट कर निचोड़ते हैं। यह गो दुग्ध मिश्रित सोम निश्चित ही आनंद प्रद है, अतएव आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। अति दीप्तिमान तथा दिव्य लोक को स्पर्श करने वाले आप दोनों हमारे पालन पोषण के निमित्त यहाँ आए। हे मित्र और वरुण देवों, यह पवित्र सोमरस गोदुग्ध तथा जल में मिलाकर तैयार किया गया है, जो आपके लिए प्रस्तुत है। इम आ यातमिंदवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः उत वामुषसो बुधिसाकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारु रुरिताय पीतये। हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों निचोड़कर तैयार किए गए दूध और दही में मिश्रित तेजस्वी सोमरस का पान करने के लिए यहाँ आए। आपके लिए प्रभात वेला में सूर्य रश्मियों के प्रकाशित होने के साथ ही यह सोमरस अभिषुत किया गया है। मित्र और वरुण देवों के लिए यह अभिषुत सोम प्रस्तुत है। ताम वाम धेनुम न वासरी मंशु दुहन्त्यद्रिभिः सोमम दुहन्त्यद्रिभिः अस्मत्रा गन्तमुप नोर्वांचा सोमपीतये अयम वाम मित्रा वरुणा नृभिः सुतः सोम आपीतये सुतः। हे मित्र और वरुण देव, आपके लिए ऋत्विक गण उसी प्रकार पत्थरों को कूट कर सोम वल्लियों से रस निचोड़ते हैं, जिस प्रकार गौवों से दूध का दोहन किया जाता है। आप दोनों हमारे संरक्षण के लिए सोमपान हेतु यहाँ आए। हे मित्रा वरुण देवो, आप दोनों के पान करने के लिए ही याज्ञिकों द्वारा सोमरस निचोड़ा गया है।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

अभी आपने सुना भजन राम रतन धन पायो। राम रूपी रतन जो पा लेता है एक दफा, ये क्यों कहें कि इंसान का जन्म ही होता राम से है, राम के लिए होता है, अंतिम मिलन भी राम से ही है। तो राम रतन धन पायो, जन्म पर भी और इस दुनिया को छोड़ने पर भी इंसान राम रतन धन ही पाता है। जब तक इस दुनिया में रहता है तब भी राम की शरण में रहे तो राम रतन धन हमेशा उसके पास, भगवान राम रूप में रहता है।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ब्रह्मदेश वर्मा पर विजय और सिख युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर निष्कंटक राज्य करने के सपने देखे, पर उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर तुषारपात का वर्ष सिद्ध होगा। देशव्यापी युद्ध की गोपनीय तैयारियां होने लगी, किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा थी। म्यान में पड़ी भारतीय तलवारें बाहर निकलने को आतुर हो रही थीं। वीरों के भाले शत्रु के रक्त के प्यासे हो रहे थे। भारतीय बंदूकें और तोपें अग्नि वर्षा के लिए विकल हो उठी थीं। वीरों की भुजाएं अब फड़क रही थीं। आजादी के दीवानों को प्रतीक्षा के एक पल एक वर्ष जैसे लंबे लग रहे थे। आखिरकार एक दीवाने के धैर्य का बांध टूट ही गया और वे सामूहिक अभियान की प्रतीक्षा किए बिना ही अंग्रेजों को ललकारते हुए रणभूमि में कूद पड़े। 29 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य के दिन के रूप में उदित हुआ था। 5वीं कंपनी की 34वीं रेजिमेंट का 446 नंबर का सिपाही वीरवर मंगल पांडे अंग्रेजों के लिए प्रलय सूर्य के समान निकला था। बैरकपुर की संचलन

रणभूमि में प्रलय वीर मंगल पांडे का रणघोष गूंज उठा। बंधुओं उठो, उठो, तुम अब भी किस चिंता में निमग्न हो? उठो, तुम्हें अपने पावन धर्म की सौगंध। चलो, स्वातंत्र लक्ष्मी की पावन अर्चना करेंगे। इन अत्याचारी शत्रुओं पर तत्काल प्रहार करो।

मंगल पांडे के बदले हुए तेवर देखकर अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन उनके पद को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने उन विद्रोही को उसकी उद्दंडता का पुरस्कार देना चाहा। अपनी कड़कती आवाज में मंगल पांडे को खड़ा रहने का आदेश दिया गया। वीर मंगल पांडे के अरमान अब मचल उठे। वो शिव शंकर की भांति सनद्ध होकर रक्त गंगा का आवाहन करने लगे। उनकी सबल बाहुओं ने बंदूक अब तान ली। उनकी सधी हुई उंगलियों ने बंदूक का घोड़ा अपनी ओर खींचा और गोली का तीव्र स्वर वातावरण में गहरा उठा। मेजर ह्यूसन घायल कबूतर की तरह भूमि पर तड़प उठा। उसका रक्त भारत की भूमि पर बह गया। 1857 के वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने एक फिरंगी की बलि ले ली थी। विप्लव महायज्ञ के पुरोधा मंगल पांडे की बंदूक पहला स्वाहा बोल चुकी थी। स्वातंत्र यज्ञ की वेदी को दस्यु देह की समिधा अर्पित हो चुकी थी। ह्यूसन को धराशाही हुआ देखकर लेफ्टिनेंट बॉब वहां पर जा पहुंचा। उस अश्वारूढ़ गोरे ने मंगल पांडे को घेरना चाहा। पहला ग्रास खाकर मंगल पांडे की बंदूक की भूख अब और भड़क उठी थी। बंदूक ने दूसरी बार मुंह खोला और लेफ्टिनेंट बॉब घोड़े सहित धरती पर दिखाई दिया। गिरकर भी बॉब ने अपनी पिस्तौल मंगल पांडे की ओर साध दी और गोली चला दी। विद्युत गति से वीर मंगल पांडे गोली का वार बचा ले गए और बॉब रह गए देखते। अपनी पिस्तौल को मुंह की खाती हुई देखकर बॉब ने अपनी तलवार खींच ली और वो मंगल पांडे पर टूट पड़ा। मंगल पांडे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। बॉब ने मंगल पांडे पर प्रहार करने के लिए तलवार तानी ही थी कि पांडे की तलवार का भरपूर हाथ उस पर ऐसा पड़ा कि बॉब का कंधा तलवार वाला हाथ जड़ से कटकर अलग हो गया। एक बलि मंगल पांडे की बंदूक ने लिया और दूसरी बलि उनकी तलवार ने। लेफ्टिनेंट बॉब को गिरा हुआ देखकर एक दूसरा अंग्रेज भी मंगल पांडे की ओर बढ़ गया, लेकिन भारतीय सैनिक ने बंदूक के डंडे से उस अंग्रेज की खोपड़ी खोल दी। अपने आदमियों को गिरता हुआ देखकर कर्नल व्हीलर मंगल पांडे की ओर बढ़ा, लेकिन सभी भारतीय सिंह गर्जना कर उठे, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा आज हम अपनी पवित्र देह को स्पर्श नहीं करने देंगे। कर्नल व्हीलर जैसा था वैसा ही लौट गया। इस सारे कांड की सूचना अपने जनरल को देकर उसने अंग्रेजी सेना को बटोरा और वहां से रवाना हो गया।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ब्रह्मदेश वर्मा पर विजय और सिख युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर निष्कंटक राज्य करने के सपने देखे, पर उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर तुषारपात का वर्ष सिद्ध होगा। देशव्यापी युद्ध की गोपनीय तैयारियां होने लगी, किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा थी। म्यान में पड़ी भारतीय तलवारें बाहर निकलने को आतुर हो रही थीं। वीरों के भाले शत्रु के रक्त के प्यासे हो रहे थे। भारतीय बंदूकें और तोपे अग्नि वर्षा के लिए विकल हो उठी थीं। वीरों की भुजाएं अब फड़क रही थीं। आजादी के दीवानों को प्रतीक्षा के एक पल एक वर्ष जैसे लंबे लग रहे थे। आखिरकार एक दीवाने के धैर्य का बांध टूट ही गया और वे सामूहिक अभियान की प्रतीक्षा किए बिना ही अंग्रेजों को ललकारते हुए रणभूमि में कूद पड़े। 29 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य के दिन के रूप में उदित हुआ था। 5वीं कंपनी की 34वीं रेजिमेंट का 446 नंबर का सिपाही वीरवर मंगल पांडे अंग्रेजों के लिए प्रलय सूर्य के समान निकला था। बैरकपुर की संचलन भूमि में प्रलय वीर मंगल पांडे का रणघोष गूंज उठा। बंधुओं उठो, उठो, तुम अब भी किस चिंता में निमग्न हो? उठो, तुम्हें अपने पावन धर्म की सौगंध। चलो, स्वातंत्र लक्ष्मी की पावन अर्चना करेंगे। इन अत्याचारी शत्रुओं पर तत्काल प्रहार करो।

मंगल पांडे के बदले हुए तेवर देखकर अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन उनके पथ को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने उन विद्रोही को उसकी उद्दंडता का पुरस्कार देना चाहा। अपनी कड़कती आवाज में मंगल पांडे को खड़ा रहने का आदेश दिया गया। वीर मंगल पांडे के अरमान अब मचल उठे। वो शिव शंकर की भांति सनद्ध होकर रक्त गंगा का आवाहन करने लगे। उनकी सबल बाहुओं ने बंदूक अब तान ली। उनकी सधी हुई उंगलियों ने बंदूक का घोड़ा अपनी ओर खींचा और गोली का तीव्र स्वर वातावरण में गहरा उठा। मेजर ह्यूसन घायल कबूतर की तरह भूमि पर तड़प उठा। उसका रक्त भारत की भूमि पर बह गया। 1857 के वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने एक फिरंगी की बलि ले ली थी। विप्लव महायज्ञ के पुरोधा मंगल पांडे की बंदूक पहला स्वाहा बोल चुकी थी। स्वातंत्र यज्ञ की वेदी को दस्यु देह की समिधा अर्पित हो चुकी थी। ह्यूसन को धराशाही हुआ देखकर लेफ्टिनेंट बॉब वहां पर जा पहुंचा। उस अश्वारूढ़ गोरे ने मंगल पांडे को घेरना चाहा। पहला ग्रास खाकर मंगल पांडे की बंदूक की भूख अब और भड़क उठी थी। बंदूक ने दूसरी बार मुंह खोला और लेफ्टिनेंट बॉब घोड़े सहित धरती पर दिखाई दिया। गिरकर भी बॉब ने अपनी पिस्तौल मंगल पांडे की ओर साध दी और गोली चला दी। विद्युत गति से वीर मंगल पांडे गोली का वार बचा ले गए और बॉब रह गए देखते। अपनी पिस्तौल को मुंह की खाती हुई देखकर बॉब ने अपनी तलवार खींच ली और वो मंगल पांडे पर टूट पड़ा। मंगल पांडे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। बॉब ने मंगल पांडे पर प्रहार करने के लिए तलवार तानी ही थी कि पांडे की तलवार का भरपूर हाथ उस पर ऐसा पड़ा कि बॉब का कंधा तलवार वाला हाथ जड़ से कटकर अलग हो गया। एक बली मंगल पांडे की बंदूक ने लिया और दूसरी बली उनकी तलवार ने। लेफ्टिनेंट बॉब को गिरा हुआ देखकर एक दूसरा अंग्रेज भी मंगल पांडे की ओर बढ़ गया, लेकिन भारतीय सैनिक ने बंदूक के डंडे से उस अंग्रेज की खोपड़ी खोल दी। अपने आदमियों को गिरता हुआ देखकर कर्नल व्हीलर मंगल पांडे की ओर बढ़ा, लेकिन सभी भारतीय सिंह गर्जना कर उठे। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा आज हम अपनी पवित्र देह को स्पर्श नहीं करने देंगे। कर्नल व्हीलर जैसा था वैसा ही लौट गया। इस सारे कांड की सूचना अपने जनरल को देकर उसने अंग्रेजी सेना को बटोरा और वहां से रवाना हो गया।

वीर मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी थी। उन्होंने शत्रु के रक्त से भारत भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसे महान कार्य के लिए अपनी रक्तांजलि देना भी उन्होंने अपना पावन कर्तव्य समझा। उन्होंने अपनी बंदूक अपनी छाती से अड़ाकर गोली चला दी। गोली छाती में सीधी ना जाकर पसलियों में फंस गई और घायल सिंह अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया कि वो मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उनके साथियों के नाम और पते पूछ सकें, लेकिन वो मंगल पांडे थे। मंगल होकर अपने साथियों का अमंगल कैसे करते? फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुनाया गया। 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया। वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे के पवित्र प्राण हव्य को पाकर स्वातंत्र यज्ञ की लपटें अब और भड़क उठी। क्रांति की ये लपलपाती हुई लपटें फिरंगियों को लील जाने के लिए अब चारों ओर फैलने लगी थीं। ऐसे थे वीर मंगल पांडे। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हम शत शत नमन करते हैं।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। कहानियां जो अपने भीतर समेटे होती हैं अथाह भाव सागर, अपने समय को जीती सांस लेती हैं शब्दों में, धड़कती हैं किताबों में। ऐसी कहानियां जो श्रोताओं के मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, वही कहानियां लेकर हम आएंगे इस कार्यक्रम में। शीर्षक है दो बहनें।

दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोध होकर खुश हुई। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई है, कुछ उसका रंग भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली पतली और फूहड़ उतनी ही और साथ में मंदबुद्धि भी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही है, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं मगर ये आकर्षण, ये जादू किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती, इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण आखिर आया कहां से, इस रहस्य का पता लगाएगी। उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। देखा, उसकी मुख छवि निष्कलंक है मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती है। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। अरे असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। फिर सोचने लगी, मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे भी बहुत निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया? कौन जाने गहने भी कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो ये स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो भाई, मैं तो जैसी हूं अच्छी हूं। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है, घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है लेकिन देवी जी वो तो निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हूं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के 2 लड़के हैं उसके, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, अरे किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी भी वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, मानो उसका पति तो लाठ ही हो। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल तो ये भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पास को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अब बीए में होगा? राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं और कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च के मिलते हैं।
ये समझ लो 500 का औसत तो पढ़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च हो गया। भाई ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए ना। 350 बेदाग घर को दे देते हैं, इसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो 1/4 तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500? इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़ी में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति? और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए? मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 रुपए मिलने लगे ना, 1000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। अरे सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या हुई। राम दुलारी जोर से हंस पड़ी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है। भाई पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है। जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अब

0: उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता, जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था, पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता, जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था, राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उससे प्रयोजन नहीं, वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे, रूप कुमारी भी उठी। एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए कार आती होगी, चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो फिर चली जाना, मैं जीजाजी से कहला भेजूंगी तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैं तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा ना तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी, दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे, ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या पैसे, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ, और आंख किसकी बचाऊं, सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो रहा नहीं केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सच कहूं सब कुछ चौपट हो जाता, मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया।
1: क्या काम करना पड़ता है?
0: रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा।

0: वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया, और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को आज वो घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाहियां, एक लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी खाटें, बस यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे कांटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना भी नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखा ली है, जो रात वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझको ही पीसते रहोगे?
0: उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, चार पांच रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा।
1: तो लाकर रख क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते।
0: हाँ, ये गलती तो हुई।
1: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूं, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं। जिंदगी नरक हो गई।
0: व्यंग्य बाणों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर ये उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बलि है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता ना। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हरेक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता, बेगार सी टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में? कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं। कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। भाई मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, और सबके सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं, भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आपके लिए एक मकान नहीं सौ सौ मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ, मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर, बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी। बस मुझे पता था, पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था, वही व्यापार मैं करता हूं। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। अरे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूं सब। और हिसाब में लिखता हूं 1000 रिश्वत दी, देता हूं 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकालकर वो उसकी चरणों की भेंट करता है और कहता है,
1: मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं, जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली, जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी, इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने ये किया, उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था। तो भाई मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं, जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा। और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो, चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था, कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है, राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है, जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है, और समाज में कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है। गुरुसेवक और रामदुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहां बैठा बैठा क्या कह रहा था, मैंने तो उसे विदा कर दिया, जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया, जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ, क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं, मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जी दिल से कहती हूं, सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो, मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं, सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया, जानता था वो सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा। ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए, मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है, मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद
0: शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है।
1: तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लो।

कला कल्लोलिनी एक अत्यंत भावपूर्ण और साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ये केवल कार्यक्रम नहीं, ये एक एहसास है, एक स्मृति है, एक ऐसी धड़कन जो आज भी हर सुर में बसती है। तो आज कला कल्लोलिनी में हम बात करने वाले हैं नौशाद अली की।

0: कला कल्लोलिनी को समझने के लिए सबसे पहले इनके दोनों शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। कला सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य आदि, भावनाओं, सौंदर्य और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कल्लोलिनी। संस्कृत शब्द कल्लोल से बना है, अर्थ लहर, तरंग, उमंग से भरी धारा। कल्लोलिनी वो जो तरंगित हो, लहरों से भरी हो।
1: इस प्रकार कला कल्लोलिनी का अर्थ है कला की लहरों से प्रवाहित होती हुई धारा, ऐसी कला जो निरंतर बहती रहे, मन को आंदोलित करे और भावनाओं में तरंग उत्पन्न करे।
0: सरल शब्दों में कला कल्लोलिनी शब्द का अर्थ है वो कला जो दिल में लहरों की तरह उठे, बहती रहे और आत्मा को छू जाए, अर्थात कला के तरंगों से लहराती हुई चेतना। और नौशाद का संगीत सचमुच उसी कल्लोलिनी का सजीव रूप है।

0: जब हम किसी महान कलाकार जैसे नौशाद अली के संगीत को कला कल्लोलिनी कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है उनका संगीत एक ऐसी धारा है जो समय के साथ बहती रहती है, जो हर पीढ़ी के दिल में नई लहर पैदा करती है।
1: जब भी कोई धुन दिल को छूकर गुजरती है, जब भी कोई गीत आंखों को नम कर देता है, तब कहीं ना कहीं उसके पीछे होता है एक नाम, नौशाद। एक ऐसा नाम जिसने संगीत को केवल रचना नहीं बल्कि पूजा बना दिया।
0: भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में यदि संगीत के अमर स्तंभों की चर्चा की जाए तो नौशाद अली का नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वो केवल एक संगीतकार नहीं थे बल्कि भारतीय संगीत परंपरा के संवाहक, नव प्रवर्तक और संवेदनशील रचनाकार थे। उनके संगीत में शास्त्रीयता की गहराई, लोक धुनों की सहजता और भावनाओं की मधुरता का अद्भुत संगम मिलता है।
1: सिनेमा संगीत को हिंदुस्तानियत का जामा पहनाने वाले नौशाद का जन्म तहजीब और नजाकत के लिए मशहूर नवाबों के शिखर लखनऊ में 25 दिसंबर 1919 को हुआ। लखनऊ उस समय कला और संगीत का प्रमुख केंद्र था, जहां गजल, ठुमरी और कथक जैसी विधाओं का विशेष महत्व था। बचपन से ही नौशाद का झुकाव संगीत की ओर था। वे मेलों, नाटकों और नौटंकी में बजने वाले संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
0: लखनऊ की गलियों में एक छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठकर संगीत की लहरों में खो जाता था। वो बच्चा जिसके सपनों में सुरों की दुनिया बसती थी, जिसके दिल में हर धड़कन एक राग बन जाती थी। लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। परिवार की बंदिशें, समाज की दीवारें, फिर भी उसने अपने सुरों को थामे रखा।
1: उनके परिवार में संगीत को पेशे के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, फिर भी उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। संगीत के प्रति उनकी प्यास बढ़ती चली गई और जल्द ही स्कूल जाते समय उन्हें रॉयल टॉकीज नाम का एक सिनेमा हॉल मिला, जहां मूक फिल्में दिखाई जाती थी। मूक फिल्मों के दौर में फिल्म से जुड़े संगीतकार अंतराल के दौरान या कुछ दृश्यों के बैकग्राउंड में संगीत बजाते थे। नौशाद के पास सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखने या संगीतकारों को सुनने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसलिए वह बाहर खड़े होकर संगीत सुनते थे और धुन के सभी सुर उन्हें याद हो जाते थे। अब वह सीखी हुई धुन को बजाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई वाद्य यंत्र खरीदने का साधन नहीं था।
0: घर वालों का मुख्य काम था मुंशीगिरी, लेकिन बालक नौशाद का मन तो पूरी तरह संगीत में बसता था। जब वो 9 साल के थे, तब लखनऊ के अमीनाबाद के मुख्य बाजार की एक दुकान जहाँ वाद्य यंत्र बिकते थे के करीब वो रोज जाने लगे। जब कई दिनों तक ऐसा हुआ तो मालिक ने एक दिन पूछ ही लिया। बातचीत के बाद नौशाद ने वहां काम करना स्वीकार कर लिया। उनका काम दुकान खुलने के समय से लेकर अन्य स्टाफ के आने से पहले की साफ सफाई था। नौशाद को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो रोज समय से आते और दुकान खुलवा कर सभी वाद्य यंत्रों की अच्छी तरह सफाई करते और उन्हें जी भर कर छूते। कुछ वक्त तो ऐसे ही बीत गया।
1: एक दिन दुकान खोलने वाले स्टाफ ने नौशाद से कहा, भैया तुम जब तक साफ सफाई करो, मैं तब तक चाय पी कर आता हूँ। नौशाद ने कहा, जी ठीक है। वे उधर गए। नौशाद ने मौका देखकर वाद्य यंत्रों पर हाथ आजमाना शुरू कर दिया। एक दिन उस साज पर तो दूसरे दिन दूसरे और तीसरे दिन तीसरे साज पर। इसी तरह हर रोज स्टाफ चाय पीने जाता और नौशाद रियाज में लग जाते। यह रोज का काम हो गया। यह सब महीनों चलता रहा। वे चोरी छिपे संगीत सीखते और हारमोनियम बजाने का अभ्यास करते थे। यही संघर्ष आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाता है।
0: एक दिन वो भी आया जब मालिक गुरबत अली समय से पहले आ धमका और नौशाद हारमोनियम बजाते पकड़े गए। नौशाद डरे हुए थे। उनकी हालत खराब थी। ठंड के समय में पसीना आ निकला था, लेकिन मालिक ऊपर से गुस्सैल बन रहा था और अंदर ही अंदर खुश था। पूछताछ के बाद अंत में मालिक ने वो पेटी यानी हारमोनियम नौशाद को दे दी और कहा, अच्छा बजाते हो, खूब रियाज करना।
1: जब गुरबत अली को पता चला कि नौशाद ने ये धुने राजमहल के बाहर खड़े होकर सीखी थी, तो उन्होंने नौशाद को राजमहल के संगीतकार उस्ताद लद्दन साहब से मिलवाने का भी प्रयास किया। लद्दन साहब नौशाद की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे खूब अभ्यास करवाया। तथा उनके अन्य सहायकों के साथ उसे काम देना शुरू कर दिया। गुरबत अली ने स्वयं भी नौशाद को संगीत का कुछ ज्ञान दिया।
0: इस प्रशिक्षण के अलावा नौशाद ने उस्ताद बब्बन साहब और संगीत महाविद्यालय के प्रोफेसर यूसुफ अली खान से संगीत की शिक्षा लेकर अपने ज्ञान को और निखारा। इन सभी उस्तादों ने नौशाद के भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के साथ साथ हारमोनियम और पियानो पर उनकी महारत को और बढ़ाया। नौशाद ने तबला, सितार, शहनाई बजाना भी सीखा। अब नौशाद ने छोटे थिएटर समूहों और नाटक के लिए वादन करना शुरू किया। वो एक समूह का हिस्सा बने और अपने दोस्तों के साथ लखनऊ, बरेली, गुजरात और कभी कभी कानपुर के आसपास के स्थानों की यात्रा भी करने लगे।
1: नौशाद अली का व्यक्तित्व बहुत सरल और विनम्र था। वे संगीत को साधना मानते थे। उनका मानना था कि संगीत केवल सुर और ताल का मेल नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है। वे अपने काम में पूर्णता के लिए जाने जाते थे। एक गीत को रिकॉर्ड करने से पहले वे कई बार अभ्यास कराते थे ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए।
0: संगीत के प्रति अपनी अटूट लगन के कारण नौशाद मुंबई आ गए। यहाँ उनका संघर्ष बहुत कठिन था। कई बार छोटे मोटे काम करके उन्होंने अपने जीवन को चलाया। मुंबई की भीड़ में एक अकेला कलाकार जिसके पास न छत थी न सहारा। फुटपाथ पर बीती रातें, भूखे पेट गुजरे दिन, लेकिन दिल में एक ही आवाज, मैं हार नहीं मानूंगा, संगीत ही मेरी पहचान है।
1: धीरे धीरे उन्हें संगीतकारों के सहायक के रूप में काम मिलने लगा। उन्होंने उस्ताद झंडे खान और खिमचंद प्रकाश जैसे संगीतकारों के साथ काम किया, जिससे उन्हें फिल्म संगीत की बारीकियों को समझने का अवसर मिल गया।
0: ये दौर उनके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि इसी समय उन्होंने अपनी कला को निखारा। भारतीय फिल्म संगीत के क्षेत्र में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संगीत और रचनाएं हमेशा प्रशंसकों के दिलों में जीवित रहेगी।
1: उनमें से एक है महान संगीतकार नौशाद अली, जिनकी जीवन यात्रा संघर्ष, समर्पण और अद्भुत सफलता की मिसाल है। उनके पिता ने उन्हें संगीत और घर में से एक चुनने की शर्त रखी थी, और शादी के समय उनके ससुर ने उनके गाने को नई पीढ़ी को बर्बाद करने वाला कहकर नकार दिया था।
0: नौशाद का घर लखनऊ के अकबरी गेट के कांधारी बाजार झवाई टोला में था। वे लाटूस रोड पर अपने उस्ताद उमर अंसारी से संगीत सीखने लगे। इस बात से उनके वालिद नाराज रहते थे। अंत में बात यहाँ तक आ गई कि वालिद ने कह दिया कि अगर संगीत को अपनाओगे तो घर छोड़ दो। नौशाद ने मन में ये बात ठान ली कि घर छोड़ना सही होगा, लेकिन संगीत नहीं। वो संगीत को अपनाए रहे। उनका अब मूल काम गाना बजाना हो गया। हालांकि उन पर कुछ समय कई बार पाबंदियां लगी, घर के दरवाजे बंद किए गए, लेकिन नौशाद ने दादी का सहारा लिया और संगीत का शौक जारी रखा। उनके पांव और ख्वाब उनके पिता कभी नहीं रोक पाए। इसी बीच उन्होंने मैट्रिक पास कर ली।
1: मैट्रिक पास करने के बाद वे लखनऊ के विंडसर एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप के साथ दिल्ली, मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर और सिरोही की यात्रा पर निकले। जब कुछ समय बाद म्यूजिकल ग्रुप बिखर गया तो नौशाद ने लखनऊ लौटने के बजाय मुंबई का रुख कर लिया और 16 वर्ष की किशोर उम्र में यानी 1935 में वे मुंबई आ गए। इस प्रशिक्षण के अलावा नौशाद ने उस्ताद बब्बन साहब और संगीत महाविद्यालय में प्रोफेसर यूसुफ अली खान से संगीत की शिक्षा लेकर अपने ज्ञान को और निखारा। इन सभी उस्तादों ने नौशाद की भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के साथ साथ हारमोनियम और पियानो पर उनकी महारत को भी बढ़ाया। नौशाद ने तबला, सितार और शहनाई बजाना भी सीखा। अब नौशाद ने छोटे थिएटर समूहों और नाटकों के लिए वादन करना शुरू कर दिया। वह एक समूह का हिस्सा बने और अपने दोस्तों के साथ लखनऊ, बरेली, गुजरात और कभी कभी कानपुर के आसपास के स्थानों की यात्रा करने लगे।
0: नौशाद के लिए मुंबई उम्मीदों का शहर था। यहाँ उन्हें पहला ठिकाने के रूप में दादर के ब्रॉडवे सिनेमा घर के सामने का फुटपाथ मिला। तब नौशाद ने सपना देखा था कि कभी इस सिनेमा घर में उनकी कोई फिल्म जरूर लगेगी। उस किशोर कल्पना को साकार होने में काफी वक्त लगा। शुरू में नौशाद ने N.A. दास यानी नौशाद अली दास के नाम से कुछ संगीतकारों के साथ काम किया। उन्हें काम मिलने लगा था, लेकिन बहुत नहीं।
1: 1940 में बनी प्रेमनगर में नौशाद को पहली बार स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का मौका मिला। इसके बाद एक और फिल्म स्टेशन मास्टर भी सफल रही। उसके बाद तो जैसे नौशाद संगीत के मोतियों की माला सी बुनते चले गए। नौशाद को पहली बार सुनहरी मकड़ी फिल्म में हारमोनियम बजाने का अवसर मिला। यह फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन शायद यहीं से नौशाद का सुनहरा सफर शुरू हुआ। इसी बीच गीतकार दीनानाथ मधो डीएन से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनका परिचय फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों से करवाया, जिससे नौशाद को छोटा मोटा काम मिलना शुरू हो गया।
0: ये नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग, कई फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। दीदार के गीत, बचपन के दिन भुला न देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, ले जा मेरी दुआएं, ले जा परदेश जाने वाले, इन्हीं गीतों की बदौलत इस फिल्म ने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद तो नौशाद की लोकप्रियता में खासा इजाफा हुआ। बैजू बावरा की सफलता से नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1982 में फाल्के अवार्ड, 1984 में लता अलंकरण और 1992 में पद्म भूषण से नवाजा गया।
1: नौशाद को सुरैया, अमीर बाई कर्नाटकी, निर्मला देवी, उमा देवी आदि को प्रोत्साहित कर आगे लाने का श्रेय जाता है। सुरैया को पहली बार उन्होंने नई दुनिया में गाने का मौका दिया, जब सुरैया इतनी छोटी थी कि उन्हें स्टूल पर खड़ा होकर गाना गाना पड़ा। जब अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी कि एक छोटी सी बच्ची ने गाना गाया है, तो फिल्म प्रोड्यूसर बहुत नाराज हुए, मगर नौशाद अपनी पसंद से वाकिफ थे। और गाना रिलीज होने के बाद प्रोड्यूसर को भी समझ आ गया कि नौशाद सही थे। इसके बाद शारदा व संजोग में भी गाने गवाए। सुरैया के अलावा निर्मला देवी से सबसे पहले शारदा में तथा उमा देवी यानी टुनटुन की आवाज का इस्तेमाल दर्द में अफसाना लिख रही हूं के लिए नौशाद ने किया। नौशाद ने ही मुकेश की दर्द भरी आवाज का इस्तेमाल अनोखी अदा और अंदाज में किया। अंदाज में नौशाद ने दिलीप कुमार के लिए मुकेश और राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी की आवाज का उपयोग किया। सन 1944 में युवा प्रेम पर आधारित रतन के गाने उस समय के दौर में सुपरहिट हुए थे।
0: जब देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उनके पिता वाहिद अली एक अदालत में मुंशी थे और परिवार संगीत को पसंद नहीं करता था। नौशाद ने बचपन में देवा शरीफ की दरगाह पर कव्वालियां सुनी थी और यहीं से वो संगीत की ओर आकर्षित हुए थे और लखनऊ में उस्तादों से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी।
1: नौशाद ने रॉयल थिएटर में साइलेंट फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने वाली टीम के साथ काम करना शुरू किया, जहां उन्हें संगीत निर्देशन की असली शिक्षा मिली। उन्होंने हारमोनियम में सुधार भी किया। बाद में वह इंडियन स्टार थिएटर कंपनी के साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात के दौरे पर गए, जहां उन्होंने विभिन्न लोक संगीत शैलियों को भी सीखा।
0: जब नौशाद ने संगीत को अपने करियर के रूप में अपनाने का निर्णय लिया, तो ये रास्ते आसान नहीं थे। लखनऊ छोड़कर मुंबई का रुख करना और उसके बाद शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष का सामना करना, यहाँ तक कि फुटपाथ पर सोना और कुछ समय तक परिचितों के घर पर रहना, और फिर मुंबई में उस्ताद झंडे खां से संगीत की बारीकियां सीखकर न्यू थिएटर के ऑर्केस्ट्रा में पियानो वादक के रूप में काम करना आपने शुरू कर दिया था।
1: 1940 में फिल्म प्रेम नगर से स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। गीतकार डीएन मधो उनकी प्रतिभा पर भरोसा जताते थे। 1942 में फिल्म नई दुनिया और शारदा ने उन्हें पहचान दिलाई। शारदा में 13 साल की सुरैया ने उनके संगीत में गाना गाया था।
0: 1944 में फिल्म रतन के साथ नौशाद को बड़ी सफलता मिली। फिल्म रतन ने उनकी किस्मत बदल दी थी, जिससे उनकी तनख्वाह 75 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए हो गई। इस फिल्म के गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए और वो रातों रात प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद नौशाद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: उनकी संगीत यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, जहां उन्होंने अपने संगीत से इतिहास रच दिया। उनकी धुनों में एक अलग ही आत्मा होती थी, जो सीधे दिलों को छू जाती थी। नौशाद के संगीत की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने रागों का प्रयोग इतनी सरलता और मधुरता से किया कि आम श्रोता भी उसे आसानी से समझ और महसूस कर सके।
0: उनके संगीत में राग यमन, भैरव, दरबारी, मालकोन आदि का सुंदर प्रयोग मिलता है। उन्होंने भारतीय लोकधुनों को भी अपने संगीत में जगह दी है, जिससे उनकी रचनाएं और भी जीवंत बन गईं। उनके गीतों में भावनाओं की गहराई इतनी ज्यादा होती थी कि श्रोता उसमें डूब जाते थे। वे बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग करते थे और लाइव रिकॉर्डिंग को प्राथमिकता देते थे।
1: नौशाद ने कई ऐसी फिल्मों में संगीत दिया जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। सन 1952 में बैजू बावरा, ये फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इसमें शास्त्रीय संगीत का अद्भुत प्रयोग हुआ। मन तड़पत हरिदर्शन को आज और ओ दुनिया के रखवाले जैसे गीत आज भी अमर हैं। एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण उनके लिए 5 अक्टूबर 1952 का था, जब दादर के ब्रॉडवे थिएटर में उनकी फिल्म बैजू बावरा का प्रीमियर हो रहा था।
0: इस दौरान जब नौशाद बालकनी में खड़े थे तो वो फफक फफक कर रो रहे थे। जब निर्देशक विजय भट्ट ने उनसे पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं, तो नौशाद ने आंसू पोंछते हुए कहा, फुटपाथ के उस पार से इस थिएटर तक आने में मुझे 16 बरस लग गए। ये उत्तर उनके संघर्ष और सफलता दोनों की कहानी बयां करता है। 1957 में आई मदर इंडिया, इस फिल्म का संगीत भारतीय ग्रामीण जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। इसमें लोक धुनों का सुंदर उपयोग किया गया। फिर नौशाद के संगीत बद्ध किए मदर इंडिया के गीत भला कैसे कोई भूल सकता है, खासकर वो होली गीत जो आज भी होली के सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जाता है। 1960 में आई मुगले आजम, ये फिल्म उनके संगीत का शिखर मानी जाती है। जब प्यार किया तो डरना क्या, और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, ऐसे गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।
1: 1961 में आई गंगा जमुना ने तो धमाल ही मचा दिया था। वह फिल्म पूर्वांचल पर की आधारित थी। उसमें एक गाना था, नैन लड़ जाई है तो मनवा मा कसक हुई बेकरी। नौशाद ने किसी कव्वाल को गाते हुए सुना था, भाग में हुई है यह सिरप की सनक हुई बेकरी। इसी कव्वाली से मुतसर होकर उन्होंने शकील बदायूनी के साथ बैठकर पूरा गाना लिखा।
0: फिर आई संघर्ष, और एक बार फिर शकील, नौशाद, रफी और दिलीप साहब की जोड़ी ने पर्दे पर धमाल मचा दी। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, रफी साहब की आवाज का जादू, यूसुफ साहब के ठुमके और शकील साहब की कलम और नौशाद साहब का संगीत, सब कुछ खालिस पुरभिया। फिल्म में उन्होंने भोजपुरी लोक धुनों का प्रयोग किया जो उस समय का एक नया प्रयोग था। उन्होंने गुलाम मोहम्मद के अधूरे संगीत को पूरा करके पाकीजा के गाने भी तैयार किए।
1: नौशाद ने अपने समय के महान गायकों के साथ काम किया और उनके स्वर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, तलत महमूद उस्ताद, बड़े गुलाम अली खान, उन्होंने हर गायक की आवाज के अनुसार संगीत तैयार किया, जिससे गीतों में अद्भुत सामंजस्य पैदा हुआ।
0: नौशाद केवल पारंपरिक संगीतकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई नए प्रयोग भी किए। पश्चिमी वाद्य यंत्रों का भारतीय संगीत के साथ संयोजन, बड़े कोरस का उपयोग, ध्वनि तकनीक में नवीनता, उन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक कला के रूप में प्रस्तुत किया।
1: एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब नौशाद मुंबई में सफल हो चुके थे, तब भी परिवार को ये नहीं बताया कि वे फिल्मों में संगीतकार हैं। एक निकाह के दौरान लाउडस्पीकर पर उनका गाना अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं बज रहा था। उनके ससुर ने इस गाने को सुनकर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे गाने नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। नौशाद चुप रहे और ये नहीं बताया कि ये गाना उनका ही है।
0: नौशाद हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने सास का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया। लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे है। भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले संगीतकारों की कमी नहीं है, लेकिन नौशाद अली के संगीत की तो बात ही अलग थी। नौशाद ने फिल्मों की संख्या को कभी तरजीह नहीं दी, केवल संगीत को ही परिष्कृत करने में लगे रहे।
1: आइए एक नजर डालते हैं उनके सुप्रसिद्ध गीतों पर। मन तरपत हरिदर्शन, बैजू बाफरा, ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बाफरा, झूले में पवन के, बैजू बाफरा, मुहे पनघट पे नंदलाल, मुगले आजम, प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम, खुदा निगेबा, मुगले आजम, मधुबन में राधिका नाचे रे, कोहिनूर, ढल चुकी शाम गम, कोहिनूर, नन्हा मुन्ना रागी हूं, सन ऑफ इंडिया, अपनी आजादी को हम, लीडर, इंसाफ की डगर पर, गंगा जमुना।
0: नौशाद और सहगल जी से जुड़े हुए भी बहुत से वाक्य हैं जिन्हें आज हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी बात जो हमेशा के लिए कालजयी सिद्ध हो गई। सहगल साहब को लगता था कि वो स्टूडियो में बहुत आसानी से कुछ गीत नहीं गा सकते, लेकिन नौशाद साहब अगर साथ हैं तो फिर क्या कहना। सहगल साहब ने अपने गाए दोनों गीत जो नौशाद साहब ने गवाए थे जब सुने तो बोले, काश मुझसे तुम पहले मिले होते, ये गीत कौन सा था इसका तो पता नहीं चला, लेकिन शाहजहां के गीत जब दिल ही टूट गया और हम जी के क्या करेंगे, इसके बाद एक और गीत गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये तीनों ही गीत कालजयी सिद्ध हुए और यहां से नौशाद साहब और केएल सहगल साहब की जोड़ी ने लोगों के बीच में, लोगों के दिल में बहुत जगह बनाई।
1: तुम महान गायक बनोगे, पहले आपके निर्देशक कारदार मियां के पास एक बार सिफारिशी पत्र लेकर एक लड़का पहुंचा। तब उन्होंने नौशाद से कहा कि भाई इस लड़के के लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है क्या। नौशाद ने सहज भाव में कहा, फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं है, हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि मैं इनको कोई समूह यानी कोरस में गवा सकता हूं। लड़के ने हाँ कर दी। गीत के बोल थे, हिंदू है हम हिंदोस्तां हमारा, हिंदू मुस्लिम की आंखों का तारा। इसमें सभी गायकों को लोहे के बूट पहनाए गए क्योंकि गाते समय पैर पटक पटक कर गाना था ताकि जूतों की आवाज का इफेक्ट आ सके। उस लड़के के जूते थोड़े टाइट थे। गाने की समाप्ति पर लड़के ने जूते उतारे तो उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। यह सब देख रहे नौशाद ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब जूते टाइट थे तो तुम्हें बता देना था। इस पर उस लड़के ने कहा, आपने मुझे काम दिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। जब नौशाद ने कहा था एक दिन तुम महान गायक बनोगे, यह लड़का आगे चलकर मोहम्मद रफी के नाम से जाना गया।
0: भारतीय फिल्म संगीत के पितामह नौशाद गंगा जमुनी तहजीब का वो नायाब रत्न हैं जिसके लिए संगीत ही मान था और जिसने संगीत को ही इबादत का दर्जा दिया था। नौशाद, ये नाम सुनते ही जहन में गूंजने लगते हैं सैकड़ों तराने जिन्हें अपनी धुनों से नौशाद साहब ने सजाया था। 26 सिल्वर जुबली, 9 गोल्डन जुबली और 3 प्लैटिनम जुबली फिल्मों का संगीत रचने वाले नौशाद मौलिक संगीत रचनाओं की एक मिसाल थे। मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग, गंगा जमुना, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, लीडर, संघर्ष, साथी, अंदाज, मेला, आदमी, राम और श्याम, कितनी ऐसी फिल्में हैं जिनके संगीत को न केवल नौशाद साहब ने हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया।
1: संगीत जगत के लिए उनके इस योगदान पर उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1954 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार बैजू बावरा के लिए दिया गया। 1961 में फिल्म गंगा जमुना के लिए बंगाल फिल्म पत्रकार संघ का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार दिया गया। सन 1975 में मुंबई के टेलीविजन सेंटर द्वारा निर्मित 30 मिनट की वृत्तचित्र फिल्म नौशाद अली, 1981 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया, 1987 अमीर खुसरो पुरस्कार, 1990 टीपू सुल्तान की तलवार टीवी श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत, 1992 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार, 1993 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1994 महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सन 2000 स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सन 2008 बांद्रा में स्थित क्वार्टर रोड का नाम उनके स्मृति में संगीत सम्राट नौशाद अली मार्ग रखा गया।
0: उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। उन्होंने शायरी भी की और आठवां सुर नामक किताब भी प्रकाशित की। नौशाद की दास्ता संघर्ष लगन और प्रतिभा की एक बेहतरीन मिसाल है। नौशाद एक प्रयोग धर्मी संगीतकार थे। आन फिल्म में उन्होंने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा के साथ संगीत दिया था। इसके उलट मेरे महबूब फिल्म का टाइटल गीत सिर्फ 6 साजों के साथ बनाया। वो पहले ऐसे मौसिकीकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत का फ्यूजन किया। साउंड मिक्सिंग शुरू करने वाले भी नौशाद साहब पहले संगीतकार थे।
1: रफी की बहुमुखी प्रतिभा का नौशाद ने बखूबी उपयोग किया। एक से बढ़कर एक नगमों को उन्होंने बंदिशें दी। नौशाद साहब ने मुकेश के दर्द भरी आवाज का इस्तेमाल अनोखी अदा, मेला, अंदाज और साथी में किया। फिल्म अंदाज में उन्होंने दिलीप कुमार के लिए मुकेश की तो राज कपूर के लिए रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया था। वो चांद खिला वो तारे डूबे, क्या रात गजब की आई, इश्क चला गए हुस्न से मिलने, जुल्म की बदली छाई, सोहनी महिवाल, महेंद्र कपूर ने नौशाद के निर्देशन में गाया था। नौशाद साहब ने केएल सहगल से लेकर कुमार शानू तक से भी गाने गवाए। केएल सहगल का गाया फिल्म शाहजहां का गाना आज भी पसंद किया जाता है।
0: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे मुस्लिम फनकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर भजन की रचनाएं की। तानसेन के गाए कई भजन थे। रसखान तो कृष्ण भक्ति में रम ही गए थे। बहुत से ऐसे मुस्लिम शायर हुए जिन्होंने भजन लिखे। नौशाद साहब भी उन्हीं में से एक थे। शास्त्रीय संगीत की किताबों से निकलकर उन्होंने भजनों को दिलों में बसाया। उन्होंने रागों को इतना सरल, इतना मधुर बनाया कि हर कोई उसे महसूस कर सके।
1: जब जब भारतीय फिल्म संगीत की बात होती है, एक नाम स्वतः ही हमारे मन में गूंज उठता है। वो नाम है नौशाद अली। एक ऐसा नाम जिसने सुरों को आत्मा दी, जिसने धुनों को भक्ति, प्रेम और देशभक्ति के रंगों में पिरोया। नौशाद का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी कई संगीतकार उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शास्त्रीय संगीत को भी लोकप्रिय बनाया जा सकता है यदि उसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए।
0: आज के इस दौर में संगीत में तेजी और तकनीक का बहुत अधिक प्रभाव है। वहीं नौशाद साहब का संगीत हमें मूल्यों की, परंपराओं की याद दिलाता है। उनका संगीत हमें सिखाता है कि सच्ची कला समय की सीमा से बहुत परे होती है।
1: कला जब बहती है तो कल्लोलिनी बन जाती है, और नौशाद का संगीत वही कल्लोलिनी है जो कभी नहीं रुकती, हर पीढ़ी में, हर दिल में, हर एहसास में। 5 मई 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। नौशाद साहब को लखनऊ से बेहद लगाव था, और इस बात को उनकी खुद की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है। रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कूचा मेरा जाना पहचाना है, क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है।
0: कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाज हमेशा साथ रहती है। नौशाद साहब, आपके सुर आज भी जिंदा हैं। आप सुनते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि संगीत कभी मरता नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का ये कार्यक्रम समर्पित था महान संगीतकार नौशाद जी को। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन विनीता जैन और इसका वाचन किया था मनीषा चतुर्वेदी
1: और मैं दीपेश।
0: नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति पदों का गायन। कलाकार हैं कलापिनी कोमकली।

0: ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: संगीत को पूरी निष्ठा और निरंतर साधना से उत्कर्ष की नई दिशाएं देने वाली सृष्टि कलाकृति हमारे संगीत समय की यशस्वी गान प्रतिभाएं हैं। मूर्धन्य गायक पंडित कुमार गंधर्व और संगीत विदुषी श्रीमती वसुंधरा कोमकली की बेटी और उनकी इस शिष्या ने कठिन उत्तराधिकार को पारंपरिक गरिमा और मौलिक संज्ञान से अपने कला व्यक्तित्व में अंगीकार किया है। आध्यात्मिक आनंद, रंजनकारी तत्वों का समावेश और राग रस का भावात्मक विस्तार उनके गायन की वे खूबियां हैं जो श्रोताओं से एक सहज आत्मीयता का सेतु तैयार करती हैं। उनके अनेक रिकॉर्ड जारी हो चुके हैं जिनमें उनकी गायकी के बेशुमार पोशीदा पहलुओं को परखा जा सकता है। पहली और देवी अहिल्या उन फिल्मों के नाम हैं जिनमें कलापिनी जी ने पार्श्व गायन भी किया है। इन दिनों देवास में स्थापित पंडित कुमार गंधर्व संगीत अकादमी रियाज के अनेक रचनात्मक प्रकल्पों में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। सुश्री कलापिनी को अनेक सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है जिसमें संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार विशेष उल्लेखनीय है।
2: सबको नमस्कार। आज की संतवाणी के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक चंद्र सखी के पद से करने जा रही हूँ। एक तरह का मंगलाचरण है ये और कुछ अप्राप्य चंद्र सखी के पदों में से एक है। कल्याण में निबद्ध ये रचना।

अब मैं आपके सम्मुख एक अभंग प्रस्तुत करने जा रही हूं। तुकाराम का पद है। मेरे पूज्य पिता और गुरु पंडित कुमार गंधर्व ने इसे स्वरबद्ध किया है।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद है। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद है, देश का चैनल, देश के।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जैक्स स्पेक्स और जापान।
2: पुलोरन और मैनहट्टन जायफल के लिए हुआ।
3: रेडियो आजाद हिंद।
1: जैक्स स्पेक्स और जापानी मर्सेनरी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जैक्स स्पेक्स और जापानी मर्सेनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग 1615। 1615 में हेराडो के संकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पेक्स ने भटकते हुए
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, ये सुनते हैं परिक्रमा।

suspects. जैक सस्पेक्स और जापानी मर्सेनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग 1615। 1615 में हेराडो के संकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापार

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: जैक्स स्पेक्स और जापानी मर्सेनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग, 1615। 1615 में हेराडो के संकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पेक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय VOC सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पेक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। यह कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पेक्स ने हेराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटरजून कोएन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जापानियों को एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति के रूप में देखते थे, जिनका मानना था कि ये योद्धा केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय आबादी को शांत कर सकते हैं। स्पेक्स का नवाचार उन कठोर अनुबंधों में था जो उन्होंने इन उत्तेजित जुझारू रंगरूटों को भरोसेमंद सैनिक बनाने के लिए तैयार किए थे। 31 दिसंबर 1615 को उन्होंने 59 रंग रूटों के एक दल को 3 साल के पूर्ण आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया, जिसमें उन्होंने डच अधिकारियों को कभी भी जवाब न देने का संकल्प लिया। ये समझौते विशेष रूप से डरावने थे क्योंकि इनमें सामूहिक दंड का प्रावधान था। यदि कोई सैनिक विद्रोह करता तो VOC जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों और गारंटरों को सजा देने का अधिकार रखती थी। स्पेक्स ने सैन्य दल को विशेष हथियारों से लैस रखा था। जापानी आग्नेयास्त्र, धनुष बाण, अलग अलग लंबाई के अनेक भाले, ये दस्ता फॉर्च्यून नामक एक स्थानीय जहाज पर सवार हुआ, जिसे स्पेक्स ने विशेष रूप से इस यात्रा के लिए खरीदा और मरम्मत करवाया था। हालांकि पेशेवर भाड़े के सैनिकों का सपना जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल गया। 4 महीनों तक रंगरूट हेराडो में ही रहे, जहां शहर के शराब खानों और जुआ घरों ने उनके बीच असंतोष पैदा कर दिया। ओसाका से भर्ती किए गए कप्तान कुस्नुकिजी इत्सिमोन के अकुशल नेतृत्व में बाटन की 51 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान ये दल विद्रोह के करीब पहुंच गया। स्पेक्स ने खुद बाद में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और बाजार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नजर में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद VOC ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पेक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वो बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित किया।

0: पुलोरन और मैनहट्टन जायफल के लिए हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सौदा। क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे प्रसिद्ध रियल एस्टेट सौदा मैनहट्टन की खरीद वास्तव में इंडोनेशिया के एक छोटे और सुदूर द्वीप पुलोरन से जुड़ा था। आज भले ही मैनहट्टन गगनचुंबी इमारतों का एक वैश्विक जंगल है, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये केवल एक दलदली बस्ती हुआ करती थी, जिसमें कोई मसाले का उत्पादन भी नहीं होता था। नक्शे पर पुलोरन को खोजने के लिए आपको कमरे के आकार के कागज की जरूरत होगी। ये केवल 2 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। इसके चारों ओर घूमने में मात्र 1 घंटा लगता है और यहाँ ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी ये द्वीप मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस का घर था, जिसे आमतौर पर जायफल के पेड़ के रूप में जाना जाता है। 1603 में जायफल और उसकी बाहरी झिल्ली जावित्री वनस्पति जगत की कीमती वस्तुएं थी, जिनका उपयोग मांस को सुरक्षित रखने और महंगे स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि बांदा में 10 पाउंड जायफल की कीमत आधे पैसे से भी कम थी, लेकिन यूरोप में इसे 32,000% के चौंका देने वाले मुनाफे पर बेचा गया। जायफल का लालच इतना अधिक था कि राजा जेम्स प्रथम ने अंततः खुद को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, पुलोवे और पुलोरन का राजा घोषित कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पुलोरन का महत्व जायफल की एक पौध में निहित था। 1616 में यहाँ के द्वीपवासी, जो कि ओरांग काया नामक प्रधानों द्वारा शासित स्वशासी गणराज्य थे, उन्होंने डच उत्पीड़न से बचने के लिए अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने अंग्रेजों को पुलोरन की पीली मिट्टी में लगा हुआ जायफल का एक पौधा भेंट किया। ये विश्वास का एक बड़ा कार्य था, क्योंकि बांदावासी अपने एकाधिकार की रक्षा के लिए इन पौधों की कड़ी निगरानी करते थे। क्या आप जानते हैं कि इस नन्ही सी पौध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना स्वरूप बदलने पर मजबूर कर दिया? चूंकि उस समय कंपनी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने क्राउन की ओर से द्वीप को स्वीकार किया। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने एक नया चार्टर जारी किया, जिसने कंपनी को विदेशी क्षेत्रों में किलेबंदी करने और बसने की अनुमति दी। हालांकि डचों के खिलाफ पुलोरन पर कब्जा बनाए रखना एक तनावपूर्ण और महंगा दायित्व था, जिसमें 4 साल की लंबी नाकेबंदी शामिल थी। इन मसालों के द्वीपों को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच प्रतिद्वंद्विता इतनी तीव्र थी कि डचों के अलावा किसी और के साथ व्यापार करना देशद्रोह माना जाता था। अंततः 1667 में 60 वर्षों के दबाव के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हिसाब बराबर करने का फैसला किया। ब्रेडा की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पुलोरन के सभी अधिकार डचों को सौंप दिए। बदले में उन्हें उत्तरी अमेरिकी समुद्र तट पर न्यू एम्स्टर्डम नामक एक बस्ती मिली, जिसका नाम उन्होंने तुरंत बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। उस समय डचों को लगा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों को ठग लिया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान मसाले पर एकाधिकार के बदले मैनहट्टन जैसा बिना मसालों वाला द्वीप देकर। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के इस छोटे से द्वीप के बिना बिग एप्पल का इतिहास डच भाषा में लिखा गया होता? भले ही बाद में पुलोरन उपेक्षित हो गया और इसके पेड़ काट दिए गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के जन्म में मैनहट्टन की तुलना में पुलोरन के इस छोटे से जायफल की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इंडोनेशिया के उस छोटे से पौधे के बिना आज न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों पर शायद अभी भी डच झंडा फहरा रहा होता। ये एक याद दिलाता है कि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा इंडिया से अधिक ईस्ट के बारे में थी।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजाद
1: हिंद। नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास।
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल, है ना? बताइए ना
1: जी। आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल के क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप और हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पुलिन बिहारी दास और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
2: इतिहास
1: जी,
2: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी आज की गौरव गाथा के नायक हैं।
1: जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आज हम बात करते हैं एक नहीं दो क्रांतिकारियों की, और वो हैं मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रॉय।
2: जी हाँ,
1: 1930 का साल, पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी। हमारे राजनेता देशभक्त अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए थे और हर एक क्रांतिकारी, हर देशभक्त और हर भारतवासी की एक ही अभिलाषा थी, और वो थी भारत की आजादी।
2: आजादी पाने की इसी अभिलाषा ने बंगाल के क्रांतिकारियों में भी जोश भर दिया। बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: जी,
2: देश के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
1: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय चाहते थे कि अपने देश का ही नागरिक वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तब तक मारते जाएंगे जब तक उस पद पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया।

0: मिदनापुर के एक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी को बुलाया गया। 7 अप्रैल 1931 को प्रदर्शनी का उद्घाटन करने शाम 7:30 बजे श्री जेम्स वहां आए। विद्यालय के कई कमरों में प्रदर्शनी लगाई गई थी।
1: विद्यालय के पहले कमरे में जेम्स पेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में घुसे, एक नौजवान ने रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो वहां से भागे, एक दूसरे क्रांतिकारी ने उनका पीछा किया और उन पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरे विद्यालय में भगदड़ मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए कलकत्ता से खास डॉक्टर भी बुलवाए गए। डॉक्टर आए और ऑपरेशन से जेम्स पेड्डी के शरीर से एक गोली निकाली।
0: अगली सुबह एक ऑपरेशन और किया गया और उनके शरीर से एक और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था, उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी की मौत से अंग्रेज सरकार बौखला गई, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम संभाल तो लिया, लेकिन वे शुरू से डरे हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने अपने भाई और कुछ मित्रों को पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने इस डर का भी जिक्र किया। सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मीटिंग में कई सदस्य हिस्सा ले रहे थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 8 गोलियां डगलस के शरीर में समा गई।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान भागे। पुलिस ने पीछा किया। उनमें से एक पुलिस की गोली से घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाशी ली गई और जेब से एक पर्चा निकला जिसमें लिखा था, हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का ये हल्का प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से अंग्रेज सरकार को ये सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
0: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सितंबर 1931 की रात जेल के सिपाहियों ने मिलकर लाठियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर दत्त नाम के 2 क्रांतिकारी मारे गए। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बुलवाए गए, लेकिन डगलस को बचाया नहीं जा सका। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1933 की सुबह प्रद्योत भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई।
1: रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के बाद पीईजी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले 2 अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।

0: 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग की टीम टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। श्री बर्ग निर्धारित समय पर मैदान पहुंचे। उनके अंगरक्षक भी उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्ग मैदान में उतरे और खेलने लगे। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए वे आगे बढ़े, उस खिलाड़ी ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां चला दी। उन पर गोली चलाने वाले क्रांतिकारी का नाम था मृगेंद्र कुमार दत्त। उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी ने भी बर्ग पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले इस दूसरे क्रांतिकारी का नाम था अनाथ बंधु पांजा। 6 गोलियां खाकर मजिस्ट्रेट बर्ग जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई।
1: पास में खड़े पुलिस अधिकारी ने मृगेंद्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बर्ग के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृगेंद्रनाथ दत्त की मौत अस्पताल में हो गई।
1: इसी बीच खेल के मैदान को पुलिस ने घेर लिया। खेल को रोककर सभी दर्शकों की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद 3 और क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन 3 पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर 1 और भारतीय को ही चुना गया।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते हैं कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरिज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक, निजी व्यापार, पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया। क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
3: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
2: तो श्रोताओं, आज हम अपने कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में बात करेंगे प्रसिद्ध कथाकार साहित्यकार मन्नू भंडारी जी की। श्रोताओं, शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उनकी, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को अनेक पहलुओं में बांधे रखा। उन्होंने सहजता, विनम्रता और सरलता को बड़ी ही ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाया और सदा हर भूमिका में, हर सोच में वो आत्मविश्वास से भरी रही।
3: हाँ, उन्हें घर की साज सज्जा, घर की सफाई बहुत ही भाती थी और घर में जब भी कोई मेहमान आने वाले होते तो वो खुद जाकर घर के आसपास लगे फूलों को लाकर उसे घर में सजाया करती थी।
2: उनका घर सजाने का तरीका भी बड़ा कलात्मक था। घर में डाले गए पर्दों को वो स्वयं ही पेंट करके लगाती थी। अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद वो घर के रखरखाव में कोई कमी नहीं आने देती थी
3: और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों को बुलाकर वो अपने हाथों से नए नए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उन्हें परोसा करती।
2: तो चलिए श्रोताओं, अब हम हमारी आज की शब्दों के शिल्पकार की उस शख्सियत, उस व्यक्तित्व का नाम बता दें जिनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें और आदतें हमने आपको बताई।
3: ये कथाकार उपन्यासकार हैं मनु भंडारी, जिनकी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी और देसी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। यूं तो बचपन में उनका नाम महेंद्र कुमारी रखा गया, लेकिन अपने घर में सभी भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण उन्हें प्यार से सब मन्नू बुलाया करते।
2: और जब उन्होंने लेखन आरंभ किया तो अपने इसी घर के लाड़ प्यार भरे नाम को अपनाया और हम सभी उन्हें जानने लगे मन्नू भंडारी के नाम से।
3: मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के ग्राम भानपुर में हुआ था।
2: उनके पिता सुख संपत राय भंडारी साहित्य और कला प्रेमी थे, इसलिए शिक्षा के साथ साथ मन्नू भंडारी में साहित्यिक अभिरुचियों का भी विकास होता गया।
3: उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई और फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए की डिग्री हासिल की।
2: हाँ, और यहीं पर मन्नू जी का हिंदी जगत के कई साहित्यकारों से संपर्क प्रारंभ हुआ
3: और फिर वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगी। यहीं पर मन्नू जी की मुलाकात हिंदी कहानीकार राजेंद्र यादव से हुई। एक ही क्षेत्र और विचारों के कारण घनिष्ठता हुई और फिर दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। मन्नू भंडारी में निडरता कूट कूट कर भरी थी, इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने नारे भी लगाए हैं।
2: मन्नू जी की निडरता को मानते हुए उनके पति साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि उनके साहस का ये हाल रहा कि वो बड़े से बड़े व्यक्ति के मुंह पर अपनी बात निर्भय होकर कहती थी।
3: वे निस्वार्थ भाव से उदारता को अपने व्यक्तित्व में समेटे रहती। कूली, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, कोई भी उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते थे।
2: जी, और जानते हैं श्रोताओं, एक बार उनके घर में रखे गहनों की चोरी हो गई, तब मन्नू जी ने कहा, चलो पाप कटा, मुझे यूं भी गहनों का शौक नहीं है।
3: पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम हिंदी के इतने गहरे शब्दों को पढ़ते हैं जिनकी गहराई का हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। उन शब्दों की असीम गहराई का अंदाज और भावनाओं का आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम इसका सही स्थान पर प्रयोग करें।
2: सही कहा, अपनी साहस भरी लेखनी और बेबाक बयानी के कारण ही मन्नू भंडारी ने हिंदी कथा साहित्य जगत में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। साहित्यिक वातावरण में जन्मी मन्नू जी ने साहित्य रचना को ही अपना उद्देश्य रखा और इसमें उन्हें अपने परिवार और पति से पूरा प्रोत्साहन ही मिला।
3: उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में कहानी अधिक है और स्त्री विषय ही केंद्र बिंदु है। समाज के लगभग सभी वर्गों को उन्होंने अपने साहित्य में चित्रित किया है।
2: हाँ, उनकी साहित्यिक रचनाओं के विषयों में भी विविधता नजर आती है। उनके साहित्य में राजनीतिक उपन्यास है तो आम सी कहानी भी है।
3: बिल्कुल, उनके लेखन में कहीं स्त्री की मानसिकता चित्रित है तो कहीं स्त्री पुरुष संबंध के विषय भी हैं और कहीं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कथाएं।
2: उनकी लिखी पहली कहानी है मैं हार गई। ये कहानी मासिक पत्रिका कहानी में पहली बार प्रकाशित हुई और फिर ये सिलसिला चलता गया।
3: सन 1957 में उनका कहानी संग्रह मैं हार गई राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ और इसके बाद और भी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए और वो साहित्य के क्षेत्र को एक से बढ़कर एक रचनाएं देती रहीं।
2: मन्नू भंडारी जी के विचार, मत, सिद्धांत, उनकी पसंद नापसंद आदि बातों को जानकर ही उनके व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं। वो रहन सहन में बहुत ही साधारण थी। चेहरे पर गोल बड़ी सी बिंदी और सादगी के साथ साड़ी पहनना और अपने बालों को सदा जूड़े में समेटे उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सौम्यता भरा अलग ही नजर आता था। वो हमेशा भारतीय नारी का एहसास कराती थी।
3: मन्नू जी के लेखन में अलग ही विशेषता है जो उन्हें अपने समकालीनों से थोड़ा पृथक करती है। अपनी रचनाओं में उन्होंने कभी भी दया नहीं दिखाई, यानी कोई भी चरित्र कभी दया का पात्र बना ही नहीं।
2: उनकी कहानियाँ यथार्थ के धरातल पर पड़ी ही रही जिससे पाठक उससे सदा जुड़ाव महसूस करते हैं। उनकी मौलिकता में सुगमता है, सहजता है और साथ ही आत्मीयता का भाव भी झलकता है।
3: मन्नू भंडारी एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में नारी के परंपरागत रूप को झटक कर नवीनता लाने का प्रयास किया।
2: जी हाँ, इस बात का भी उन्होंने अपनी रचनाओं में ख्याल रखा कि वो केवल कोरी कल्पना ही न रह जाएं, बल्कि यथार्थ नजर आएं।
3: प्रत्येक चरित्र को अपनी रचनाओं में ऐसा गढ़ा कि उनका मनोविज्ञान बड़ी ही पृथक्ता से चित्रित किया गया। भारतीय नारी जो आदर्शों में लिपटी छटपटाती है, उसकी आशाएं, आकांक्षाएं और मन की छिपी लालसाओं को उन्होंने अपनी वाणी दे दी।
2: हाँ, उनके द्वारा गढ़े गए नारी पात्र अपने स्वतंत्र अस्तित्व को दिखाते हैं, यानी संवेदनाओं को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित किया है और पाठकों ने उसे खूब पसंद किया। उनकी लिखी रचनाओं में कहानी संग्रह मैं हार गई, बनी निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब और त्रिशंकु हैं।
3: इसके अलावा श्रेष्ठ कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ और सप्तपर्णा संग्रहों में भी आपकी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं।
2: मन्नू जी के उपन्यासों में एक इंच मुस्कान आपने अपने पति साहित्यकार राजेंद्र यादव के साथ साझा रूप से लिखा है। इसमें पढ़े लिखे और आधुनिकता का आवरण ओढ़े लोगों की प्रेम कहानी है।
3: उनकी सीधी सरल भाषा शैली, किसी भी बात को कहने का सीधा सरल और सधा हुआ अंदाज, कहानी के माध्यम से आम जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी पर उसमें छिपी गूढ़ बातें, जिन्हें सरलता के साथ आम भाषा में कहना उनके लेखन की विशेषताएं रही, जिसने उन्हें लोकप्रिय बना दिया।
2: मन्नु भंडारी कई मायनों में अद्भुत लेखिका रही, नैतिक अनैतिक से परे यथार्थ को उन्होंने सदैव निर्द्वंद नजरों से देखा। उनके इसी दृष्टिकोण ने उनकी लेखनी को नया और आधुनिकता से भरा बनाया।
3: उनका नाटक बिना दीवारों के घर भी काफी चर्चित रहा। वहीं दूसरी ओर नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम व्यक्तित्व की पीड़ा और दर्द को गहराई के साथ महसूस कराने वाले उनके उपन्यास महाभोज पर आधारित नाटक भी खूब लोकप्रिय है।
2: विवाह के टूटने की त्रासदी के बीच में घुट रहे बच्चे को मुख्य पात्र के रूप में रखकर लिखे गए उनके उपन्यास आपका बंटी ने उन्हें शौहरत के शिखर पर पहुंचा दिया, जो हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से एक है।
3: 1974 में आई विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर अभिनीत फिल्म रजनीगंधा तो हम सभी को याद है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई थी।
2: ये फिल्म मन्नू भंडारी की कृति यही सच है पर बनाई गई थी, जिसे 1975 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस फिल्म को बासु चटर्जी ने निर्देशित किया था और ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों ही रूपों में सफल साबित हुई। आइए सुनते हैं इसकी कहानी का सारांश, यही सच है।
4: दीपा बेचैनी से शाम का समय काटने की कोशिश कर रही है। पड़ोस की बच्ची आकर कहानी सुनना चाहती है, पर दीपा रूखा सा जवाब नहीं देकर उसे वापस कर देती है। रजनीगंधा के फूलों की महक से समझ जाती है कि संजय आ गया है। वो पुस्तक पर फिर भी ध्यान लगाने की कोशिश करती है। संजय हंसता हुआ पूछता है, नाराज हो? मुझे क्या करना है नाराज होकर? मुझे मनाने की कोशिश करते हुए वो कहता, तुम ही बताओ दीपा, क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके अच्छा भी तो नहीं लगता। मन हुआ कह दूं, तुम्हें तो दोस्तों का ही ख्याल है, बस मेरा नहीं। पर वो उठकर फूलदान में पुराने फूलों को हटाकर नए रजनीगंधा के फूल सजाने लगता है। हम बाहर घूमने निकलते हैं। सुनो, इरा ने लिखा है किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। कहाँ से? कलकत्ता से। यदि तुम्हें वो जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। मैं भी अपना तबादला हेड ऑफिस करवा लूंगा। बात करते करते हम अपनी पसंद की जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। मुझे इंटरव्यू में जाने से बड़ा डर लग रहा है संजय, वो खिलखिलाता है। कलकत्ता में इरा के अलावा मैं किसी को नहीं जानती। और किसी को नहीं जानती? उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाई। निशित भी तो है। होगा, मुझे क्या करना? मैं भन्ना गई, कुछ नहीं करना। देखो संजय, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मैं कमरे में लौट आती हूं। वो चला जाता है। निशित, उससे तो मैं अब नफरत करती हूं। 18 वर्ष की थी तब, वो बचपन का पागलपन था। तभी तो संजय को पाते ही निशीत को भूल गई। उसे कैसे बताऊं, मेरी कोमल भावनाओं के केंद्र तो संजय ही हैं। हम सपनों में नहीं, वास्तविकता में जीते हैं। अब संजय को कैसे बताऊं, निशीत ने तो मेरा अपमान किया है। मेरा क्या अपराध था? उसका प्यार तो मात्र छल, भ्रम और झूठ था। हावड़ा स्टेशन पर इरा लेने आई। क्यों इरा, इंटरव्यू में कौन कौन होंगे? मुझे तो डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बता भैया भाभी। मैं मौन रहती हूँ, ये प्रसंग मुझे पसंद नहीं। शाम को कॉफी हाउस में निशीत आता है। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? कहाँ ठहरी हो? निशीत बदल गया, हुलिया भी, दुबला हो गया। वो इरा के घर आने का वादा कर चला गया। पुरानी यादों में एकाएक मेरा मन कटु हो गया। कल आएगा तो बता दूंगी मैं, संजय से विवाह करने वाली हूँ। निशीत मेरी नौकरी के लिए काफी मेहनत कर रहा है। क्यों? कल कह दूंगी, अब वो मेरे पास ना आए। पर जब वो शाम को आया, मैं कटु ना हो सकी। अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे जीवन के वैवाहिक दिन सुख से गुजरेंगे। मेरा इंटरव्यू हो गया। निशीत मुझसे ज्यादा प्रसन्न था। आखिर क्यों? शायद मेरे प्रति किए अन्याय के प्रतिकार में। क्या मैं उसे भूल जाऊंगी? असंभव। तुम इस नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, निशीत बोला। निशीत बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। उसने ऐसी बात क्यों की? मैं अपनी ही तंद्रा में रही। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूं। फिर मौन। मुझे पटना में गुजारी सुहानी संध्या याद आती है। कैसी तन्मयता में डूबे रहते थे हम दोनों। शाम को लेक के किनारे। अब तो तुम यहां आ जाओगी? हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है? कुछ नहीं, तुम्हारे यहां आने से मैं बहुत खुश हूं। मेरी सांस रुक जाती है। क्या आज भी वो मुझसे प्यार करता है? तो कह दो निशीत, कह दो तुम मुझसे प्यार करते हो। कलकत्ता से मेरी वापसी। मुझे छोड़ने आई इरा को मैंने जल्दी वापस भेज दिया। लगा निशीत जरूर आएगा। वो आया, मैं दौड़ी। आप क्यों आए? जगह अच्छी मिल गई? हाँ। पानी है? हाँ। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच उठी। वो कह नहीं पा रहा। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। जाकर खबर देना, मैं तुम्हें सूचना दूंगा। मेरी आंखें छलछला आईं। उसका हाथ मेरे हाथ से स्पर्श कर गया। मेरे दिमाग में असंख्य बातें आ गईं। लौटकर कमरे के फर्श पर लिफाफा मिला संजय का। मैं निशीत को पत्र लिखती हूँ। बालकनी में खड़ी हूँ, उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। समय नहीं कट रहा, तार मिलता है। इरा का था, नियुक्ति हो गई, बधाई। पर मैं खुश नहीं हो पाई। कुछ दिन बाद निशीत का संक्षिप्त सा पत्र मिला। नीचे लिखा, शेष फिर। बस क्यों क्यों नहीं लिख दिया अभी? क्या लिखेगा वो? अचानक आई आवाज, दीप। मैं मुड़ कर देखती हूँ। संजय रजनीगंधा के फूलों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा है। दौड़कर मैं लिपट जाती हूँ। आंसू बहते हैं। संजय का स्पर्श, सुख, ये क्षण ही सत्य है। वो सब झूठ था, मिथ्या थी, भ्रम था।
3: इस फिल्म में नायिका की दुविधा दूर होती है और वो यही सच है को जान जाती है। अब अगर बात मन्नू भंडारी के लेखन और उन पर बनाई फिल्मों की हो रही है तो इस बात का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है कि उनके जीवन के सबसे सफल और चर्चित उपन्यास पर भी एक फिल्म बनाई गई है
2: और वो उपन्यास है आपका बंटी। सन 1986 में एक फिल्म आई थी जिसमें शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा और टीना मुनीम ने अभिनय किया और फिल्म का नाम था समय की धारा। इस फिल्म में बाल कलाकार मास्टर रवि ने बंटी की भूमिका निभाई थी। हालांकि इस फिल्म का अंत उपन्यास से हटकर होने के कारण ये मूल कहानी से अलग हो गई थी।
3: एक साक्षात्कार में इस विषय पर मनु जी ने कहा है कि लेखन और फिल्मांकन दोनों अलग अलग विधाएं हैं। ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि हमने जो लिखा है वो ज्यों का त्यों पर्दे पर आ जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। उसमें मांग के अनुरूप संशोधन किए जाते हैं।
2: आइए सुनते हैं उपन्यास आपका बंटी का सार।
4: छोटा बच्चा बंटी और उसकी माँ शकुन है। ये दोनों ही चरित्र इस उपन्यास में इतने एक दूसरे से जुड़े और अपनी समस्या या त्रासद से उलझे नजर आते हैं कि वो उन्हें दुखद यातना सी नजर आती है। एक बच्चे की उसके टूटते परिवार की संवेदना को उसके नजरिए से व्यथा के रूप में दिखाया है जो एक दुस्वप्न सा हो जाता है। शकुन के जीवन का ये सच है कि उसकी सोच और आत्मनिर्भरता के विचार पति के लिए चुनौती साबित होते हैं। चुनांचे दाम्पत्य तनाव बढ़ता है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि अलगाव की स्थिति आ जाती है। उपन्यास की ये समस्या केवल शकुन की ही नहीं और ना ही उसके पति या बेटे की, बल्कि समाज में अपनी ऊंचाई को बढ़ाकर रखने की लालसा और अपने अस्तित्व को पहचानती, अपने लिए जगह बनाती हर स्त्री का सत्य है। पति पत्नी के बीच चल रहे इस द्वंद का सबसे अधिक बुरा प्रभाव उस नन्हे बच्चे बंटी पर पड़ता है जो असुरक्षित हो जाता है। वो निर्दोष है, निरीह है। उस नन्हे बच्चे पर आई विपदा, मानसिक द्वंद, बच्चे का असहाय महसूस करना, पूरी बात समझ ना पाना, वो सारा बाल मनोविज्ञान मनु भंडारी ने महसूस किया जो बच्चे के बड़े नहीं समझते हैं। उस असहाय बच्चे के चरित्र को गढ़ा जिसका हर पृष्ठ मर्मस्पर्शी है। मनु जी के शब्दों में लोगों के बीच नहीं, लोगों के मन में जगह बनाना ही असली उद्देश्य है। और वाकई मनु जी ने इस उपन्यास के माध्यम से प्रत्येक पाठक के मन में अपनी अमिट जगह बना ली।
3: मनु भंडारी का एक और उपन्यास स्वामी है जिस पर 1977 में बासु चटर्जी ने शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, उत्पल दत्त और विक्रम को लेकर स्वामी नाम से ही एक फिल्म बनाई थी। हम आपको इस उपन्यास का सारांश सुनवाते हैं।
4: सौदामिनी एक होनहार गांव की लड़की, वो पढ़ना चाहती है। साहित्य और दर्शन में उसकी रुचि है। उसके मामा उसकी इस रुचि को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। सौदामिनी बचपन में ही अपने पिता को खो चुकी है। उसकी धर्मपरायण माँ को बस उसकी जल्दी शादी करवाना है और बस इसी बात को लेकर वो घर में अपने भाई और मिनी से बात करती रहती है। परंतु मिनी गांव के जमींदार के बेटे नरेंद्र को पसंद करती है जो कलकत्ते में पढ़ता है और गांव आते जाते वो मिनी के मामा के लिए पुस्तकें भी लाता है। मामा मिनी और नरेंद्र के मन की बात जान लेते हैं, पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से मामा की मृत्यु हो जाती है और मिनी की माँ जल्द ही उसका विवाह पड़ोस के व्यापारी घनश्याम से कर देती है। मिनी अपने पति से बेरुखी से पेश आती है, पर उसका पति घनश्याम बहुत समझदार है, कुछ नहीं कहता। कहानी आगे बढ़ती है और मिनी के ससुराल नरेंद्र आता है। मिनी और नरेंद्र के बीच क्या है ये बात खुल जाती है, परंतु मिनी का पति समझदारी से काम लेता है। वो इसे बचपना समझकर माफ कर देता है।
2: श्रोताओं, मन्नू भंडारी का साहित्य आज भी सभी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 15 नवंबर 2021 को वे इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी लिखी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे सादगी से भरी ऐसी रचनाकार थीं जिन्होंने सफलता की ऊंचाई पर जाकर हिंदी साहित्य जगत को अपनी लेखनी से नवीनता और विकास की बातें की। हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा।
3: मनु जी के उपन्यास आपका बंटी हिंदी के बेजोड़ उपन्यासों में से एक है। जब भी 20वीं शताब्दी के उपन्यासों की बात की जाएगी, आपका बंटी अग्रणी पंक्ति में गिना जाएगा।
2: इसे पत्रिका धर्मयुग ने धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया था, जिसे पाठकों का भरपूर प्यार मिला और तब इसका प्रकाशन एक पूरे उपन्यास के तौर पर किया।
3: इसमें एक बच्चे की टूटते हुए परिवार की संवेदना को उसके नजरिए से व्यथा के तौर पर दिखाया गया है, जो एक दुस्वप्न सा हो जाता है। एक छोटा बच्चा बंटी और उसकी माँ शकुन है। ये दोनों ही चरित्र इस उपन्यास में इतने एक दूसरे से जुड़े और अपनी समस्या या त्रासद से उलझे नजर आते हैं कि वे उन्हें दुखद यातना से नजर आती है।
2: शकुन के जीवन का ये सच है कि उसकी सोच और आत्मनिर्भरता के विचार पति के लिए चुनौती साबित होते हैं। चुनांचे दाम्पत्य तनाव बढ़ता है और इतना बढ़ता है कि अलगाव की स्थिति आ जाती है। उपन्यास की समस्या केवल शकुन की ही नहीं और न ही उसके पति या बेटे की है। समाज में अपनी ऊंचाई को बढ़ाकर रखने की लालसा और अपने अस्तित्व को पहचानती, अपने लिए जगह बनाती हर स्त्री का सत्य है।
3: इस पति पत्नी के बीच चल रहे द्वंद का सबसे अधिक बुरा प्रभाव उस नन्हे बालक मन बंटी पर पड़ता है, जो असुरक्षित हो जाता है। वो निर्दोष है, निरीह है। उस नन्हे बच्चे पर आई विपदा, मानसिक द्वंद, बच्चे का असहाय महसूस करना, पूरी बात समझ न पाना, वो सारा बाल मनोविज्ञान मनु भंडारी ने महसूस किया, जो घर के बड़े नहीं समझ पाते। उस असहाय बच्चे के चरित्र को गढ़ा, जिसका हर पृष्ठ मर्मस्पर्शी है।
2: मनु जी के शब्दों में कहें तो लोगों के बीच नहीं, लोगों के मन में जगह बनाना ही असली उद्देश्य है। और वाकई मनु जी ने इस उपन्यास के माध्यम से प्रत्येक पाठक के मन में अपनी अमिट जगह बना ली। तो श्रोताओं, आज यहीं विराम देते हैं शब्दों के शिल्पकार में। हमने आज बात की प्रसिद्ध कथाकार साहित्यकार मन्नू भंडारी जी की। अगली बार किसी और शब्द शिल्पी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी संदीप शर्मा
3: और मुझे यानी स्वाति को।
2: लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हाइब्रिड समुद्री संस्कृति, 17वीं सदी का वैश्विक जहाजी बदलाव। कल्पना कीजिए कि आप 17वीं शताब्दी के पूर्वी चीन सागर में एक व्यापारिक जहाज के डेक पर खड़े हैं, जहां प्रशांत महासागर की लहरें वैश्विक नौवहन में हो रही एक क्रांति को छिपाए हुए हैं। पहली नजर में ये जहाज एक क्लासिक चीनी जंग की तरह दिखता है। इसका ऊंचा पिछला हिस्सा और मजबूत खंडों में बटा हुआ ढांचा इस क्षेत्र के किसी भी नाविक के लिए एक परिचित दृश्य है, लेकिन जैसे ही हवा पाल को छूती है, आप एक अद्भुत विसंगति देखते हैं। इस जहाज पर यूरोपीय शैली की रिंगिंग अर्थात मस्तूल और रस्सियों का ढांचा लगा है। ये एक ऐसा तकनीकी मेल है जो इसे पारंपरिक पालों की तुलना में अधिक सटीकता के साथ हवा के विपरीत चलने की अनुमति देता है। ये जहाज उस हाइब्रिड समुद्री संस्कृति का भौतिक रूप है जो 17वीं शताब्दी के दौरान फली फूली थी। इस जहाज पर मौजूद मानवीय तत्व भी उतने ही विविधतापूर्ण हैं। जापानी व्यापारी अक्सर लहरों के पार अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए विशेषज्ञों की एक विविध मंडली को काम पर रखते थे। डेक के नीचे नेविगेटर के कैबिन में आप पुर्तगाली और चीनी नेविगेटरों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए देख सकते हैं। उनके सिर एक साझा दस्तावेज पर झुके हैं जो दुनिया के किसी भी अन्य चीज की तरह नहीं दिखता। ये एक पॉलीवोकल पोर्टोलन है, एक दोहरी भाषा वाला समुद्री चार्ट जो दो दुनियाओं के बीच एक सेतु का काम करता है। ये चार्ट केवल अनुवादित नहीं थे, वे ज्ञान का संगम थे। वे पश्चिमी मानचित्र कला के गणितीय ग्रिड वर्क को शामिल करते थे। साथ ही इसमें एशियाई तटों के खतरनाक रेतीले किनारों पर नेविगेट करने के लिए आवश्यक स्थायी भाषाई संकेत और मील के पत्थर भी होते थे। ये सहयोग वैश्विक प्रारंभिक आधुनिकीकरण की पहचान था। ये एक ऐसा काल था जहां सांस्कृतिक विरासत को गोद लेने की आदत केवल यूरोप से एशिया की ओर एक तरफा नहीं बहती थी, बल्कि ये काफी हद तक एक पारस्परिक प्रक्रिया थी। एक चीनी जंग पर मौजूद पुर्तगाली नेविगेटर कोई विजेता नहीं था, बल्कि एक विशेषज्ञ पेशेवर था जिसे पहले से मौजूद एशियाई वाणिज्यिक प्रणालियों में शामिल कर लिया गया था, जो प्रणालियां अक्सर यूरोपीय प्रणालियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और लचीली थीं। ये वास्तविकता पुराने 1492 स्कीमा को चुनौती देती है, जो अक्सर पश्चिम के उदय को एक ऐसी कहानी के रूप में चित्रित करता है जहां यूरोपीय तकनीक ने एक स्थिर पूर्व को अभिभूत कर दिया था। इसके विपरीत ऐतिहासिक स्रोत एक इंटरैक्टिव डोमिनेंस का सुझाव देते हैं, जहां सफलता सांस्कृतिक सीमाओं के पार अनुकूलन करने, नकल करने और नवाचार करने की क्षमता पर टिकी थी। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक अभिलेखागार अक्सर उनके अपने शिपिंग मार्गों के सतही नेटवर्क को उजागर करते हैं, वहीं इन हाइब्रिड क्रू का अस्तित्व एशियाई व्यापार के बहुत बड़े डीप वेब की ओर इशारा करता है। इस अदृश्य दुनिया में यूरोपीय विशेषज्ञता को अक्सर एशियाई संगठनों द्वारा अपने अधीन कर लिया जाता था, जैसे कि शक्तिशाली झेंग परिवार जिनका राजस्व पूरी डच कंपनी वीओसी से भी अधिक था। यूरोपीय रिंगिंग और बहुभाषी चालक दल वाला हाइब्रिड जंग इस वैश्विक जुड़ाव का प्राथमिक वाहन था। अंततः दोहरी भाषा वाले चार्ट का उपयोग करने वाला पुर्तगाली नेविगेटर एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जो कम संकीर्ण और अधिक परस्पर जुड़ी हुई हो रही थी। ये साबित करता है कि प्रारंभिक आधुनिक युग में सबसे सफल खिलाड़ी वे थे जिन्होंने समुद्र की इस हाइब्रिडिटी को अपनाया।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी का उनके शिष्यों के साथ तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता था। आगामी खंडों में जो वार्तालाप संकलित किए गए हैं वे ऐसे व्यक्तियों के साथ स्वामी जी की बातचीत है जो उनके संपर्क में आए थे और प्रिय शिष्य बन गए थे। ये बातचीत अनेक विषयों पर हुई थी, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षा आदि। इन बातचीतों से विभिन्न विषयों पर स्वामी जी के विचारों की जानकारी प्राप्त होती है।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकार हो सकता है तथा फिर से अपने प्राचीन गौरव का स्थान कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका भी निर्देशन स्वामी जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी में इन वार्तालापों में किया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति का विकास होना चाहिए।
0: श्री प्रियनाथ सिंह स्वामी जी के करीबी लोगों में से थे। वे प्रियनाथ सिंह को सिंगी कहकर बुलाते थे। वे अक्सर स्वामी जी से विभिन्न विषयों पर बातचीत किया करते थे और स्वामी जी के विचारों को लिख लेते थे। प्रस्तुत है श्री प्रियनाथ सिंह जी और स्वामी जी की बातचीत के कुछ अंश।
2: बेलोड़ मठ के निर्माण के 2 वर्ष बाद की बात है। सभी स्वामी जी अब वहीं रहने लगे थे। इन्हीं दिनों मैं एक दिन सवेरे स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करने वहां गया हुआ था। मुझे देखकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले,
3: आज तो यहीं रहोगे ना?
2: मैंने कहा, अवश्य। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद मैंने पूछा, महाराज बच्चों की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए?
3: गुरु गृहवास, गुरु के साथ रहना।
2: कैसे?
3: जैसे प्राचीन काल में होता था, किंतु आज की शिक्षा में पाश्चात्य विज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। दोनों ही आवश्यक हैं।
2: पर आज की विश्वविद्यालय की शिक्षा में क्या दोष है?
3: इसमें दोष ही दोष भरे हैं। ये बाबू पैदा करने की मशीन के सिवाय कुछ नहीं है। अगर इतना ही होता तब भी ठीक था, पर नहीं। इस शिक्षा ने मनुष्यों की श्रद्धा और विश्वास की भावनाएं नष्ट कर दी हैं। वे कहते हैं कि गीता तो एक प्रक्षिप्त अंश है और वेद देहाती गीत मात्र हैं। वे भारतवर्ष के बाहर के देशों के संबंध में तो हर बात जानना चाहते हैं, पर यदि उनसे कोई अपने पूर्वजों के नाम पूछे तो 14 पीढ़ी तो दूर रही, 7 पीढ़ी तक भी नहीं बता सकते।
2: पर इससे क्या हुआ? वे अपने पूर्वजों के नाम नहीं जानते तो क्या हानि है?
3: नहीं, ऐसा मत सोचो। जिस राष्ट्र का कोई अपना इतिहास नहीं है वो अत्यंत ही हीन और नगण्य बना रहता है। क्या तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति जिसे सदैव इस बात का विश्वास और अभिमान है कि वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, कभी दुश्चरित्र हो सकेगा? ऐसा क्यों होता है? उसमें जो आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव है वो सदैव उसके विचार और कार्य को इतना नियंत्रित रखता है कि ऐसा व्यक्ति सतमार्ग से च्युत होने की अपेक्षा हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन कर लेगा। इसी तरह है राष्ट्र का गौरवमय अतीत राष्ट्र को नियंत्रण में रखता है और उसका अधः पतन नहीं होने देता। पर मैं जानता हूं तुम कहोगे कि हमारा ऐसा कोई अतीत, ऐसा इतिहास ही नहीं है।
2: पर सभी को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान नहीं है। हम भारतीयों को अपने इतिहास पर गर्व भी नहीं है।
3: जो तुम्हारी तरह सोचते हैं उन्हीं के लिए हमारे राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है और तुम्हारे विश्वविद्यालयों के उन तथा कथित विद्वानों के लिए नहीं है और उन लोगों के लिए नहीं जो कि पाश्चात्य देशों का एक चक्कर मारकर यूरोपीय वेशभूषा से सुसज्जित हो भारत लौट आते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस जंगली हैं। हाँ, ये सच है कि दूसरे देशों का जैसा इतिहास है वैसा हमारा नहीं है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि हमारे पास कोई इतिहास ही नहीं है। जैसे हम भात खाते हैं और अंग्रेज लोग भात नहीं खाते, तो इस पर से क्या तुम ये निर्णय कर लोगे कि अंग्रेज भूखे मरते हैं और कुछ दिनों में नष्ट हो जाएंगे? उनके देश में उनकी जलवायु के अनुकूल जो सरलता से वे उत्पन्न कर लेते हैं वही खाकर वे पनपते और पुष्ट होते हैं। इसी तरह हमारे लिए जैसा आवश्यक है वैसा हमारा भी अपना इतिहास है और अपनी आंखें बंद कर लेने और चिल्लाने से कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है वो क्या नष्ट हो जाएगा? जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं वे जानते हैं कि हमारा इतिहास कितना उज्ज्वल है और वो देश को किस प्रकार जीवित रख रहा है।
2: इसे देखने के लिए उचित आंखें होनी चाहिए, हम में वो दृष्टि कहाँ।
3: आज उस इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है। पाश्चात्य शिक्षा से हमारे युवकों की बदली हुई विचारधारा और बुद्धि को सामने रखकर आज उस गौरवमय इतिहास को फिर से लिखना होगा, जिससे पाश्चात्य सभ्यता से चकित और चकाचौंध में भ्रमित हमारे युवक उसे समझ सकें।
2: ये किस प्रकार करना होगा?
3: ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। उसके लिए पहले हमें गुरु गृहवास और उस जैसी अन्य शिक्षा प्रणालियों को पुनर्जीवित करना होगा। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। दूसरी बात जिसकी आवश्यकता है वो है उस शिक्षा पद्धति का निर्मूलन जो मार मार कर गधों को घोड़ा बनाना चाहती है।
2: इससे आपका क्या मतलब है?
3: देखो, कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक ये समझता है कि वो कुछ सिखा रहा है, सब गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित है, केवल उसके जागृत होने की आवश्यकता है, और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वे अपने हाथ पैर आंख कान का समुचित उपयोग भर करना सीख लें, और फिर सब आसान है। पर इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं कढ़ी और चटनी जैसी हैं। केवल कढ़ी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है, और केवल भात खाने से भी। हमारे शिक्षा शास्त्री हमारे बच्चों को केवल तोता बना रही हैं और रटा रटा कर उनके मस्तिष्क में कई विषय ठूंसते जा रही हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें वाइस राय का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सुधार करने का प्रस्ताव किया है।
2: परंतु स्वामी जी, हमें तो ये मालूम है कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से उसे इतना महंगा कर देना चाहा कि लड़कों की पहुंच के लगभग बाहर हो जाएगी।
3: हाँ, इससे शिक्षा करीब करीब बंद ही हो जाएगी, और देश को कम से कम कुछ सांस लेने और विचार करने का समय तो मिलेगा। वाह, ग्रेजुएट बनने के लिए क्या दौड़ धूप, क्या गहमा गहमी लगी है, और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, और आखिर में वे सीखते क्या हैं? बस यही कि हमारा धर्म आचार विचार और रीति रिवाज सब खराब हैं, और पाश्चात्यों की सब बातें अच्छी हैं। इस तरह महानाश को निमंत्रित कर रहे हैं। आखिर इस उच्च शिक्षा के रहने या ना रहने से क्या बनता बिगड़ता है? ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय पेट तो भर सकेंगे।
2: हाँ, मारवाड़ी इस बात में होशियार है, वे नौकरी नहीं करते और कोई ना कोई व्यापार में लग जाते हैं।
3: बकवास है, वे इस देश को रसातल में पहुंचा रही हैं। अपने स्वार्थ को भी नहीं समझते। उनसे तुम लोग कहीं ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कल कारखानों से वस्तुओं के निर्माण की ओर है। मारवाड़ी लोग अपने व्यापार में जो पैसा लगाते हैं और जिससे उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, उससे तो ज्यादातर विदेशियों की ही जेब भरते हैं। यही पैसा अगर वे कुछ कल कारखानों को खोलने में लगाएं तो देश की भलाई होगी और उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। केवल काबुली लोग ही नौकरी की परवाह नहीं करते, उनकी नस नस में स्वतंत्रता की भावना भरी है। उनको जरा नौकरी कर लेने की बात कह दो, फिर देखो क्या होता है।
2: पर महाराज, यदि उच्च शिक्षा बंद हो गई तो लोग फिर पहले जैसे मूर्ख बने रहेंगे।
3: क्या मूर्खता भरी बात कहते हो, क्या कभी सिंह भी सियार हो सकता है? हमारे कहने का क्या मतलब है? क्या कभी संभव है कि सृष्टि के आदिकाल से जिस देश की संतान अखिल विश्व को शिक्षा देती आ रही है, केवल इसलिए मूर्ख बन जाएगी कि लॉर्ड कर्जन उच्च शिक्षा बंद कर रहे हैं?
2: पर जरा सोचिए तो कि हमारे देशवासी अंग्रेजों के आगमन के पूर्व क्या थे और अब क्या हो गए हैं?
3: भौतिक शास्त्रों का अध्ययन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का यंत्रों द्वारा उत्पादन, क्या यही उच्च शिक्षा का अर्थ है? उच्च शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाना, और आज का सभ्य संसार आज भी इन्हीं समस्याओं पर गहन चिंतन कर रहा है। किंतु हमारे देश में सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही ये गुत्थियाँ सुलझा ली गईं।
2: पर आपका वेदांत भी तो लुप्त प्राय ही हो रहा था।
3: संभव है, काल के प्रवाह में कभी कभी ऐसा भास होता है कि वेदांत का महान प्रकाश अब बुझा। और जब ऐसी स्थिति आती है तब भगवान मानव देह धारण कर पृथ्वी पर आते हैं और फिर धर्म में पुनः एक ऐसी शक्ति, ऐसे जीवन का संचार हो जाता है कि वे फिर एकाध युग तक अदम्य उत्साह से आगे बढ़ता जाता है। आज वही शक्ति है और जीवन उसमें फिर आ गया है।
2: पर महाराज, इसका क्या प्रमाण है कि भारत ने ही शेष संसार को शिक्षित किया है?
3: संसार का इतिहास ही इसका

0: उन्हें बार बार प्यास लग रही थी और वे पानी पीते जाते थे। अंत में उन्होंने कहा, सिंगी कृपया मेरे लिए एक बर्फ के पानी का ग्लास मंगाओ, मैं फिर तुमको सब अच्छी तरह समझा दूंगा। पानी पीकर वे फिर बोलने लगे,
1: समझे ना, आज आवश्यकता है विदेशी नियंत्रण हटाकर हमारे विविध शास्त्रों विद्याओं का अध्ययन हो और साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान भी सीखा जाए, जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन भी कर सकें और भविष्य के लिए कुछ बचा भी सकें।
2: तोलिया संस्कृत पाठशालाओं के बारे में आपका क्या कहना है?
1: क्या तुमने उपनिषदों की कथाएं नहीं पढ़ी है? मैं अभी एक कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मचारी सत्यकाम गुरु के पास अध्ययन के लिए गया। गुरु ने उसे गाय चराने के लिए जंगल में भेज दिया। गाय चराते चराते कई मास व्यतीत हो गए, गायों की संख्या भी दुगनी हो गई। तब सत्यकाम ने आश्रम लौट चलने का विचार किया। मार्ग में एक वृषभ, अग्नि तथा कुछ अन्य प्राणियों ने सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। जब शिष्य आश्रम में गुरु को प्रणाम करने पहुंचा तो गुरु ने उसे देखते ही जान लिया कि उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस कथा का सार यही है कि सच्ची शिक्षा सर्वदा प्रकृति के संपर्क में रहने से ही प्राप्त होती है। ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
2: इससे आपका क्या मतलब है?
1: पंडितों के टोल और पाठशालाओं में पढ़कर तो मनुष्य जीवन भर बंदर बना रहता है। बाल्यावस्था से ही ज्वाजल्यमान उज्ज्वल चरित्र युक्त किसी तपस्वी महापुरुषों के सहवास में रहना चाहिए, जिससे कि उच्चतम ज्ञान का जीवित आदर्श सदैव दृष्टि के समक्ष रहे। केवल पढ़ लेने से कि मिथ्या भाषण पाप है कोई लाभ नहीं। हर एक को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लेना चाहिए, तभी हृदय में श्रद्धा और भक्ति का उदय होगा। नहीं तो जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं वो मिथ्या क्यों नहीं बोलेगा। हमारे देश में अध्ययन का महान कार्य सदैव निष्प्रह और त्यागी पुरुषों ने ही किया है। कालांतर में पंडितों ने ज्ञान और विद्याओं पर एकाधिपत्य कर पाठशालाओं की चार दीवारी में बंद कर दिया और इस तरह देश का अधः पतन होना शुरू हो गया। जब तक अध्यापन कार्य त्यागी पुरुषों ने किया, तब तक भारत समृद्ध बना रहा।
2: महाराज, आपका क्या अर्थ है? दूसरे देशों में तो सन्यासी नहीं है, पर देखिए उनकी ज्ञान गरिमा से आज भारत उनके चरण चूम रहा है।
1: मेरे मित्र, व्यर्थ की बातें मत बोलो, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। जब तक इस देश में अध्यापन और शिक्षा का भार त्यागी और निष्प्रह वहन नहीं करेंगे, तब तक भारत वर्ष को दूसरे देशों के तलुए चाटने पड़ेंगे। तुम नहीं जानते किस तरह एक निरक्षर युवक ने अपनी निष्प्रहता और त्याग के प्रभाव से तुम्हारे दिग्गज पंडितों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी से विष्णु प्रतिमा खंडित हो गई। पंडितों की एक सभा हुई और उन्होंने अपने पुराने पोथे और ग्रंथ देखकर निर्णय दिया कि खंडित मूर्ति का पूजन शास्त्र विरुद्ध है और नई मूर्ति की प्रस्थापना की जाए। इस पर काफी वाद विवाद और शोरगुल मचा। अंत में श्री राम कृष्ण बुलाए गए। उन्होंने सब कुछ सुनकर पूछा, क्या पति पंगु हो जाए तो पत्नी उसे त्याग देगी? फिर क्या हुआ? पंडितों ने ये तर्क सुना तो मुंह से शब्द नहीं निकला, मूक हो गए। और इस सरल कथन के सामने उनके शास्त्र और भाष्य एक और धरे के धरे रह गए। यदि पंडितों की शिक्षा प्रणाली ठीक थी तो श्री रामकृष्ण क्यों अवतार धारण करते और क्यों पुस्तकीय ज्ञान का उपहास करते? उनके साथ जिस नूतन जीवन शक्ति का आविर्भाव हुआ, उससे जब हमारी शिक्षा ओतप्रोत हो जाएगी तब ही सफलता प्राप्त होगी।
2: पर ये कहना सरल है, करना कठिन।
1: यदि ये कार्य सरल होता तो श्री रामकृष्ण को अवतार धारण करने की आवश्यकता न पड़ती। अब तुम्हें जो करना है वो ये कि नगर नगर और ग्राम ग्राम में एक मठ की स्थापना की जाए। क्या तुम ये नहीं कर सकते? अधिक नहीं, कुछ तो करो ही। कलकत्ते के बीच में एक मठ स्थापित करो, एक सुशिक्षित साधु उसका अध्यक्ष रहे और उसके निरीक्षण में दो सन्यासी विज्ञान व अन्य विषयों का अध्यापन करें।
2: आपको ऐसे सन्यासी कहाँ मिलेंगे?
1: हमें ऐसे सन्यासियों का निर्माण करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे युवकों की आवश्यकता है जिनके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना प्रज्वलित हो। एक त्यागी पुरुष जितना शीघ्र किसी विषय पर अधिकार प्राप्त कर सकता है, उतना अन्य कोई नहीं कर सकता।
0: कुछ समय बाद स्वामी जी बोले,
1: सिंगी, हमारी शताब्दी में इतना अधिक काम करना है कि मेरे और तुम्हारे जैसे सहस्त्र सहस्त्र मानवों की आवश्यकता है। केवल बोलने से क्या हो सकता है? देखो, देश कितनी विपत्र और दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गया है। इस समय कुछ करो। बच्चों के लिए उपयोगी एक पुस्तक तक तो इस देश में नहीं है।
2: क्यों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इतनी सारी किताबें तो हैं। मेरा ऐसे कहते ही स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले,
1: इनमें यही पढ़ते हो ना, ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप, सुबल अति सुबोध बालक आदि आदि। पर इससे काम नहीं चलने का। हमें बंगाली और साथ साथ अंग्रेजी में कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए जिनमें बहुत ही सरल और सीधी भाषा में रामायण, महाभारत और उपनिषदों की कथाओं का संग्रह हो, और फिर ये पुस्तकें बालकों को पढ़ने के लिए दी जाएं।
2: 11 बज रहे थे, आकाश में बादल घिर आए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। वर्षा होने की संभावना से स्वामी जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उठकर कहा, चलो सिंगी, चलो गंगा तट पर चलो। हम दोनों चल पड़े। मार्ग में स्वामी जी ने कालिदास के मेघदूत के कई श्लोक सुनाए, पर विचारधारा का अंततः प्रवाह एक ही था, भारत का हित। वे बोले,
1: सिंगी, तुम एक काम कर सकते हो, क्या कुछ दिनों तक हमारे युवकों के विवाह बंद नहीं कर सकते?
2: महाराज, ये कैसे होगा, जब सभी बाबू विवाहों में होने वाले व्यय को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
1: तुम इसकी चिंता ना करो, काल का प्रवाह कौन बदल सकता है। इस प्रकार के सब आंदोलन व्यर्थ हैं। कुछ दिन शोरगुल रहेगा, फिर सब शांत हो जाएंगे। विवाह शादियां जितनी ज्यादा खर्चीली होती जाएंगी, उतना ही देश का भला होगा। परीक्षाएं पास करने और फिर विवाह करने के लिए कितनी भगदड़, कितनी दौड़ धूप हो रही है। ऐसा लगता है कोई कुंवारा नहीं बचेगा। पर अगले वर्ष फिर वही हाल होता है।
2: फिर क्या करना चाहिए?
1: यदि मुझे कुछ अविवाहित ग्रेजुएट मिल जाएं, तो मैं उन्हें जापान भेजकर उन्हें यांत्रिक शिक्षा दिलाने का प्रबंध कर दूंगा, जिससे कि जब वे स्वदेश लौटें, तो अपने ज्ञान से भारत का कुछ हित कर सकें।
2: महाराज, इंग्लैंड की अपेक्षा जापान जाना क्या हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगा?
1: अवश्य। मेरे मत में हमारे शिक्षित धनी व्यक्ति यदि जापान जाएं और वहां का हालचाल देखें, तो उनकी आंखें खुल जाएंगी।
2: वो कैसे?
1: जापान में तुम पाओगे कि उन्होंने दूसरों से जो सीखा है, उसे आत्मसात कर अपना बना लिया है, पचा लिया है। हमने जो विदेशियों से सीखा, उसे हम पचा नहीं पाए। उन्होंने यूरोप वासियों की हर चीज ग्रहण की, पर वे जापानी ही बने रहे, यूरोपीय नहीं बने। पर हमारे यहाँ तो पाश्चात्य ढंग से रहने का एक संक्रामक रोग पैदा हो गया है।
2: महाराज, मैंने कुछ जापानी चित्रकला के नमूने देखे हैं। उनकी कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, और स्फूर्ति का स्रोत उनकी अपनी संस्कृति है, उसमें नकल उनकी प्रेरणा नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक है। आज जापान एक महान राष्ट्र है, और इसका कारण है उनकी कला। देखते नहीं, हमारे समान वे भी एशियावासी हैं, और यद्यपि आज हम अपना सर्वस्व खो बैठे हैं, फिर भी जो कुछ हमारे पास अवशेष है, वही विश्व को चकित कर देने के लिए काफी है। एशिया की आत्मा ही कलात्मक है। एशिया का हृदय चिरकाल से कला की क्रीड़ा स्थली रहा है। एशियावासी कला शून्य वस्तु का कभी उपयोग ही नहीं करते, उसका उपयोग ही हर वस्तु कला से शोभित है। तुम नहीं जानते, हमारे यहाँ कला हमारे धार्मिक जीवन का एक अंग बन गई है। हमारे देश में कई युवती तीज त्योहार पर्व उत्सव के दिन यदि घर के आंगन और दीवार पर सुंदर चित्र बनाना जानती है, तो उसकी कितनी प्रशंसा होती है। श्री राम कृष्ण स्वयं कितने महान कलाकार थे।
2: अंग्रेजों की कला भी अच्छी है, नहीं क्या?
1: तुम कितने अनाड़ी हो, पर तुम्हें दोष देने से क्या लाभ, जबकि सर्वसाधारण की यही धारणा है। अफसोस, आज देश की यही दशा हो गई है। आज हम अपने सोने को पीतल समझ बैठे हैं, और दूसरों का पीतल हमारे लिए सोना बन गया है। वो हमारी आधुनिक शिक्षा का जादू है। देखो, यूरोपीय जब एशिया के संपर्क में आए हैं, तब से कहीं उन्होंने अपने जीवन को कलामय बनाने का प्रयत्न शुरू किया।
2: महाराज, यदि कोई आपकी बात सुनेंगे तो कहेंगे कि आप निराशावादी हो रहे हैं।
1: स्वाभाविक है, जो जड़ हो गए हैं वे और क्या सोच सकेंगे। उफ, कोई मेरी आंखों से देखे, उनकी इमारतें देखो, वे कितनी साधारण, कितनी अर्थशून्य हैं। इन विशाल सरकारी इमारतों को देखो, क्या उनका बाह्य स्वरूप देखकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस भाव, किस आदर्श की प्रतीक हैं? नहीं, क्योंकि वे सब प्रतीक शून्य हैं। पाश्चात्यों का पहनावा ही लो, उनके तंग कोट सीधे पैंट शरीर पर इतने तंग और चिपके होते हैं कि बिल्कुल भद्दे मालूम देते हैं। नहीं, पर हम लोग पता नहीं उसमें क्या सुंदरता देखते हैं। जिसे देखो कोट पतलून ठासे है। इस देश का भ्रमण तो करो, और यदि देखने के लिए आंखें हैं, समझने के लिए बुद्धि है तो देखो। इस देश की प्राचीन इमारतों को देखो, उनके देखने भर से ही मालूम होता है कितनी कला भरी है। उनका जलपात्र है कांच का गिलास, पर हमारा है धातु निर्मित लोटा। दोनों में कौन कलापूर्ण है? तुमने देहातों में किसानों के घर देखे?
2: जी हाँ, अवश्य।
1: उनमें क्या देखा?
2: महाराज, वे अत्यंत साफ सुथरे होते हैं और रोज उनका आंगन लीपा पोता जाता है।
1: क्या तुमने उनके अन्न भंडार देखे? उनमें कितनी कला है। उनकी मिट्टी की दीवारों पर भी कितने प्रकार के चित्र बने होते हैं। और जरा पाश्चात्य देशों में जाकर देखो, निम्न वर्ग के लोग किस तरह रहते हैं, तब तुम्हें मालूम होगा कि दोनों में कितना महान अंतर है। उनका आदर्श है उपयोगिता, हमारा है कला। पश्चिम का निवासी हर एक वस्तु में उपयोगिता ढूंढता है, और हम कला। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर हमने कलापूर्ण लोटा तो फेंक दिया, और उसके स्थान पर घरों में विदेशी इनामेल के गिलास विराजमान हो गए हैं। हमने इस उपयोगितावाद के आदर्श को इस सीमा तक अपना लिया है कि अब वो हास्यास्पद लगने लगा है। अब हमें उपयोगिता और कला के समन्वय की आवश्यकता है। जापान ये समन्वय लाने में जल्दी सफल हो गया, और उसने अभूतपूर्व प्रगति कर ली। अब जापान पाश्चात्य देशों को भी सिखाने की क्षमता रखता है।
2: विश्व में किस राष्ट्र की वेशभूषा सर्वोत्तम है?
1: आर्यों की। यूरोप वासी भी इसे स्वीकार करते हैं। आर्यों के परिधान की पटलियां किस कलापूर्ण ढंग से लटकती हैं। अधिकांश देशों के राजवस्त्र आर्यों के वेशभूषा की ही नकल हैं। उनमें भी आर्यों के समान पटलियां बनाकर लटकाने का यत्न किया जाता है, और इन राजवस्त्रों में व उन देशों के सर्वसाधारण की वेशभूषा में बहुत अंतर है। सिंगी, तुम भी ये भद्दे यूरोपीय कमीज पहनना छोड़ दो।
2: क्यों महाराज?
1: इसलिए कि पाश्चात्य लोग इसका केवल अंतर वस्त्र के रूप में ही प्रयोग करते हैं। वे उसे सदैव कोट और जैकेट के नीचे ही पहनते हैं, केवल कमीज कभी नहीं पहनते। पर हम भारतीय कितनी भूल कर रहे हैं। जिसे देखो कोट पतलून कमीज धारण करने में गर्व का अनुभव करता है, जैसे वेशभूषा के संबंध में कोई नियम ही ना हो, कोई विधि परिपाटी या प्रणाली ही ना हो, और जिसकी जो मर्जी आए और जो दिखे वही कपड़े पहन ले। हमारे यहाँ किसी और का छुआ अन्न यदि कोई खा लेता है तो उसे जात से बाहर कर देते हैं। यदि यही नियम विदेशी वेशभूषा धारण करने पे लगवाया जाए तो कितना अच्छा होगा। अपनी प्राचीन भारतीय वेशभूषा क्यों धारण नहीं की जाती? इस यूरोपीय कोट कमीज के पहनने में कौन सी शान है, क्या अर्थ है?
2: अब वर्षा होने लगी और भोजन बेला सूचक घंटी भी बज गई थी, इसलिए सबके साथ हम भी प्रसाद ग्रहण करने गए। भोजन करते करते वे बोले,
1: भोजन ऐसा रहे कि मात्रा में कम पर पुष्टिकारक हो। पेट को ढेर सारे भात से ठूंस देना ही आलस्य का मूल है। जापानियों को देखो, वे दिन में 2-3 बार दाल के साथ भात खाते हैं। वे कई बार भोजन करते हैं, पर हर समय खाते थोड़ा थोड़ा ही है। उसमें जो अच्छे घर के होते हैं वे प्रतिदिन मांस भी खाते हैं, पर हम दिन में 2 बार गले तक पेट को भात से भर लेते हैं, और हमारी सारी शक्ति उस भात को पचाने में ही समाप्त हो जाती है।
2: क्या हम गरीब भारतीयों के लिए मांस मछली खाना संभव है?
1: क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा तो खा ही सकते हैं। एक दिन में पाव भर काफी है। हमारा सबसे बड़ा दोष है आलस, और यही हमारी गुलामी का कारण है। समझो किसी की नौकरी छूट गई, या घर में जो 2-3 आदमी कमाने वाले थे उसमें से कोई मर गया, तो लोग क्या करते हैं? वे या तो बच्चों का दूध बंद कर देते हैं या एक बार खाते हैं, कभी शाम को भात ही खाकर सो जाते हैं।
2: पर ऐसी परिस्थिति में और कर भी क्या सकते हैं?
1: पर वे ज्यादा मेहनत कर थोड़ा सा और कमा लेने का प्रयत्न क्यों नहीं करते, जिससे कम से कम दो बार भोजन तो मिल ही जाए। पर नहीं, मेहनत कौन करे, उन्हें अड्डों पर जाकर गप्पे लगाने और समय नष्ट करने की आदत जो पड़ गई है। अगर वे जाने कि वे समय का कितना नाश और दुरुपयोग कर रही हैं, तो इस देश की काया पलट हो जाए।
3: आपने अब तक की बातचीत से स्वामी जी को विभिन्न विषयों पर बोलते सुना। इसी तरह की सारगर्भित बातचीत का अंश हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। इन वार्तालापों से स्वामी जी के बहुमुखी व्यक्तित्व का ज्ञान हमें होता है। उनके सुस्पष्ट विचार हमेशा मौलिक हुआ करते थे। लोग शायद उनके सभी विचारों से सहमत ना हों, परंतु ये विचार उत्तेजक उद्गार हमें उन विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन गौरव अभ्यंकर का, और इसके बाद प्रस्तुति होगी रघुनंदन पंचीकर के गायन की। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गौरव अभ्यंकर का गायन।
4: गायन का प्रारंभ एक स्वरचित शिव वंदना से करूंगा, जो कि याग रमन राग यमन में एक ताल में निबद्ध है, मध्य लय की रचना है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और आज हमने चुनी है कहानी मुक्तिधन। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभदायक है। आमतौर पर सूत की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें 15 रुपए सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग, ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी हो जिसके पास कुछ फालतू धन हो, वो ये व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का ये सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल इसी श्रेणी के महाजन थे। वो कचहरी में मुक्तारगिरी करते थे, और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से होता था। उच्च वर्ण वालों से वो चौकन्ने रहते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ को रुपए देने से कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। लेते समय तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वो सारी संपत्ति गायब हो जाती है। पत्नी, पुत्र या भाई का उसमें अधिकार हो जाता है, और उस संपत्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र विद्वान भी मुगी खाते थे। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुस्लिम अपनी गाय बेच रहा था, और कई आदमी उसे घेर के खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गाय की पगहिया छीन लेता था। किंतु वो गरीब एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था, कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे थन। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गौ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वो व्यक्ति शुभ्ध और दुखी दिख रहा था। करुण नेत्रों से गौ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दाऊ दयाल गौ को देखकर रीझ गए और पूछ बैठे, क्यों जी, ये गौ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? उस मुस्लिम युवक ने दाऊ दयाल को देखा तो खुश होकर उनके समीप चला गया। हाँ हुजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दाऊ दयाल ने पूछा। तब उस मुस्लिम युवक ने अपना नाम बताया। नाम तो रहमान है, और मैं पचोली में रहता हूँ। दूध देती है तुम्हारी गाय? दाऊ दयाल ने पूछा। हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दोह लीजिए। अभी दूसरी ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दोहले। बच्चे पैर के पास खेलते हैं, क्या मजाल कि सिर भी हिला दे। दाऊ दयाल ने पूछा, कोई तुम्हें यहां पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबा हुआ कि कहीं चोरी का माल तो ना हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूं, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। क्या दाम मांगते हो? दाऊ दयाल ने पूछ लिया। रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल जच गया। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और 35 रुपए पर सौदा आखिरकार तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वो मोह के बंधन में पड़ा था। कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर गऊ को मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे ले चला। तब एक आदमी ने कहा, अरे हम 36 रुपए दे रहे थे, हमारे साथ चलो। तब रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? तब दूसरे ने कहा, हमसे 40 रुपए ले लो,
अब तो खुश हो? ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी नहीं भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी अपनी राह ले ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे, और ये बाकी सब कसाई हैं। इनके हाथ में 50 रुपए में भी नहीं बेचता मैं इसे। आप बड़े मौके में आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को मैं कभी नहीं बेचता। इसे अपने हाथों से पाला है मैंने, कैसे बेच दूं कसाइयों के हाथ? सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही ये दूध देगी, और भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होगा हुजूर। एक अरज और है, अपने चरवाहे को डांट देना, इसे मारे ना। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य? यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊएं बेचते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते वो तो, और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि किसी कसाई के हाथ में न पड़े। वाह, गरीबों में भी इतनी समझ है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दे दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के तो सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। वो इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, और उपाय नहीं था इसलिए विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौरी में मुस्लिम कई परिवार थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले थे। रहमान की बूढ़ी माँ भी हज के लिए तैयार हो गई और उसने रहमान से कहा, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान के लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं, खुदा तुमको फल देगा। मातृभक्ति तो वैसे भी ग्रामीणों का विशिष्ट गुण होता है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे और माता की आज्ञा भी नहीं टाल सकता था। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ईख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ईख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। ये माँ की दुआ का फल था, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो हो, तब काम बनेगा। उसने सारे उपाय सोच लिए। जब उसका बस नहीं चला तो वो दाऊ दयाल के पास चला गया कर्ज लेने। दाऊ दयाल ने देखते ही बोला, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? हाँ हुजूर, बेची थी, रहमान ने जवाब दिया। रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाया और बोला, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ दयाल ने कहा, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 35 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा, बस। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिए हुजूर, आपके ही हाथ में हूँ। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया तो थोड़ा सा गुड़ रखा था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझा कर माँ के साथ हज को चला गया। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ मेरे रुपए, कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ, अम्मा जब से हज करके आई हैं तब से बीमार हैं, रात दिन बस उन्हीं की दवा दारू में हूँ। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा, साल भर की मोहलत और दे दीजिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़े ब्याज हो जाएगा।
रहमान के पास एक ही जवाब था, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ गया है, प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था और अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी, कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत, ऐसे कितने ही संस्कार थे जो जरूरी थे। पैसों की परेशानी थी, उसको मालूम था कि लाला दाऊदयाल पैसे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो दाऊदयाल के पास चला गया। रास्ते में एक एक कदम उसके लिए मुश्किल था। लाला दाऊदयाल कचहरी से आकर बैठे ही थे और वो नौकरों पर बिगड़ रहे थे। लाला दाऊदयाल ने रहमान को देखा तो रुष्ट होकर बोले, क्यों आए हो तुम यहाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, इस वक्त मुझे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ नहीं बोला, वो डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। लेकिन दाऊदयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो उसे दोबारा बुला लिया और नम्र होकर बोले, कैसे आए थे, क्या काम था। तब रहमान ने कहा, नहीं सरकार, बस सलाम करने आया था। दाऊदयाल ने कहा, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता, क्या मतलब है कहो। अब तो रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ अब नहीं रही। क्यों रहमान, तुम्हारी माँ से धार गई। रहमान ने हाँ कहा, हुजूर आज तीसरा दिन है। अरे रे रे रे, ना रो भैया, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हो गया, ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, और अब क्या चाहिए। रहमान ने भी धीरे से कहा, हुजूर कुछ अरज करने आया हूँ, हिम्मत नहीं है, पिछला भी पड़ा है, अब किस मुंह से मांगू, लेकिन अल्लाह जानता है कि कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, और काम ऐसा है कि ना करूँगा तो जिंदगी भर पछताऊँगा। आगे आप मालिक हैं, कुछ समझ कर दे दीजिए, कुएं में डाल रहा हूँ, जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूँगा, मगर हुजूर इस घड़ी मना ना कीजिए। रहमान लगातार रो रहा था, दाऊदयाल को दया आ गई। ओ भाई, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, खबर है इसकी। रहमान ने कहा, गरीब परवर, अल्लाह दे तो बीघे ईग में 500 आ सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊदयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य था। खेती की हालत अनाथ बालक की तरह होती है, जल और वायु अनुकूल हुई तो अनाज के ढेर लग जाते हैं, लेकिन अगर जरा भी नुकसान हुआ तो सब बिगड़ जाता है। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा, बीवी बच्चे दिलो जान से निपट गए, ऐसी ईख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए, सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था, सब उसकी ईख देखकर बहुत खुश होते थे। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अघन का महीना था, रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था, ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ईख के पत्ते जला लिए थे। तभी हवा का झोंका आया, जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंच गए और देखते ही देखते आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह एक के ऊपर एक गिर रही थीं। सारे उपाय व्यर्थ हो गए, सारा खेत जलकर राख हो गया। अब तो रहमान का दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए, परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। उसे तो चिंता सिर्फ दाऊदयाल की थी कि दाऊदयाल का आदमी आएगा तो वो क्या बोलेगा। अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। सुबह का वक्त था, वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही देख रहा था और देखा कि दाऊदयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे आ रहा है।
प्राण सूख गए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसने बचा पाया, लेकिन छिपता तो कहाँ छिपता। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते, मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की बात, एक दिन की भी देरी हुई तो नालिश ठोक देंगे, बेभाव की पड़ेगी तुम्हें। तब रहमान ने कांपते हुए कहा, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया। तब चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना, 700 रुपए देना है तुम्हें। भैया सारी ईख जल गई, अल्लाह जानता है कि अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। तब चपरासी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ईख का किसी ने ठेका नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। और चपरासी ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए दाऊ दयाल के घर ले गया। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने तक का मौका नहीं दिया गया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर नहीं उठाया। बस वह अपने मुंह से कह रहा था, या अली मुश्किल कुशा, उसके मुंह से ही निकल रहा था। उसे अब इस नाम का भरोसा था, यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वो गिर जाता या बेहोश हो जाता। दाऊ दयाल द्वार पर टहल रहे थे, रहमान जाकर उनके कदमों पे गिर गया। खुदाबंद बड़ी विपत्ति है, अल्लाह जानता है मैं कहीं का नहीं हूँ। दाऊ दयाल ने कहा, क्या सब ईख जल गई? हुजूर सुन तो चुके हैं आप, तो अब मैं क्या करूं, नालिश कर दूं? दाऊ दयाल ने कठोर स्वर में कहा। तब रहमान ने कहा, हुजूर मालिक है, जो चाहे करे, मैं तो इतना जानता हूँ हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है, अपनी सोची नहीं होती, 2 बार वादे किए थे, दोनों बार झूठा हो गया, अब जो कुछ भी मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा, मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा हुजूर आपके पैसे दूंगा। दाऊ दयाल मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है, बताओ। हुजूर बस यही आरजू है कि आपके रुपए अदा हो जाएं। अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए, दाऊ दयाल ने कहा। अरे हुजूर ये कैसे समझ लूं, यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे, रहमान ने आश्चर्य से कहा। नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था, दाऊ दयाल ने कहा। सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मर सकता मैं, रहमान ने हाथ जोड़ लिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, कैसा जी, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी और वहां भी, अब तुम मेरे एक भी पैसे के देनदार नहीं हो, असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछड़े नफे में अलग मिले, अगर तुमने ये गऊ कसाई को दे दी होती तो मुझे इतना बड़ा फायदा कैसे होता, बताओ भला। तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, वो शराफत मुझे याद है, उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो रहमान, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं भैया। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में किया है, हम तुम दोनों अब बराबर हैं, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा, इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहे उतने ले लो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है, मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और निम्न हो जाए तो शैतान, ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी ना निकल पड़े, बहुत मुश्किल से उसने आंसुओं को रोका, रुंधे हुए स्वर में कहा,
हुजूर, इस नेकी का बदला खुदा आपको देगा, मैं तो आज से आपका गुलाम समझूंगा। दाऊदयाल ने रहमान को उठा लिया और कहा, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान रुंधे स्वर में बोले जा रहा था, नहीं हुजूर, मैं आपका गुलाम। और दाऊदयाल ने रहमान को गले लगा लिया। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले ही मुझे मुक्ति धन अदा कर चुके हो, अब भूलकर भी ये शब्द नहीं निकालना दोस्त।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर मैं हूं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आज़ाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस की प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुरसेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है। उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी, फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं। तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुरसेन, अठोक दे दावा कॉलेज पर। पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में। आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
2: May I come in, sir?
3: Yes, come in. फरमाइए।
2: सर, ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
3: नोटिस? मगर किस बात का?
2: कंपेंसेशन का, सर।
3: कंपेंसेशन? मगर वो कैसा?
2: सर, आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
3: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
2: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजी बिल्कुल है,
3: है?
2: पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना। बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
3: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
2: सर, आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था। मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
3: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
2: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सर।
3: क्या?
2: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
3: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
2: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
3: अच्छा,
2: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
3: क्या कह रहे हो?
2: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
3: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
2: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है। BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
3: और अगर हम ना बोल दें तो?
2: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
3: ओह नो।
2: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
3: ठीक है मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
2: शौक से करिए, एक हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने एक हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए, बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत हुए
1: श्रीमान।
0: हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि बामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई
0: ओ,
1: है।
0: अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: अरे सर सर मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत
1: अरे
0: सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कौन, कपाल भारती जी? अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो
2: ना ना ना
0: गई?
2: ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी? वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने।
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित तो हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं रही सर वो।
1: हाँ
0: ओ, भाई बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे।
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर सेन के पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर?
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है, रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर?
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर?
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो?
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: यह है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और यह है मिस्टर श्रीवास्तव।
2: हेलो।
0: गणित पढ़ा

0: यस सर।
1: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
2: हाँ तो चतुर्सेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं?
0: सर सात।
2: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
0: कह दिया ना सर, सात वचन, फाइनल आंसर।
2: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप?
0: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधु एक दूसरे को सात वचन देते हैं। तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए? साथ ही ना।
2: चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे?
0: अंधे कवि?
2: हाँ
0: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
2: एक क्लू देता हूँ आपको।
0: हाँ।
2: वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
0: सर याद आ गया।
2: हाँ।
0: तुलसीदास।
2: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
0: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
2: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए।
0: जी।
2: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
0: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
2: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ।
0: जी।
2: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
0: जी सर, गोविंदा।
2: गोविंदा?
0: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
2: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
0: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
2: अरे
0: अरे ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
2: ठीक है चतुर्सेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
0: विद्या शब्द का पर्यायवाची?
2: हाँ।
0: सर मुझे नहीं मालूम।
2: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
0: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
2: बताइए।
0: श्री देवी।
2: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
0: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
2: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
1: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
3: धन्यवाद जी। चतुर्सेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है तो 2 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अरे अरे, सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
0: जी जी सर।
3: एक आदमी अगर किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है तो 2 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
0: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
3: थोड़ा सोच कर चतुर्सेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई, जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना?
0: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
3: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
0: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को 2 दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब 2 आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो 2 दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना?
3: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
0: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
3: वो कैसे?
0: अरे सर, फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, 2 2 लोगों के 2 गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर फुटॉप बल हो जाएगी और 4 के 4 हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
3: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारिए आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। 1 पेंसिल का दाम 1 रुपए है तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
0: 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
3: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
0: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया, 12 पेंसिलें और 10 रुपए, हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
3: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
0: सर 50 किलोमीटर का।
3: मगर कैसे?
0: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है, ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ कम जरूर जा सकती है।
1: ठीक है चतुर्सेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी,
1: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
1: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
0: हाँ तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
1: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
0: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
0: बहन छायावती ने।
1: मगर वो कैसे?
0: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए, बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
1: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
0: सर जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
1: वेरी गुड वेरी गुड, एक उदाहरण देंगे इन करों का?
0: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
1: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
0: जी।
1: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
0: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
1: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
0: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
1: ठीक है चतुर्सेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
0: जी बेहतर सर।
1: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कहिया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
3: जी सर।
1: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
3: सर हमारे पास एक आइडिया है।
1: वो क्या?
3: सुनिए सर।
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
3: ना सर
1: फिर बुलाइए बुलाइए उसे बुलाइए बुलाइए। चतुर सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%, लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
0: जी सर।
1: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
0: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
1: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
0: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
2: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
1: बताइए बताइए।
2: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
1: अभी हमारे है ना?
2: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
0: सर सर सर ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर लाइए, ये चेक मुझे दे दीजिए।
1: बिल्कुल नहीं भुंजी, भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
0: सर।
1: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में आप सुनेंगे गायन कीर्ति दुबे और पंडित छन्नूलाल मिश्र का। तो आइए, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गायन, जिसको प्रस्तुत कर रही हैं कीर्ति दुबे।

अब अंत में हमारे भोलेनाथ की होली विचित्र होली है और इसमें भगवान शंकर का दर्शन होता है। देखिए कैसी होली है। साल में एक बार कृष्ण राधा की होली होती है, जलता है होलिका, और यहाँ भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट पर रोज होली जलाते हैं। और कैसे होली खेलते हैं,

उन्होंने जब होली दिखा तो क्या कहती है, भूतनाथ की मंगल होरी। ये होली सुन

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए दानिश को इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए प्रस्तुत है। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं मित्रावरुण, छंद है अतिशक्वरी।
2: सुषुमा यातमद्रिभिर गोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे आराजाना दिविस्प्रशास्मत्रा गंतमुपनह इमे वाम मित्रा वरुणा गवाशिरह सोमाह शुक्रा गवाशिरह। हे मित्र और वरुणदेव, हम इस सोमरस को पत्थरों द्वारा कूट कर निचोड़ते हैं। यह गो दुग्ध मिश्रित सोम निश्चित ही आनंद प्रद है, अतएव आप दोनों हमारे यहाँ पधारें। अति दीप्तिमान तथा दिव्य लोक को स्पर्श करने वाले आप दोनों हमारे पालन पोषण के निमित्त यहाँ आए। हे मित्र और वरुण देवों, यह पवित्र सोमरस गोदुग्ध तथा जल में मिलाकर तैयार किया गया है, जो आपके लिए प्रस्तुत है। इम आ यातमिंदवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः उत वामुषसो बुधिसाकं सूर्यस्य रश्मिभिः सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारु रुरिताय पीतये। हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों निचोड़कर तैयार किए गए दूध और दही में मिश्रित तेजस्वी सोमरस का पान करने के लिए यहाँ आए। आपके लिए प्रभात वेला में सूर्य रश्मियों के प्रकाशित होने के साथ ही यह सोमरस अभिषुत किया गया है। मित्र और वरुण देवों के लिए यह अभिषुत सोम प्रस्तुत है। ताम वाम धेनुम न वासरी मंशु दुहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहन्त्यद्रिभिः अस्मत्रा गन्तमुप नोर्वांचा सोमपीतये अयम् वाम मित्रा वरुणा नृभिः सुतः सोम आपीतये सुतः। हे मित्र और वरुण देव, आपके लिए ऋत्विक गण उसी प्रकार पत्थरों को कूट कर सोम वल्लियों से रस निचोड़ते हैं, जिस प्रकार गौवों से दूध का दोहन किया जाता है। आप दोनों हमारे संरक्षण के लिए सोमपान हेतु यहाँ आए। हे मित्रा वरुण देवो, आप दोनों के पान करने के लिए ही याज्ञिकों द्वारा सोमरस निचोड़ा गया है।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 137वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार आदाब,
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो
1: आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण राय पर केंद्रित कार्यक्रम आजाद हिंद आपको सुनवाएंगे 8:30 से। मन्नू भंडारी पर केंद्रित कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार सुनेगा 9 बजे से। रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हमें कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज की कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। हमें चाहिए कि इन सीमाओं में रहते हुए ही हम अपना आचरण बनाए रखें।

अगर हम स्वस्थ हैं तो भाग्यशाली हैं, संतुष्ट हैं तो अमीर हैं, शांत हैं तो सुखी हैं, दया करुणा परोपकार के भाव रखते हैं तो हम श्रेष्ठ हैं।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: FM 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ब्रह्मदेश वर्मा पर विजय और सिख युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर निष्कंटक राज्य करने के सपने देखे, पर उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर तुषारपात का वर्ष सिद्ध होगा। देशव्यापी युद्ध की गोपनीय तैयारियां होने लगी, किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा थी। म्यान में पड़ी भारतीय तलवारें बाहर निकलने को आतुर हो रही थीं। वीरों के भाले शत्रु के रक्त के प्यासे हो रहे थे। भारतीय बंदूकें और तोपे अग्नि वर्षा के लिए विकल हो उठी थीं। वीरों की भुजाएं अब फड़क रही थीं। आजादी के दीवानों को प्रतीक्षा के एक पल एक वर्ष जैसे लंबे लग रहे थे। आखिरकार एक दीवाने के धैर्य का बांध टूट ही गया और वे सामूहिक अभियान की प्रतीक्षा किए बिना ही अंग्रेजों को ललकारते हुए रणभूमि में कूद पड़े। 29 मार्च 1857 का दिन अंग्रेजों के लिए दुर्भाग्य के दिन के रूप में उदित हुआ था। 5वीं कंपनी की 34वीं रेजिमेंट का 446 नंबर का सिपाही वीरवर मंगल पांडे अंग्रेजों के लिए प्रलय सूर्य के समान निकला था। बैरकपुर की संचलन भूमि में प्रलय वीर मंगल पांडे का रणघोष गूंज उठा। बंधुओं उठो, उठो, तुम अब भी किस चिंता में निमग्न हो? उठो, तुम्हें अपने पावन धर्म की सौगंध। चलो, स्वातंत्र लक्ष्मी की पावन अर्चना करेंगे। इन अत्याचारी शत्रुओं पर तत्काल प्रहार करो।

मंगल पांडे के बदले हुए तेवर देखकर अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन उनके पथ को अवरुद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने उन विद्रोही को उसकी उद्दंडता का पुरस्कार देना चाहा। अपनी कड़कती आवाज में मंगल पांडे को खड़ा रहने का आदेश दिया गया। वीर मंगल पांडे के अरमान अब मचल उठे। वो शिव शंकर की भांति सनद्ध होकर रक्त गंगा का आवाहन करने लगे। उनकी सबल बाहुओं ने बंदूक अब तान ली। उनकी सधी हुई उंगलियों ने बंदूक का घोड़ा अपनी ओर खींचा और गोली का तीव्र स्वर वातावरण में गहरा उठा। मेजर ह्यूसन घायल कबूतर की तरह भूमि पर तड़प उठा। उसका रक्त भारत की भूमि पर बह गया। 1857 के वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने एक फिरंगी की बलि ले ली थी। विप्लव महायज्ञ के पुरोधा मंगल पांडे की बंदूक पहला स्वाहा बोल चुकी थी। स्वातंत्र यज्ञ की वेदी को दस्यु देह की समिधा अर्पित हो चुकी थी। ह्यूसन को धराशाही हुआ देखकर लेफ्टिनेंट बॉब वहां पर जा पहुंचा। उस अश्वारूण गोरे ने मंगल पांडे को घेरना चाहा। पहला ग्रास खाकर मंगल पांडे की बंदूक की भूख अब और भड़क उठी थी। बंदूक ने दूसरी बार मुंह खोला और लेफ्टिनेंट बॉब घोड़े सहित धरती पर दिखाई दिया। गिरकर भी बॉब ने अपनी पिस्तौल मंगल पांडे की ओर साध दी और गोली चला दी। विद्युत गति से वीर मंगल पांडे गोली का वार बचा ले गए और बॉब रह गए देखते। अपनी पिस्तौल को मुंह की खाती हुई देखकर बॉब ने अपनी तलवार खींच ली और वो मंगल पांडे पर टूट पड़ा। मंगल पांडे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। बॉब ने मंगल पांडे पर प्रहार करने के लिए तलवार तानी ही थी कि पांडे की तलवार का भरपूर हाथ उस पर ऐसा पड़ा कि बॉब का कंधा तलवार वाला हाथ जड़ से कटकर अलग हो गया। एक बली मंगल पांडे की बंदूक ने लिया और दूसरी बली उनकी तलवार ने। लेफ्टिनेंट बॉब को गिरा हुआ देखकर एक दूसरा अंग्रेज भी मंगल पांडे की ओर बढ़ गया, लेकिन भारतीय सैनिक ने बंदूक के डंडे से उस अंग्रेज की खोपड़ी खोल दी। अपने आदमियों को गिरता हुआ देखकर कर्नल व्हीलर मंगल पांडे की ओर बढ़ा, लेकिन सभी भारतीय सिंह गर्जना कर उठे। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा आज हम अपनी पवित्र देह को स्पर्श नहीं करने देंगे। कर्नल व्हीलर जैसा था वैसा ही लौट गया। इस सारे कांड की सूचना अपने जनरल को देकर उसने अंग्रेजी सेना को बटोरा और वहां से रवाना हो गया।

वीर मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी थी। उन्होंने शत्रु के रक्त से भारत भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसे महान कार्य के लिए अपनी रक्तांजलि देना भी उन्होंने अपना पावन कर्तव्य समझा। उन्होंने अपनी बंदूक अपनी छाती से अड़ाकर गोली चला दी। गोली छाती में सीधी ना जाकर पसलियों में फंस गई और घायल सिंह अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया कि वो मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उनके साथियों के नाम और पते पूछ सकें, लेकिन वो मंगल पांडे थे। मंगल होकर अपने साथियों का अमंगल कैसे करते? फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुनाया गया। 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया। वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे के पवित्र प्राण हव्य को पाकर स्वातंत्र यज्ञ की लपटें अब और भड़क उठी। क्रांति की ये लपलपाती हुई लपटें फिरंगियों को लील जाने के लिए अब चारों ओर फैलने लगी थीं। ऐसे थे वीर मंगल पांडे। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हम शत शत नमन करते हैं।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्ते। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुनो कहानी। इसके अंतर्गत आज सुनिए दो बहनों की कहानी।
2: नमस्कार। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। कहानियां जो अपने भीतर समेटे होती हैं अथाह भाव सागर, अपने समय को जीती सांस लेती हैं शब्दों में, धड़कती हैं किताबों में। ऐसी कहानियां जो श्रोताओं के मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, वही कहानियां लेकर हम आएंगे इस कार्यक्रम में। शीर्षक है दो बहनें।

0: दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोद होकर खुश हुईं। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई है, कुछ उसका रंग भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली पतली और फूहड़ उतनी ही, और साथ में मंदबुद्धि भी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही है, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 500 स्त्रियां जमा हैं, मगर ये आकर्षण, ये जादू किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती, इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण आखिर आया कहां से, इस रहस्य का पता लगाएगी। उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। देखा, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती है। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। अरे, असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ जाता है, चुड़ैल सी नजर आए। फिर सोचने लगी, मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे, वे भी बहुत निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया? कौन जाने गहने भी कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो ये स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो भाई, मैं तो जैसी हूं अच्छी हूं। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है, घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी, वो तो निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हूं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के 2 लड़के हैं उसके, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, अरे किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी भी वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, मानो उसका पति तो लाठ ही हो। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल तो ये भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पास को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अब बीए में होगा? राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या, एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं और कमीशन ऊपर से, 5 रुपए रोज सफर खर्च के मिलते हैं, ये समझ लो 500 का औसत तो पढ़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च हो गया। भाई ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए ना। 350 बेदाग घर को दे देते हैं, इसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुश फैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते?
1: रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो 1/4 तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500? इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली,
0: बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात।
1: अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है।
0: एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी।
1: रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति? और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए? मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली,
0: तब तो शायद 1000 रुपए मिलने लगे ना, 1000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा?
1: परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला,
0: मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। अरे सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या हुई।
1: राम दुलारी जोर से हंस पड़ी।
0: इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी आजकल दुनिया पैसा देखती है, आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है। भाई पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है। जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है?
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी? उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता, जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोंकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था, राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उससे प्रयोजन नहीं, वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे, रूप कुमारी भी उठी। एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए कार आती होगी, चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो फिर चली जाना, मैं जीजा जी से कहला भेजूंगी तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं, आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैं तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा ना तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे, ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या पैसे, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ, और आंख किसकी बचाऊं, सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सच कहूं सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर लालटेन टिमटिमा रही थी, उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे। मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को आज वो घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाहियां, एक लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी खाटें, बस यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे कांटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना भी नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा,
2: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखा ली है, जो रात वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझको ही पीसते रहोगे?
1: उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, चार पांच रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा।
2: तो लाकर रख क्यों ना दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते।
1: हाँ, ये गलती तो हुई।
2: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूं, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं। जिंदगी नरक हो गई।
1: व्यंग्य बाणों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर ये उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बलि है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता ना। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता, बेगार सी टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में

0: अख्तियार में है, जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं। भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं, सौ सौ मकान तैयार हैं। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर। बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी। बस मुझे पता था। पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था। वही व्यापार मैं करता हूं। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। अरे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं। कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूं सब। और हिसाब में लिखता हूं 1000 रिश्वत दी, देता हूं 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकालकर वो उसकी चरणों की भेंट करता है और कहता है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लातें मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं। जितने धनी हैं वे सबके सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने यह किया, उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था। तो भाई मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना, खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा। और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो, चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हॉल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज में कुव्यवस्था, आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहाँ बैठा बैठा क्या कह रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया? जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं? मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जी दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो, मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया। जानता था वो सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें, कार्यक्रम सुनो कहानी में। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं नौशाद अली पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

कला कल्लोलिनी एक अत्यंत भावपूर्ण और साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ये केवल कार्यक्रम नहीं, ये एक एहसास है, एक स्मृति है, एक ऐसी धड़कन जो आज भी हर सुर में बसती है। तो आज कला कल्लोलिनी में हम बात करने वाले हैं नौशाद अली की।

0: कला कल्लोलिनी को समझने के लिए सबसे पहले इनके दोनों शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। कला सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य आदि, भावनाओं, सौंदर्य और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति कल्लोलिनी। संस्कृत शब्द कल्लोल से बना है, अर्थ लहर, तरंग, उमंग से भरी धारा। कल्लोलिनी वो जो तरंगित हो, लहरों से भरी हो।
1: इस प्रकार कला कल्लोलिनी का अर्थ है कला की लहरों से प्रवाहित होती हुई धारा, ऐसी कला जो निरंतर बहती रहे, मन को आंदोलित करे और भावनाओं में तरंग उत्पन्न करे।
0: सरल शब्दों में कला कल्लोलिनी शब्द का अर्थ है वो कला जो दिल में लहरों की तरह उठे, बहती रहे और आत्मा को छू जाए, अर्थात कला के तरंगों से लहराती हुई चेतना। और नौशाद का संगीत सचमुच उसी कल्लोलिनी का सजीव रूप है।

0: जब हम किसी महान कलाकार जैसे नौशाद अली के संगीत को कला कल्लोलिनी कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है उनका संगीत एक ऐसी धारा है जो समय के साथ बहती रहती है, जो हर पीढ़ी के दिल में नई लहर पैदा करती है।
1: जब भी कोई धुन दिल को छूकर गुजरती है, जब भी कोई गीत आंखों को नम कर देता है, तब कहीं ना कहीं उसके पीछे होता है एक नाम, नौशाद। एक ऐसा नाम जिसने संगीत को केवल रचना नहीं बल्कि पूजा बना दिया।
0: भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में यदि संगीत के अमर स्तंभों की चर्चा की जाए तो नौशाद अली का नाम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। वो केवल एक संगीतकार नहीं थे बल्कि भारतीय संगीत परंपरा के संवाहक, नव प्रवर्तक और संवेदनशील रचनाकार थे। उनके संगीत में शास्त्रीयता की गहराई, लोक धुनों की सहजता और भावनाओं की मधुरता का अद्भुत संगम मिलता है।
1: सिनेमा संगीत को हिंदुस्तानियत का जामा पहनाने वाले नौशाद का जन्म तहजीब और नजाकत के लिए मशहूर नवाबों के शहर लखनऊ में 25 दिसंबर 1919 को हुआ। लखनऊ उस समय कला और संगीत का प्रमुख केंद्र था, जहां गजल, ठुमरी और कथक जैसी विधाओं का विशेष महत्व था। बचपन से ही नौशाद का झुकाव संगीत की ओर था। वे मेलों, नाटकों और नौटंकी में बजने वाले संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
0: लखनऊ की गलियों में एक छोटा सा बच्चा चुपचाप बैठकर संगीत की लहरों में खो जाता था। वो बच्चा जिसके सपनों में सुरों की दुनिया बसती थी, जिसके दिल में हर धड़कन एक राग बन जाती थी। लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। परिवार की बंदिशें, समाज की दीवारें, फिर भी उसने अपने सुरों को थामे रखा।
1: उनके परिवार में संगीत को पेशे के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, फिर भी उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। संगीत के प्रति उनकी प्यास बढ़ती चली गई और जल्द ही स्कूल जाते समय उन्हें रॉयल टॉकीज नाम का एक सिनेमा हॉल मिला, जहां मूक फिल्में दिखाई जाती थी। मूक फिल्मों के दौर में फिल्म से जुड़े संगीतकार अंतराल के दौरान या कुछ दृश्यों के बैकग्राउंड में संगीत बजाते थे। नौशाद के पास सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखने या संगीतकारों को सुनने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसलिए वह बाहर खड़े होकर संगीत सुनते थे और धुन के सभी सुर उन्हें याद हो जाते थे। अब वह सीखी हुई धुन को बजाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई वाद्य यंत्र खरीदने का साधन नहीं था।
0: घर वालों का मुख्य काम था मुंशीगिरी, लेकिन बालक नौशाद का मन तो पूरी तरह संगीत में बसता था। जब वो 9 साल के थे, तब लखनऊ के अमीनाबाद के मुख्य बाजार की एक दुकान जहाँ वाद्य यंत्र बिकते थे के करीब वो रोज जाने लगे। जब कई दिनों तक ऐसा हुआ तो मालिक ने एक दिन पूछ ही लिया। बातचीत के बाद नौशाद ने वहां काम करना स्वीकार कर लिया। उनका काम दुकान खुलने के समय से लेकर अन्य स्टाफ के आने से पहले की साफ सफाई था। नौशाद को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। वो रोज समय से आते और दुकान खुलवा कर सभी वाद्य यंत्रों की अच्छी तरह सफाई करते और उन्हें जी भर कर छूते। कुछ वक्त तो ऐसे ही बीत गया।
1: एक दिन दुकान खोलने वाले स्टाफ ने नौशाद से कहा, भैया तुम जब तक साफ सफाई करो, मैं तब तक चाय पी कर आता हूँ। नौशाद ने कहा, जी ठीक है। वे उधर गए। नौशाद ने मौका देखकर वाद्य यंत्रों पर हाथ आजमाना शुरू कर दिया। एक दिन उस साज पर तो दूसरे दिन दूसरे और तीसरे दिन तीसरे साज पर। इसी तरह हर रोज स्टाफ चाय पीने जाता और नौशाद रियाज में लग जाते। यह रोज का काम हो गया। यह सब महीनों चलता रहा। वे चोरी छिपे संगीत सीखते और हारमोनियम बजाने का अभ्यास करते थे। यही संघर्ष आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाता है।
0: एक दिन वो भी आया जब मालिक गुरबत अली समय से पहले आ धमका और नौशाद हारमोनियम बजाते पकड़े गए। नौशाद डरे हुए थे। उनकी हालत खराब थी। ठंड के समय में पसीना आ निकला था, लेकिन मालिक ऊपर से गुस्सैल बन रहा था और अंदर ही अंदर खुश था। पूछताछ के बाद अंत में मालिक ने वो पेटी यानी हारमोनियम नौशाद को दे दी और कहा, अच्छा बजाते हो, खूब रियाज करना।
1: जब गुरबत अली को पता चला कि नौशाद ने ये धुनें राजमहल के बाहर खड़े होकर सीखी थी, तो उन्होंने नौशाद को राजमहल के संगीतकार उस्ताद लद्दन साहब से मिलवाने का भी प्रयास किया। लद्दन साहब नौशाद की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे खूब अभ्यास करवाया तथा उनके अन्य सहायकों के साथ उसे काम देना शुरू कर दिया। गुरबत अली ने स्वयं भी नौशाद को संगीत का कुछ ज्ञान दिया।
0: इस प्रशिक्षण के अलावा नौशाद ने उस्ताद बब्बन साहब और संगीत महाविद्यालय के प्रोफेसर यूसुफ अली खान से संगीत की शिक्षा लेकर अपने ज्ञान को और निखारा। इन सभी उस्तादों ने नौशाद के भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के साथ साथ हारमोनियम और पियानो पर उनकी महारत को और बढ़ाया। नौशाद ने तबला, सितार, शहनाई बजाना भी सीखा। अब नौशाद ने छोटे थिएटर समूहों और नाटक के लिए वादन करना शुरू किया। वो एक समूह का हिस्सा बने और अपने दोस्तों के साथ लखनऊ, बरेली, गुजरात और कभी कभी कानपुर के आसपास के स्थानों की यात्रा भी करने लगे।
1: नौशाद अली का व्यक्तित्व बहुत सरल और विनम्र था। वे संगीत को साधना मानते थे। उनका मानना था कि संगीत केवल सुर और ताल का मेल नहीं बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति है। वे अपने काम में पूर्णता के लिए जाने जाते थे। एक गीत को रिकॉर्ड करने से पहले वे कई बार अभ्यास कराते थे ताकि उसमें कोई कमी न रह जाए।
0: संगीत के प्रति अपनी अटूट लगन के कारण नौशाद मुंबई आ गए। यहाँ उनका संघर्ष बहुत कठिन था। कई बार छोटे मोटे काम करके उन्होंने अपने जीवन को चलाया। मुंबई की भीड़ में एक अकेला कलाकार जिसके पास न छत थी न सहारा, फुटपाथ पर बीती रातें, भूखे पेट गुजरे दिन, लेकिन दिल में एक ही आवाज, मैं हार नहीं मानूंगा, संगीत ही मेरी पहचान है।
1: धीरे धीरे उन्हें संगीतकारों के सहायक के रूप में काम मिलने लगा। उन्होंने उस्ताद झंडे खान और खिमचंद प्रकाश जैसे संगीतकारों के साथ काम किया, जिससे उन्हें फिल्म संगीत की बारीकियों को समझने का अवसर मिल गया।
0: ये दौर उनके जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि इसी समय उन्होंने अपनी कला को निखारा। भारतीय फिल्म संगीत के क्षेत्र में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके संगीत और रचनाएं हमेशा प्रशंसकों के दिलों में जीवित रहेगी।
1: उनमें से एक है महान संगीतकार नौशाद अली, जिनकी जीवन यात्रा संघर्ष, समर्पण और अद्भुत सफलता की मिसाल है। उनके पिता ने उन्हें संगीत और घर में से एक चुनने की शर्त रखी थी, और शादी के समय उनके ससुर ने उनके गाने को नई पीढ़ी को बर्बाद करने वाला कहकर नकार दिया था।
0: नौशाद का घर लखनऊ के अकबरी गेट के कांधारी बाजार झवाई टोला में था। वे लाटूस रोड पर अपने उस्ताद उमर अंसारी से संगीत सीखने लगे। इस बात से उनके वालिद नाराज रहते थे। अंत में बात यहाँ तक आ गई कि वालिद ने कह दिया कि अगर संगीत को अपनाओगे तो घर छोड़ दो। नौशाद ने मन में ये बात ठान ली कि घर छोड़ना सही होगा, लेकिन संगीत नहीं। वो संगीत को अपनाए रहे। उनका अब मूल काम गाना बजाना हो गया। हालांकि उन पर कुछ समय कई बार पाबंदियां लगी, घर के दरवाजे बंद किए गए, लेकिन नौशाद ने दादी का सहारा लिया और संगीत का शौक जारी रखा। उनके पांव और ख्वाब उनके पिता कभी नहीं रोक पाए। इसी बीच उन्होंने मैट्रिक पास कर ली।
1: मैट्रिक पास करने के बाद वे लखनऊ के विंडसर एंटरटेनर म्यूजिकल ग्रुप के साथ दिल्ली, मुरादाबाद, जयपुर, जोधपुर और सिरोही की यात्रा पर निकले। जब कुछ समय बाद म्यूजिकल ग्रुप बिखर गया तो नौशाद ने लखनऊ लौटने के बजाय मुंबई का रुख कर लिया और 16 वर्ष की किशोर उम्र में यानी 1935 में वे मुंबई आ गए। इस प्रशिक्षण के अलावा नौशाद ने उस्ताद बब्बन साहब और संगीत महाविद्यालय में प्रोफेसर यूसुफ अली खान से संगीत की शिक्षा लेकर अपने ज्ञान को और निखारा। इन सभी उस्तादों ने नौशाद के भारतीय शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के साथ साथ हारमोनियम और पियानो पर उनकी महारत को भी बढ़ाया। नौशाद ने तबला, सितार और शहनाई बजाना भी सीखा। अब नौशाद ने छोटे थिएटर समूहों और नाटकों के लिए वादन करना शुरू कर दिया। वह एक समूह का हिस्सा बने और अपने दोस्तों के साथ लखनऊ, बरेली, गुजरात और कभी कभी कानपुर के आसपास के स्थानों की यात्रा करने लगे।
0: नौशाद के लिए मुंबई उम्मीदों का शहर था। यहाँ उन्हें पहला ठिकाने के रूप में दादर के ब्रॉडवे सिनेमा घर के सामने का फुटपाथ मिला। तब नौशाद ने सपना देखा था कि कभी इस सिनेमा घर में उनकी कोई फिल्म जरूर लगेगी। उस किशोर कल्पना को साकार होने में काफी वक्त लगा। शुरू में नौशाद ने N.A. दास यानी नौशाद अली दास के नाम से कुछ संगीतकारों के साथ काम किया। उन्हें काम मिलने लगा था, लेकिन बहुत नहीं।
1: 1940 में बनी प्रेमनगर में नौशाद को पहली बार स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का मौका मिला। इसके बाद एक और फिल्म स्टेशन मास्टर भी सफल रही। उसके बाद तो जैसे नौशाद संगीत के मोतियों की माला सी बुनते चले गए। नौशाद को पहली बार सुनहरी मकड़ी फिल्म में हारमोनियम बजाने का अवसर मिला। यह फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन शायद यहीं से नौशाद का सुनहरा सफर शुरू हुआ। इसी बीच गीतकार दीनानाथ मधो डीएन से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उनका परिचय फिल्म इंडस्ट्री के अन्य लोगों से करवाया, जिससे नौशाद को छोटा मोटा काम मिलना शुरू हो गया।
0: ये नौशाद के संगीत का ही जादू था कि मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग, कई फिल्मों को न केवल हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया। दीदार के गीत, बचपन के दिन भुला न देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, ले जा मेरी दुआएं, ले जा परदेश जाने वाले, इन्हीं गीतों की बदौलत इस फिल्म ने लंबे समय तक चलने का रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद तो नौशाद की लोकप्रियता में खासा इजाफा हुआ। बैजू बावरा की सफलता से नौशाद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। संगीत में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1982 में फाल्के अवार्ड, 1984 में लता अलंकरण और 1992 में पद्म भूषण से नवाजा गया।
1: नौशाद को सुरैया, अमीर बाई कर्नाटकी, निर्मला देवी, उमा देवी आदि को प्रोत्साहित कर आगे लाने का श्रेय जाता है। सुरैया को पहली बार उन्होंने नई दुनिया में गाने का मौका दिया, जब सुरैया इतनी छोटी थी कि उन्हें स्टूल पर खड़ा होकर गाना गाना पड़ा। जब अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर छपी कि एक छोटी सी बच्ची ने गाना गाया है, तो फिल्म प्रोड्यूसर बहुत नाराज हुए। मगर नौशाद अपनी पसंद से वाकिफ थे और गाना रिलीज होने के बाद प्रोड्यूसर को भी समझ आ गया कि नौशाद सही थे। इसके बाद शारदा व संजोग में भी गाने गवाए। सुरैया के अलावा निर्मला देवी से सबसे पहले शारदा में तथा उमा देवी यानी टुनटुन की आवाज का इस्तेमाल दर्द में अफसाना लिख रही हूं के लिए नौशाद ने किया। नौशाद ने ही मुकेश की दर्द भरी आवाज का इस्तेमाल अनोखी अदा और अंदाज में किया। अंदाज में नौशाद ने दिलीप कुमार के लिए मुकेश और राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी की आवाज का उपयोग किया। सन 1944 में युवा प्रेम पर आधारित रतन के गाने उस समय के दौर में सुपरहिट हुए थे।
0: जब देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उनके पिता वाहिद अली एक अदालत में मुंशी थे और परिवार संगीत को पसंद नहीं करता था। नौशाद ने बचपन में देवा शरीफ की दरगाह पर कव्वालियां सुनी थी और यहीं से वो संगीत की ओर आकर्षित हुए थे और लखनऊ में उस्तादों से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली थी।
1: नौशाद ने रॉयल थिएटर में साइलेंट फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने वाली टीम के साथ काम करना शुरू किया, जहां उन्हें संगीत निर्देशन की असली शिक्षा मिली। उन्होंने हारमोनियम में सुधार भी किया। बाद में वह इंडियन स्टार थिएटर कंपनी के साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात के दौरे पर गए, जहां उन्होंने विभिन्न लोक संगीत शैलियों को भी सीखा।
0: जब नौशाद ने संगीत को अपने करियर के रूप में अपनाने का निर्णय लिया तो ये रास्ते आसान नहीं थे। लखनऊ छोड़कर मुंबई का रुख करना और उसके बाद शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष का सामना करना, यहाँ तक कि फुटपाथ पर सोना और कुछ समय तक परिचितों के घर पर रहना और फिर मुंबई में उस्ताद झंडे खां से संगीत की बारीकियां सीखकर न्यू थिएटर के ऑर्केस्ट्रा में पियानो वादक के रूप में काम करना आपने शुरू कर दिया था।
1: 1940 में फिल्म प्रेम नगर से स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। गीतकार डीएन मधो उनकी प्रतिभा पर भरोसा जताते थे। 1942 में फिल्म नई दुनिया और शारदा ने उन्हें पहचान दिलाई। शारदा में 13 साल की सुरैया ने उनके संगीत में गाना गाया था।
0: 1944 में फिल्म रतन के साथ नौशाद को बड़ी सफलता मिली। फिल्म रतन ने उनकी किस्मत बदल दी थी, जिससे उनकी तनख्वाह 75 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए हो गई। इस फिल्म के गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गए और वो रातों रात प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद नौशाद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: उनकी संगीत यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए, जहां उन्होंने अपने संगीत से इतिहास रच दिया। उनकी धुनों में एक अलग ही आत्मा होती थी, जो सीधे दिलों को छू जाती थी। नौशाद के संगीत की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने रागों का प्रयोग इतनी सरलता और मधुरता से किया कि आम श्रोता भी उसे आसानी से समझ और महसूस कर सके।
0: उनके संगीत में राग यमन, भैरव, दरबारी, मालकोन आदि का सुंदर प्रयोग मिलता है। उन्होंने भारतीय लोक धुनों को भी अपने संगीत में जगह दी है, जिससे उनकी रचनाएं और भी जीवंत बन गईं। उनके गीतों में भावनाओं की गहराई इतनी ज्यादा होती थी कि श्रोता उसमें डूब जाते थे। वे बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग करते थे और लाइव रिकॉर्डिंग को प्राथमिकता देते थे।
1: नौशाद ने कई ऐसी फिल्मों में संगीत दिया जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। सन 1952 में बैजू बावरा, ये फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इसमें शास्त्रीय संगीत का अद्भुत प्रयोग हुआ। मन तड़पत हरिदर्शन को आज और ओ दुनिया के रखवाले जैसे गीत आज भी अमर हैं। एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण उनके लिए 5 अक्टूबर 1952 का था, जब दादर के ब्रॉडवे थिएटर में उनकी फिल्म बैजू बावरा का प्रीमियर हो रहा था।
0: इस दौरान जब नौशाद बालकनी में खड़े थे तो वो फफक फफक कर रो रहे थे। जब निर्देशक विजय भट्ट ने उनसे पूछा कि वो क्यों रो रहे हैं, तो नौशाद ने आंसू पोंछते हुए कहा, फुटपाथ के उस पार से इस थिएटर तक आने में मुझे 16 बरस लग गए। ये उत्तर उनके संघर्ष और सफलता दोनों की कहानी बयां करता है। 1957 में आई मदर इंडिया, इस फिल्म का संगीत भारतीय ग्रामीण जीवन की झलक प्रस्तुत करता है। इसमें लोक धुनों का सुंदर उपयोग किया गया। फिर नौशाद के संगीत बद्ध किए मदर इंडिया के गीत भला कैसे कोई भूल सकता है, खासकर वो होली गीत जो आज भी होली के सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जाता है। 1960 में आई मुगले आजम, ये फिल्म उनके संगीत का शिखर मानी जाती है। जब प्यार किया तो डरना क्या, और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, ऐसे गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए।
1: 1961 में आई गंगा जमुना ने तो धमाल ही मचा दिया था। वह फिल्म पूर्वांचल पर की आधारित थी। उसमें एक गाना था, नैन लड़ जाई है तो मनवा म कसक हुई बेकरी। नौशाद ने किसी कव्वाल को गाते हुए सुना था, भाग में हुई है ये सिरप की सनक हुई बेकरी। इसी कव्वाली से मुतसर होकर उन्होंने शकील बदायूनी के साथ बैठकर पूरा गाना लिखा।
0: फिर आई संघर्ष, और एक बार फिर शकील, नौशाद, रफी और दिलीप साहब की जोड़ी ने पर्दे पर धमाल मचा दी। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, रफी साहब की आवाज का जादू, यूसुफ साहब के ठुमके और शकील साहब की कलम और नौशाद साहब का संगीत, सब कुछ खालिस पुरभिया। फिल्म में उन्होंने भोजपुरी लोक धुनों का प्रयोग किया जो उस समय का एक नया प्रयोग था। उन्होंने गुलाम मोहम्मद के अधूरे संगीत को पूरा करके पाकीजा के गाने भी तैयार किए।
1: नौशाद ने अपने समय के महान गायकों के साथ काम किया और उनके स्वर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, तलत महमूद उस्ताद, बड़े गुलाम अली खान, उन्होंने हर गायक की आवाज के अनुसार संगीत तैयार किया, जिससे गीतों में अद्भुत सामंजस्य पैदा हुआ।
0: नौशाद केवल पारंपरिक संगीतकार नहीं थे, बल्कि उन्होंने कई नए प्रयोग भी किए। पश्चिमी वाद्य यंत्रों का भारतीय संगीत के साथ संयोजन, बड़े कोरस का उपयोग, ध्वनि तकनीक में नवीनता, उन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक कला के रूप में प्रस्तुत किया।
1: एक दिलचस्प किस्सा ये है कि जब नौशाद मुंबई में सफल हो चुके थे, तब भी परिवार को ये नहीं बताया कि वे फिल्मों में संगीतकार हैं। एक निकाह के दौरान लाउडस्पीकर पर उनका गाना अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं बज रहा था। उनके ससुर ने इस गाने को सुनकर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे गाने नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। नौशाद चुप रहे और ये नहीं बताया कि ये गाना उनका ही है।
0: नौशाद हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। पहली फिल्म में संगीत देने के 64 साल बाद तक अपने सास का जादू बिखेरते रहने के बावजूद नौशाद ने केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया। लेकिन उनका कौशल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि गुणवत्ता संख्या बल नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे है। भारतीय सिनेमा को समृद्ध बनाने वाले संगीतकारों की कमी नहीं है, लेकिन नौशाद अली के संगीत की तो बात ही अलग थी। नौशाद ने फिल्मों की संख्या को कभी तरजीह नहीं दी, केवल संगीत को ही परिष्कृत करने में लगे रहे।
1: आइए एक नजर डालते हैं उनके सुप्रसिद्ध गीतों पर। मन तरपत हरिदर्शन, बैजू बावरा, ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा, झूले में पवन के, बैजू बावरा, मुहे पनघट पे नंदलाल, मुगले आजम, प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम, खुदा निगेबा, मुगले आजम, मधुबन में राधिका नाचे रे, कोहिनूर, ढल चुकी शाम गम, कोहिनूर, नन्हा मुन्ना रागी हूं, सन ऑफ इंडिया, अपनी आजादी को हम, लीडर, इंसाफ की डगर पर, गंगा जमुना।
0: नौशाद और सहगल जी से जुड़े हुए भी बहुत से वाक्य हैं जिन्हें आज हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी बात जो हमेशा के लिए कालजयी सिद्ध हो गई। सहगल साहब को लगता था कि वो स्टूडियो में बहुत आसानी से कुछ गीत नहीं गा सकते, लेकिन नौशाद साहब अगर साथ हैं तो फिर क्या कहना। सहगल साहब ने अपने गाए दोनों गीत जो नौशाद साहब ने गवाए थे जब सुने तो बोले, काश मुझसे तुम पहले मिले होते, ये गीत कौन सा था इसका तो पता नहीं चला, लेकिन शाहजहां के गीत जब दिल ही टूट गया और हम जी के क्या करेंगे, इसके बाद एक और गीत गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये तीनों ही गीत कालजयी सिद्ध हुए और यहां से नौशाद साहब और केएल सहगल साहब की जोड़ी ने लोगों के बीच में, लोगों के दिल में बहुत जगह बनाई।
1: तुम महान गायक बनोगे, पहले आपके निर्देशक कारदार मियां के पास एक बार सिफारिशी पत्र लेकर एक लड़का पहुंचा। तब उन्होंने नौशाद से कहा कि भाई इस लड़के के लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है क्या। नौशाद ने सहज भाव में कहा, फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं है, हाँ अलबत्ता इतना जरूर है कि मैं इनको कोई समूह यानी कोरस में गवा सकता हूं। लड़के ने हाँ कर दी। गीत के बोल थे, हिंदू है हम हिंदोस्तां हमारा, हिंदू मुस्लिम की आंखों का तारा। इसमें सभी गायकों को लोहे के बूट पहनाए गए क्योंकि गाते समय पैर पटक पटक कर गाना था ताकि जूतों की आवाज का इफेक्ट आ सके। उस लड़के के जूते थोड़े टाइट थे। गाने की समाप्ति पर लड़के ने जूते उतारे तो उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। यह सब देख रहे नौशाद ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब जूते टाइट थे तो तुम्हें बता देना था। इस पर उस लड़के ने कहा, आपने मुझे काम दिया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। जब नौशाद ने कहा था एक दिन तुम महान गायक बनोगे, यह लड़का आगे चलकर मोहम्मद रफी के नाम से जाना गया।
0: भारतीय फिल्म संगीत के पितामह नौशाद गंगा जमुनी तहजीब का वो नायाब रत्न हैं जिसके लिए संगीत ही मान था और जिसने संगीत को ही इबादत का दर्जा दिया था। नौशाद, ये नाम सुनते ही जहन में गूंजने लगते हैं सैकड़ों तराने जिन्हें अपनी धुनों से नौशाद साहब ने सजाया था। 26 सिल्वर जुबली, 9 गोल्डन जुबली और 3 प्लैटिनम जुबली फिल्मों का संगीत रचने वाले नौशाद मौलिक संगीत रचनाओं की एक मिसाल थे। मुगले आजम, बैजू बावरा, अनमोल घड़ी, शारदा, आन, संजोग, गंगा जमुना, मदर इंडिया, सन ऑफ इंडिया, लीडर, संघर्ष, साथी, अंदाज, मेला, आदमी, राम और श्याम, कितनी ऐसी फिल्में हैं जिनके संगीत को न केवल नौशाद साहब ने हिट बनाया बल्कि कालजयी भी बना दिया।
1: संगीत जगत के लिए उनके इस योगदान पर उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1954 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार बैजू बावरा के लिए दिया गया। 1961 में फिल्म गंगा जमुना के लिए बंगाल फिल्म पत्रकार संघ का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार दिया गया। सन 1975 में मुंबई के टेलीविजन सेंटर द्वारा निर्मित 30 मिनट की वृत्तचित्र फिल्म नौशाद अली। 1981 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। 1987 अमीर खुसरो पुरस्कार। 1990 टीपू सुल्तान की तलवार टीवी श्रृंखला के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत, 1992 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1992 भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार, 1993 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवध रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1994 महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सन 2000 स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, सन 2008 बांद्रा में स्थित क्वार्टर रोड का नाम उनके स्मृति में संगीत सम्राट नौशाद अली मार्ग रखा गया।
0: उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। उन्होंने शायरी भी की और आठवां सुर नामक किताब भी प्रकाशित की। नौशाद की दास्ता संघर्ष लगन और प्रतिभा की एक बेहतरीन मिसाल है। नौशाद एक प्रयोग धर्मी संगीतकार थे। आन फिल्म में उन्होंने 100-piece ऑर्केस्ट्रा के साथ संगीत दिया था। इसके उलट मेरे महबूब फिल्म का टाइटल गीत सिर्फ 6 साजों के साथ बनाया। वो पहले ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत का फ्यूजन किया। साउंड मिक्सिंग शुरू करने वाले भी नौशाद साहब पहले संगीतकार थे।
1: रफी की बहुमुखी प्रतिभा का नौशाद ने बखूबी उपयोग किया। एक से बढ़कर एक नगमों को उन्होंने बंदिशें दी। नौशाद साहब ने मुकेश के दर्द भरी आवाज का इस्तेमाल अनोखी अदा, मेला, अंदाज और साथी में किया। फिल्म अंदाज में उन्होंने दिलीप कुमार के लिए मुकेश की तो राज कपूर के लिए रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया था। वो चांद खिला वो तारे डूबे, क्या रात गजब की आई, इश्क चला गए हुस्न से मिलने, जुल्म की बदली छाई, सोहनी महिवाल, महेंद्र कपूर ने नौशाद के निर्देशन में गाया था। नौशाद साहब ने केएल सहगल से लेकर कुमार शानू तक से भी गाने गवाए। केएल सहगल का गाया फिल्म शाहजहां का गाना आज भी पसंद किया जाता है।
0: भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे मुस्लिम फनकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर भजन की रचनाएं की। तानसेन के गाए कई भजन थे, रस खान तो कृष्ण भक्ति में रम ही गए थे। बहुत से ऐसे मुस्लिम शायर हुए जिन्होंने भजन लिखे, नौशाद साहब भी उन्हीं में से एक थे। शास्त्रीय संगीत की किताबों से निकलकर उन्होंने भजनों को दिलों में बसाया। उन्होंने रागों को इतना सरल, इतना मधुर बनाया कि हर कोई उसे महसूस कर सके।
1: जब जब भारतीय फिल्म संगीत की बात होती है, एक नाम स्वतः ही हमारे मन में गूंज उठता है। वो नाम है नौशाद अली। एक ऐसा नाम जिसने सुरों को आत्मा दी, जिसने धुनों को भक्ति, प्रेम और देशभक्ति के रंगों में पिरोया। नौशाद का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी कई संगीतकार उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शास्त्रीय संगीत को भी लोकप्रिय बनाया जा सकता है यदि उसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए।
0: आज के इस दौर में संगीत में तेजी और तकनीक का बहुत अधिक प्रभाव है, वहीं नौशाद साहब का संगीत हमें मूल्यों की, परंपराओं की याद दिलाता है। उनका संगीत हमें सिखाता है कि सच्ची कला समय की सीमा से बहुत परे होती है।
1: कला जब बहती है तो कल्लोलिनी बन जाती है, और नौशाद का संगीत वही कल्लोलिनी है जो कभी नहीं रुकती, हर पीढ़ी में, हर दिल में, हर एहसास में। 5 मई 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। नौशाद साहब को लखनऊ से बेहद लगाव था, और इस बात को उनकी खुद की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है। रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है, ये कूचा मेरा जाना पहचाना है, क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है।
0: कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाज हमेशा साथ रहती है। नौशाद साहब, आपके सुर आज भी जिंदा हैं। आप सुनते रहिए, महसूस करते रहिए, क्योंकि संगीत कभी मरता नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। आज का ये कार्यक्रम समर्पित था महान संगीतकार नौशाद जी को। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन विनीता जैन और इसका वाचन किया था मनीषा चतुर्वेदी
1: और मैं दीपेश।
0: नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कलापिनी कोमकली पर आधारित भक्ति गीत हमारे विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, 90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति पदों का गायन। कलाकार हैं कलापिनी कोमकली।

0: ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: संगीत को पूरी निष्ठा और निरंतर साधना से उत्कर्ष की नई दिशाएं देने वाली सुश्री कलापिनी हमारे संगीत समय की यशस्वी गान प्रतिभाएं हैं। मूर्धन्य गायक पंडित कुमार गंधर्व और संगीत विदुषी श्रीमती वसुंधरा कोमगली की बेटी और उनकी इस शिष्या ने कठिन उत्तराधिकार को पारंपरिक गरिमा और मौलिक संज्ञान से अपने कला व्यक्तित्व में अंगीकार किया है। आध्यात्मिक आनंद, रंजनकारी तत्वों का समावेश और राग रस का भावात्मक विस्तार उनके गायन की वे खूबियां हैं जो श्रोताओं से एक सहज आत्मीयता का सेतु तैयार करती हैं। उनके अनेक रिकॉर्ड जारी हो चुके हैं जिनमें उनकी गायकी के बेशुमार पोशीदा पहलुओं को परखा जा सकता है। पहली और देवी अहिल्या उन फिल्मों के नाम हैं जिनमें कलापिनी जी ने पार्श्व गायन भी किया है। इन दिनों देवास में स्थापित पंडित कुमार गंधर्व संगीत अकादमी रियाज के अनेक रचनात्मक प्रकल्पों में अपना सक्रिय योगदान दे रही है। सुश्री कलापिनी को अनेक सम्मानों से विभूषित किया जा चुका है जिसमें संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार विशेष उल्लेखनीय है।
2: सबको नमस्कार। आज की संतवाणी के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक चंद्र सखी के पद से करने जा रही हूँ। एक तरह का मंगलाचरण है ये और कुछ अप्राप्य चंद्र सखी के पदों में से एक है। कल्याण में निबद्ध है।

अब मैं आपके सम्मुख एक अभंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन। कलाकार थीं कलापिनी कोमकली। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं महुआ महोत्सव पर रेडियो रिपोर्ट।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है, आपके साथ में हूं फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां 6 जून से शुभारंभ हुआ महुआ महोत्सव का। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में।
3: तो प्रस्तुत है नाटक राजा लोह गुंडी।

anymore.

दामन सतयुग के मृत्युलोक मा एक बड़े प्रतापी राजा रहे जेकर नाम महाराज पंच नारायण। यही राजा की एक ठन पुत्री रहे हिरोली कन्या। महाराज पंच नारायण अपन बेटी हिरोली के बिहावला लोहरीपुर के राजकुमार लोहगुंडी के साथ बचपन मा ही कर दे रहे। लेकिन होइस या कि महाराज पंच नारायण भी बिसर गए और वडहार लोहगुंडी के दाई दादा भी। अब हिरोली बड़े हो गई से और कैसे महल के चारों तरफ अपन सखियन संग खेल कूद रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने आजाद हिंद।
1: नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल,
1: है ना,
2: बताइए ना।
1: जी, आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल के क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप और हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पुलिन बिहारी दास और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
2: इतिहास
1: जी,
2: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी आज की गौरव गाथा के नायक हैं।
1: जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आज हम बात करते हैं एक नहीं दो क्रांतिकारियों की, और वो हैं मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रॉय।
2: जी हाँ,
1: 1930 का साल, पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी। हमारे राजनेता देशभक्त अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए थे और हर एक क्रांतिकारी, हर देशभक्त और हर भारतवासी की एक ही अभिलाषा थी, और वो थी भारत की आजादी।
2: आजादी पाने की इसी अभिलाषा ने बंगाल के क्रांतिकारियों में भी जोश भर दिया। बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: जी,
2: देश के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
1: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय चाहते थे कि अपने देश का ही नागरिक वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तब तक मारते जाएंगे जब तक उस पद पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया।

0: मिदनापुर के एक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी को बुलाया गया। 7 अप्रैल 1931 को प्रदर्शनी का उद्घाटन करने शाम 7:30 बजे श्री जेम्स वहां आए। विद्यालय के कई कमरों में प्रदर्शनी लगाई गई थी।
1: विद्यालय के पहले कमरे में जेम्स पेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में घुसे, एक नौजवान ने रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो वहां से भागे, एक दूसरे क्रांतिकारी ने उनका पीछा किया और उन पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरे विद्यालय में भगदड़ मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए कलकत्ता से खास डॉक्टर भी बुलवाए गए। डॉक्टर आए और ऑपरेशन से जेम्स पेड्डी के शरीर से एक गोली निकाली।
0: अगली सुबह एक ऑपरेशन और किया गया और उनके शरीर से एक और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था, उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी की मौत से अंग्रेज सरकार बौखला गई, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम संभाल तो लिया, लेकिन वे शुरू से डरे हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने अपने भाई और कुछ मित्रों को पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने इस डर का भी जिक्र किया। सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मीटिंग में कई सदस्य हिस्सा ले रहे थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 8 गोलियां डगलस के शरीर में समा गई।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान भागे। पुलिस ने पीछा किया। उनमें से एक पुलिस की गोली से घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाशी ली गई और जेब से एक पर्चा निकला जिसमें लिखा था, हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का ये हल्का प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से अंग्रेज सरकार को ये सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
0: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सितंबर 1931 की रात जेल के सिपाहियों ने मिलकर लाठियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर दत्त नाम के दो क्रांतिकारी मारे गए। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बुलवाए गए, लेकिन डगलस को बचाया नहीं जा सका। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1933 की सुबह प्रद्योत भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई।
1: रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के बाद पीईजी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले दो अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।
0: 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग की टीम टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। श्री बर्ग निर्धारित समय पर मैदान पहुंचे। उनके अंगरक्षक भी उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्ग मैदान में उतरे और खेलने लगे। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए वे आगे बढ़े, उस खिलाड़ी ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां चला दी। उन पर गोली चलाने वाले क्रांतिकारी का नाम था मृगेंद्र कुमार दत्त। उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी ने भी बर्ग पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले इस दूसरे क्रांतिकारी का नाम था अनाथ बंधु पांजा। 6 गोलियां खाकर मजिस्ट्रेट बर्ग जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई।
1: पास में खड़े पुलिस अधिकारी ने मृगेंद्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बर्ग के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृगेंद्रनाथ दत्त की मौत अस्पताल में हो गई।
1: इसी बीच खेल के मैदान को पुलिस ने घेर लिया। खेल को रोककर सभी दर्शकों की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद 3 और क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन तीनों पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक और भारतीय को ही चुना गया।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गली में मार खेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
0: तो श्रोताओं, आज हम अपने कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में बात करेंगे प्रसिद्ध कथाकार साहित्यकार मन्नू भंडारी जी की। श्रोताओं, शब्दों के शिल्पकार कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उनकी, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को अनेक पहलुओं में बांधे रखा। उन्होंने सहजता, विनम्रता और सरलता को बड़ी ही ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाया और सदा हर भूमिका में, हर सोच में वो आत्मविश्वास से भरी रही।
1: हाँ, उन्हें घर की साज सज्जा, घर की सफाई बहुत ही भाती थी और घर में जब भी कोई मेहमान आने वाले होते तो वो खुद जाकर घर के आसपास लगे फूलों को लाकर उसे घर में सजाया करती थी।
0: उनका घर सजाने का तरीका भी बड़ा कलात्मक था। घर में डाले गए पर्दों को वो स्वयं ही पेंट करके लगाती थी। अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद वो घर के रखरखाव में कोई कमी नहीं आने देती थी
1: और अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों को बुलाकर वो अपने हाथों से नए नए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उन्हें परोसा करती।
0: तो चलिए श्रोताओं, अब हम हमारी आज की शब्दों के शिल्पकार की उस शख्सियत, उस व्यक्तित्व का नाम बता दें जिनके व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातें और आदतें हमने आपको बताई।
1: ये कथाकार उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी, जिनकी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी और देसी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। यूं तो बचपन में उनका नाम महेंद्र कुमारी रखा गया, लेकिन अपने घर में सभी भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण उन्हें प्यार से सब मन्नू बुलाया करते।
0: और जब उन्होंने लेखन आरंभ किया तो अपने इसी घर के लाड़ प्यार भरे नाम को अपनाया और हम सभी उन्हें जानने लगे मन्नू भंडारी के नाम से।
1: मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के ग्राम भानपुर में हुआ था।
0: उनके पिता सुख संपत राय भंडारी साहित्य और कला प्रेमी थे, इसलिए शिक्षा के साथ साथ मन्नू भंडारी में साहित्यिक अभिरुचियों का भी विकास होता गया।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में हुई और फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए की डिग्री हासिल की।
0: हाँ, और यहीं पर मन्नू जी का हिंदी जगत के कई साहित्यकारों से संपर्क प्रारंभ हुआ
1: और फिर वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगी। यहीं पर मन्नू जी की मुलाकात हिंदी कहानीकार राजेंद्र यादव से हुई। एक ही क्षेत्र और विचारों के कारण घनिष्ठता हुई और फिर दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। मन्नू भंडारी में निडरता कूट कूट कर भरी थी, इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने नारे भी लगाए हैं।
0: मन्नू जी की निडरता को मानते हुए उनके पति साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि उनके साहस का ये हाल रहा कि वो बड़े से बड़े व्यक्ति के मुंह पर अपनी बात निर्भय होकर कहती थी।
1: वे निस्वार्थ भाव से उदारता को अपने व्यक्तित्व में समेटे रहती। कूली, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, कोई भी उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते थे।
0: जी, और जानते हैं श्रोताओं, एक बार उनके घर में रखे गहनों की चोरी हो गई। तब मन्नू जी ने कहा, चलो पाप कटा, मुझे यूं भी गहनों का शौक नहीं है।
1: पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम हिंदी के इतने गहरे शब्दों को पढ़ते हैं जिनकी गहराई का हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। उन शब्दों की असीम गहराई का अंदाज और भावनाओं का आनंद हम तभी ले पाते हैं जब हम इसका सही स्थान पर प्रयोग करें।
0: सही कहा। अपनी साहस भरी लेखनी और बेबाक बयानी के कारण ही मन्नू भंडारी ने हिंदी कथा साहित्य जगत में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। साहित्यिक वातावरण में जन्मी मन्नू जी ने साहित्य रचना को ही अपना उद्देश्य रखा और इसमें उन्हें अपने परिवार और पति से पूरा प्रोत्साहन ही मिला।
1: उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में कहानी अधिक है और स्त्री विषय ही केंद्र बिंदु है। समाज के लगभग सभी वर्गों को उन्होंने अपने साहित्य में चित्रित किया है।
0: हाँ, उनकी साहित्यिक रचनाओं के विषयों में भी विविधता नजर आती है। उनके साहित्य में राजनीतिक उपन्यास है तो आम सी कहानी भी है।
1: बिल्कुल, उनके लेखन में कहीं स्त्री की मानसिकता चित्रित है तो कहीं स्त्री पुरुष संबंध के विषय भी है और कहीं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कथाएं।
0: उनके लिखी पहली कहानी है मैं हार गई। ये कहानी मासिक पत्रिका कहानी में पहली बार प्रकाशित हुई और फिर ये सिलसिला चलता गया।
1: सन 1957 में उनका कहानी संग्रह मैं हार गई राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ और इसके बाद और भी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। और वो साहित्य के क्षेत्र को एक से बढ़कर एक रचनाएं देती रहीं।
0: मन्नू भंडारी जी के विचार, मत, सिद्धांत, उनकी पसंद नापसंद आदि बातों को जानकर ही उनके व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं। वो रहन सहन में बहुत ही साधारण थी। चेहरे पर गोल बड़ी सी बिंदी और सादगी के साथ साड़ी पहनना और अपने बालों को सदा जूड़े में समेटे उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सौम्यता भरा अलग ही नजर आता था। वो हमेशा भारतीय नारी का एहसास कराती थी।
1: मनु जी के लेखन में अलग ही विशेषता है जो उन्हें अपने समकालीनों से थोड़ा पृथक करती है। अपनी रचनाओं में उन्होंने कभी भी दया नहीं दिखाई, यानी कोई भी चरित्र कभी दया का पात्र बना ही नहीं।
0: उनकी कहानियां यथार्थ के धरातल पर पड़ी ही रहीं, जिससे पाठक उससे सदा जुड़ाव महसूस करते हैं। उनकी मौलिकता में सुगमता है, सहजता है और साथ ही आत्मीयता का भाव भी झलकता है।
1: मनु भंडारी एक ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में नारी के परंपरागत रूप को झटक कर नवीनता लाने का प्रयास किया।
0: जी हाँ, इस बात का भी उन्होंने अपनी रचनाओं में ख्याल रखा कि वो केवल कोरी कल्पना ही न रह जाएं, बल्कि यथार्थ नजर आएं।
1: प्रत्येक चरित्र को अपनी रचनाओं में ऐसा गढ़ा कि उनका मनोविज्ञान बड़ी ही पृथक्ता से चित्रित किया गया। भारतीय नारी जो आदर्शों में लिपटी छटपटाती है, उसकी आशाएं, आकांक्षाएं और मन की छिपी लालसाओं को उन्होंने अपनी वाणी दे दी।
0: हाँ, उनके द्वारा गढ़े गए नारी पात्र अपने स्वतंत्र अस्तित्व को दिखाते हैं, यानी संवेदनाओं को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित किया है और पाठकों ने उसे खूब पसंद किया। उनकी लिखी रचनाओं में कहानी संग्रह मैं हार गई, बनी निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब और त्रिशंकु हैं।
1: इसके अलावा श्रेष्ठ कहानियाँ, मेरी प्रिय कहानियाँ और सप्त पढ़ना संग्रहों में भी आपकी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं।
0: मन्नू जी के उपन्यासों में एक इंच मुस्कान आपने अपने पति साहित्यकार राजेंद्र यादव के साथ साझा रूप से लिखा है। इसमें पढ़े लिखे और आधुनिकता का आवरण ओढ़े लोगों की प्रेम कहानी है।
1: उनकी सीधी सरल भाषा शैली, किसी भी बात को कहने का सीधा सरल और सधा हुआ अंदाज, कहानी के माध्यम से आम जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी पर उसमें छिपी गूढ़ बातें, जिन्हें सरलता के साथ आम भाषा में कहना उनके लेखन की विशेषताएं रही, जिसने उन्हें लोकप्रिय बना दिया।
0: मन्नू भंडारी कई मायनों में अद्भुत लेखिका रही। नैतिक अनैतिक से परे यथार्थ को उन्होंने सदैव निर्द्वंद नजरों से देखा। उनके इसी दृष्टिकोण ने उनकी लेखनी को नया और आधुनिकता से भरा बनाया।
1: उनका नाटक बिना दीवारों के घर भी काफी चर्चित रहा। वहीं दूसरी ओर नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम व्यक्तित्व की पीड़ा और दर्द को गहराई के साथ महसूस कराने वाले उनके उपन्यास महाभोज पर आधारित नाटक भी खूब लोकप्रिय है।
0: विवाह के टूटने की त्रासदी के बीच में घुट रहे बच्चे को मुख्य पात्र के रूप में रखकर लिखे गए उनके उपन्यास आपका बंटी ने उन्हें शौहरत के शिखर पर पहुंचा दिया, जो हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से एक है।
1: 1974 में आई विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर अभिनीत फिल्म रजनीगंधा तो हम सभी को याद है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाई थी।
0: ये फिल्म मन्नू भंडारी की कृति यही सच है पर बनाई गई थी, जिसे 1975 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इस फिल्म को बासु चटर्जी ने निर्देशित किया था और ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों ही रूपों में सफल साबित हुई। आइए सुनते हैं इसकी कहानी का सारांश, यही सच है।
2: दीपा बेचैनी से शाम का समय काटने की कोशिश कर रही है। पड़ोस की बच्ची आकर कहानी सुनना चाहती है, पर दीपा रूखा सा जवाब नहीं देकर उसे वापस कर देती है। रजनीगंधा के फूलों की महक से समझ जाती है कि संजय आ गया है। वो पुस्तक पर फिर भी ध्यान लगाने की कोशिश करती है। संजय हंसता हुआ पूछता है, नाराज हो? मुझे क्या करना है नाराज होकर? मुझे मनाने की कोशिश करते हुए वो कहता, तुम ही बताओ दीपा, क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके अच्छा भी तो नहीं लगता। मन हुआ कह दूं, तुम्हें तो दोस्तों का ही ख्याल है, बस मेरा नहीं। पर वो उठकर फूलदान में पुराने फूलों को हटाकर नए रजनीगंधा के फूल सजाने लगता है। हम बाहर घूमने निकलते हैं। सुनो, इरा ने लिखा है किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। कहाँ से? कलकत्ता से। यदि तुम्हें वो जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। मैं भी अपना तबादला हेड ऑफिस करवा लूंगा। बात करते करते हम अपनी पसंद की जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। मुझे इंटरव्यू में जाने से बड़ा डर लग रहा है संजय, वो खिलखिलाता है। कलकत्ता में इरा के अलावा मैं किसी को नहीं जानती। और किसी को नहीं जानती? उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाई। निशित भी तो है। होगा, मुझे क्या करना? मैं भन्ना गई, कुछ नहीं करना। देखो संजय, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मैं कमरे में लौट आती हूं। वो चला जाता है। निशित, उससे तो मैं अब नफरत करती हूं। 18 वर्ष की थी तब, वो बचपन का पागलपन था। तभी तो संजय को पाते ही निशित को भूल गई। उसे कैसे बताऊं, मेरी कोमल भावनाओं के केंद्र तो संजय ही हैं। हम सपनों में नहीं, वास्तविकता में जीते हैं। अब संजय को कैसे बताऊं? निशित ने तो मेरा अपमान किया है। मेरा क्या अपराध था? उसका प्यार तो मात्र छल, भ्रम और झूठ था। हावड़ा स्टेशन पर इरा लेने आई। क्यों इरा? इंटरव्यू में कौन कौन होंगे? मुझे तो डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बता, भैया भाभी? मैं मौन रहती हूँ, ये प्रसंग मुझे पसंद नहीं। शाम को कॉफी हाउस में निशित आता है। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? कहाँ ठहरी हो? निशित बदल गया, हुलिया भी दुबला हो गया। वो इरा के घर आने का वादा कर चला गया। पुरानी यादों में एकाएक मेरा मन कटु हो गया। कल आएगा तो बता दूंगी मैं, संजय से विवाह करने वाली हूं। निशित मेरी नौकरी के लिए काफी मेहनत कर रहा है। क्यों? कल कह दूंगी, अब वो मेरे पास ना आए। पर जब वो शाम को आया, मैं कटु ना हो सकी। अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे जीवन के वैवाहिक दिन सुख से गुजरेंगे। मेरा इंटरव्यू हो गया। निशित मुझसे ज्यादा प्रसन्न था। आखिर क्यों? शायद मेरे प्रति किए अन्याय के प्रतिकार में। क्या मैं उसे भूल जाऊंगी? असंभव। तुम इस नीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, निशित बोला। निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। उसने ऐसी बात क्यों की? मैं अपनी ही तंद्रा में रही। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूं। फिर मौन। मुझे पटना में गुजारी सुहानी संध्या याद आती है। कैसी तन्मयता में डूबे रहते थे हम दोनों। शाम को लेक के किनारे। अब तो तुम यहां आ जाओगी? हां। नौकरी के बाद क्या इरादा है? कुछ नहीं, तुम्हारे यहां आने से मैं बहुत खुश हूं। मेरी सांस रुक जाती है। क्या आज भी वो मुझसे प्यार करता है? तो कह दो निशित, कह दो, कह दो तुम मुझसे प्यार करते हो। कलकत्ता से मेरी वापसी। मुझे छोड़ने आई इरा को मैंने जल्दी वापस भेज दिया। लगा निशित जरूर आएगा। वो आया, मैं दौड़ी। आप क्यों आए? जगह अच्छी मिल गई? हाँ। पानी है? हाँ। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच उठी। वो कह नहीं पा रहा। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। जाकर खबर देना, मैं तुम्हें सूचना दूंगा। मेरी आंखें छलछला आईं। उसका हाथ मेरे हाथ से स्पर्श कर गया। मेरे दिमाग में असंख्य बातें आ गईं। लौटकर कमरे के फर्श पर लिफाफा मिला संजय का। मैं निशित को पत्र लिखती हूँ, बालकनी में खड़ी हूँ, उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ। समय नहीं कट रहा, तार मिलता है। इरा का था, नियुक्ति हो गई, बधाई, पर मैं खुश नहीं हो पाई। कुछ दिन बाद निशित का संक्षिप्त सा पत्र मिला, नीचे लिखा, शेष फिर बस। क्यों क्यों नहीं लिख दिया अभी, क्या लिखेगा वो? अचानक आई आवाज, दीप। मैं मुड़ कर देखती हूँ, संजय रजनीगंधा के फूलों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा है। दौड़कर मैं लिपट जाती हूँ, आंसू बहते हैं। संजय का स्पर्श, सुख, ये क्षण ही सत्य है। वो सब झूठ था, मिथ्या थी, भ्रम था।
1: इस फिल्म में नायिका की दुविधा दूर होती है और वो यही सच है को जान जाती है। अब अगर बात मन्नू भंडारी के लेखन और उन पर बनाई फिल्मों की हो रही है तो इस बात का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है कि उनके जीवन के सबसे सफल और चर्चित उपन्यास पर भी एक फिल्म बनाई गई है
0: और वो उपन्यास है आपका बंटी। सन 1986 में एक फिल्म आई थी जिसमें शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा और टीना मुनीम ने अभिनय किया और फिल्म का नाम था समय की धारा। इस फिल्म में बाल कलाकार मास्टर रवि ने बंटी की भूमिका निभाई थी। हालांकि इस फिल्म का अंत उपन्यास से हटकर होने के कारण ये मूल कहानी से अलग हो गई थी।
1: एक साक्षात्कार में इस विषय पर मनु जी ने कहा है कि लेखन और फिल्मांकन दोनों अलग अलग विधाएं हैं। ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि हमने जो लिखा है वो ज्यों का त्यों पर्दे पर आ जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। उसमें मांग के अनुरूप संशोधन किए जाते हैं।
0: आइए सुनते हैं उपन्यास आपका बंटी का सार।
2: छोटा बच्चा बंटी और उसकी माँ शकुन है। ये दोनों ही चरित्र इस उपन्यास में इतने एक दूसरे से जुड़े और अपनी समस्या या त्रासद से उलझे नजर आते हैं कि वो उन्हें दुखद यातना सी नजर आती है। एक बच्चे की उसके टूटते परिवार की संवेदना को उसके नजरिए से व्यथा के रूप में दिखाया है जो एक दुस्वप्न सा हो जाता है। शकुन के जीवन का ये सच है कि उसकी सोच और आत्मनिर्भरता के विचार पति के लिए चुनौती साबित होते हैं। चुनाचे दाम्पत्य तनाव बढ़ता है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि अलगाव की स्थिति आ जाती है। उपन्यास की ये समस्या केवल शकुन की ही नहीं और ना ही उसके पति या बेटे की, बल्कि समाज में अपनी ऊंचाई को बढ़ाकर रखने की लालसा और अपने अस्तित्व को पहचानती, अपने लिए जगह बनाती हर स्त्री का सत्य है। पति पत्नी के बीच चल रहे इस द्वंद का सबसे अधिक बुरा प्रभाव उस नन्हे बच्चे बंटी पर पड़ता है जो असुरक्षित हो जाता है। वो निर्दोष है, निरीह है। उस नन्हे बच्चे पर आई विपदा, मानसिक द्वंद, बच्चे का असहाय महसूस करना, पूरी बात समझ ना पाना, वो सारा बाल मनोविज्ञान मनु भंडारी ने महसूस किया जो बच्चे के बड़े नहीं समझते हैं। उस असहाय बच्चे के चरित्र को गढ़ा जिसका हर पृष्ठ मर्मस्पर्शी है। मनु जी के शब्दों में, लोगों के बीच नहीं, लोगों के मन में जगह बनाना ही असली उद्देश्य है। और वाकई मनु जी ने इस उपन्यास के माध्यम से प्रत्येक पाठक के मन में अपनी अमिट जगह बना ली।
1: मनु भंडारी का एक और उपन्यास स्वामी है जिस पर 1977 में बासु चटर्जी ने शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, उत्पल दत्त और विक्रम को लेकर स्वामी नाम से ही एक फिल्म बनाई थी। हम आपको इस उपन्यास का सारांश सुनवाते हैं।
2: सौदामिनी एक होनहार गांव की लड़की, वो पढ़ना चाहती है। साहित्य और दर्शन में उसकी रुचि है। उसके मामा उसकी इस रुचि को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। सौदामिनी बचपन में ही अपने पिता को खो चुकी है। उसकी धर्मपरायण माँ को बस उसकी जल्दी शादी करवाना है और बस इसी बात को लेकर वो घर में अपने भाई और मिनी से बात करती रहती है। परंतु मिनी गांव के जमींदार के बेटे नरेंद्र को पसंद करती है जो कलकत्ते में पढ़ता है, और गांव आते जाते वो मिनी के मामा के लिए पुस्तकें भी लाता है। मामा मिनी और नरेंद्र के मन की बात जान लेते हैं, पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से मामा की मृत्यु हो जाती है और मिनी की माँ जल्द ही उसका विवाह पड़ोस के व्यापारी घनश्याम से कर देती है। मिनी अपने पति से बेरुखी से पेश आती है, पर उसका पति घनश्याम बहुत समझदार है, कुछ नहीं कहता। कहानी आगे बढ़ती है और मिनी के ससुराल नरेंद्र आता है। मिनी और नरेंद्र के बीच क्या है ये बात खुल जाती है, परंतु मिनी का पति समझदारी से काम लेता है, वो इसे बचपना समझकर माफ कर देता है।
0: श्रोताओं, मनु भंडारी का साहित्य आज भी सभी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 15 नवंबर 2021 को वे इस दुनिया से विदा हो गई। उनकी लिखी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे सादगी से भरी ऐसी रचनाकार थीं जिन्होंने सफलता की ऊंचाई पर जाकर हिंदी साहित्य जगत को अपनी लेखनी से नवीनता और विकास की बातें की। हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा।
1: मनु जी के उपन्यास आपका बंटी हिंदी के बेजोड़ उपन्यासों में से एक है। जब भी 20वीं शताब्दी के उपन्यासों की बात की जाएगी, आपका बंटी अग्रणी पंक्ति में गिना जाएगा।
0: इसे पत्रिका धर्मयुग ने धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया था, जिसे पाठकों का भरपूर प्यार मिला और तब इसका प्रकाशन एक पूरे उपन्यास के तौर पर किया।
1: इसमें एक बच्चे की टूटते हुए परिवार की संवेदना को उसके नजरिए से व्यथा के तौर पर दिखाया गया है, जो एक दुस्वप्न सा हो जाता है। एक छोटा बच्चा बंटी और उसकी माँ शकुन है। ये दोनों ही चरित्र इस उपन्यास में इतने एक दूसरे से जुड़े और अपनी समस्या या त्रासद से उलझे नजर आते हैं कि वे उन्हें दुखद यातना सी नजर आती है।
0: शकुन के जीवन का ये सच है कि उसकी सोच और आत्मनिर्भरता के विचार पति के लिए चुनौती साबित होते हैं। चुनांचे दाम्पत्य तनाव बढ़ता है और इतना बढ़ता है कि अलगाव की स्थिति आ जाती है। उपन्यास की समस्या केवल शकुन की ही नहीं और न ही उसके पति या बेटे की है। समाज में अपनी ऊंचाई को बढ़ाकर रखने की लालसा और अपने अस्तित्व को पहचानती, अपने लिए जगह बनाती हर स्त्री का सत्य है।
1: इस पति पत्नी के बीच चल रहे द्वंद का सबसे अधिक बुरा प्रभाव उस नन्हे बालक मन बंटी पर पड़ता है, जो असुरक्षित हो जाता है। वो निर्दोष है, निरीह है। उस नन्हे बच्चे पर आई विपदा, मानसिक द्वंद, बच्चे का असहाय महसूस करना, पूरी बात समझ न पाना, वो सारा बाल मनोविज्ञान मनु भंडारी ने महसूस किया, जो घर के बड़े नहीं समझ पाते। उस असहाय बच्चे के चरित्र को गढ़ा, जिसका हर पृष्ठ मर्म स्पर्शी है।
0: मनु जी के शब्दों में कहें तो लोगों के बीच नहीं, लोगों के मन में जगह बनाना ही असली उद्देश्य है। और वाकई मनु जी ने इस उपन्यास के माध्यम से प्रत्येक पाठक के मन में अपनी अमिट जगह बना ली। तो श्रोताओं, आज यहीं विराम देते हैं शब्दों के शिल्पकार में। हमने आज बात की प्रसिद्ध कथाकार साहित्यकार मनु भंडारी जी की। अगली बार किसी और शब्द शिल्पी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी संदीप शर्मा
1: और मुझे यानी स्वाति को।
0: लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का और प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
1: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी का उनके शिष्यों के साथ तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता था। आगामी खंडों में जो वार्तालाप संकलित किए गए हैं वे ऐसे व्यक्तियों के साथ स्वामी जी की बातचीत है जो उनके संपर्क में आए थे और प्रिय शिष्य बन गए थे। ये बातचीत अनेक विषयों पर हुई थी, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षा आदि। इन बातचीतों से विभिन्न विषयों पर स्वामी जी के विचारों की जानकारी प्राप्त होती है।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकार हो सकता है तथा फिर से अपने प्राचीन गौरव का स्थान कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका भी निर्देशन स्वामी जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी में इन वार्तालापों में किया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति का विकास होना चाहिए।
0: श्री प्रियनाथ सिंह स्वामी जी के करीबी लोगों में से थे। वे प्रियनाथ सिंह को सिंगी कहकर बुलाते थे। वे अक्सर स्वामी जी से विभिन्न विषयों पर बातचीत किया करते थे और स्वामी जी के विचारों को लिख लेते थे। प्रस्तुत है श्री प्रियनाथ सिंह जी और स्वामी जी की बातचीत के कुछ अंश।
2: बेलुड़ मठ के निर्माण के 2 वर्ष बाद की बात है। सभी स्वामी जी अब वहीं रहने लगे थे। इन्हीं दिनों मैं एक दिन सवेरे स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करने वहां गया हुआ था। मुझे देखकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले,
3: आज तो यहीं रहोगे ना?
2: मैंने कहा, अवश्य। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद मैंने पूछा, महाराज बच्चों की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए?
3: गुरु गृहवास, गुरु के साथ रहना।
2: कैसे?
3: जैसे प्राचीन काल में होता था, किंतु आज की शिक्षा में पाश्चात्य विज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। दोनों ही आवश्यक हैं।
2: पर आज की विश्वविद्यालय की शिक्षा में क्या दोष है?
3: इसमें दोष ही दोष भरे हैं। ये बाबू पैदा करने की मशीन के सिवाय कुछ नहीं है। अगर इतना ही होता तब भी ठीक था, पर नहीं, इस शिक्षा ने मनुष्यों की श्रद्धा और विश्वास की भावनाएं नष्ट कर दी हैं। वे कहते हैं कि गीता तो एक प्रक्षिप्त अंश है और वेद देहाती गीत मात्र हैं। वे भारतवर्ष के बाहर के देशों के संबंध में तो हर बात जानना चाहते हैं, पर यदि उनसे कोई अपने पूर्वजों के नाम पूछे तो 14 पीढ़ी तो दूर रही, 7 पीढ़ी तक भी नहीं बता सकते।
2: पर इससे क्या हुआ? वे अपने पूर्वजों के नाम नहीं जानते तो क्या हानि है?
3: नहीं, ऐसा मत सोचो। जिस राष्ट्र का कोई अपना इतिहास नहीं है वो अत्यंत ही हीन और नगण्य बना रहता है। क्या तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति जिसे सदैव इस बात का विश्वास और अभिमान है कि वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है कभी दुश्चरित्र हो सकेगा? ऐसा क्यों होता है? उसमें जो आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव है वो सदैव उसके विचार और कार्य को इतना नियंत्रित रखता है कि ऐसा व्यक्ति सतमार्ग से च्युत होने की अपेक्षा हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन कर लेगा। इसी तरह है, राष्ट्र का गौरवमय अतीत राष्ट्र को नियंत्रण में रखता है और उसका अधः पतन नहीं होने देता। पर मैं जानता हूं तुम कहोगे कि हमारा ऐसा कोई अतीत, ऐसा इतिहास ही नहीं है।
2: पर सभी को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान नहीं है। हम भारतीयों को अपने इतिहास पर गर्व भी नहीं है।
3: जो तुम्हारी तरह सोचते हैं उन्हीं के लिए हमारे राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है और तुम्हारे विश्वविद्यालयों के उन तथा कथित विद्वानों के लिए नहीं है और उन लोगों के लिए नहीं जो कि पाश्चात्य देशों का एक चक्कर मारकर यूरोपीय वेशभूषा से सुसज्जित हो भारत लौट आते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस जंगली हैं। हाँ, ये सच है कि दूसरे देशों का जैसा इतिहास है वैसा हमारा नहीं है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि हमारे पास कोई इतिहास ही नहीं है। जैसे हम भात खाते हैं और अंग्रेज लोग भात नहीं खाते, तो इस पर से क्या तुम ये निर्णय कर लोगे कि अंग्रेज भूखे मरते हैं और कुछ दिनों में नष्ट हो जाएंगे? उनके देश में उनकी जलवायु के अनुकूल जो सरलता से वे उत्पन्न कर लेते हैं वही खाकर वे पनपते और पुष्ट होते हैं। इसी तरह हमारे लिए जैसा आवश्यक है वैसा हमारा भी अपना इतिहास है और अपनी आंखें बंद कर लेने और चिल्लाने से कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है वो क्या नष्ट हो जाएगा? जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं वे जानते हैं कि हमारा इतिहास कितना उज्ज्वल है और वो देश को किस प्रकार जीवित रख रहा है।
2: इसे देखने के लिए उचित आंखें होनी चाहिए, हम में वो दृष्टि कहाँ।
3: आज उस इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है। पाश्चात्य शिक्षा से हमारे युवकों की बदली हुई विचारधारा और बुद्धि को सामने रखकर आज उस गौरवमय इतिहास को फिर से लिखना होगा, जिससे पाश्चात्य सभ्यता से चकित और चकाचौंध में भ्रमित हमारे युवक उसे समझ सकें।
2: ये किस प्रकार करना होगा?
3: ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। उसके लिए पहले हमें गुरु गृहवास और उस जैसी अन्य शिक्षा प्रणालियों को पुनर्जीवित करना होगा। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। दूसरी बात जिसकी आवश्यकता है वो है उस शिक्षा पद्धति का निर्मूलन जो मार मार कर गधों को घोड़ा बनाना चाहती है।
2: इससे आपका क्या मतलब है?
3: देखो, कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक ये समझता है कि वो कुछ सिखा रहा है, सब गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित है, केवल उसके जागृत होने की आवश्यकता है, और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वे अपने हाथ पैर आंख कान का समुचित उपयोग भर करना सीख लें, और फिर सब आसान है। पर इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं कढ़ी और चटनी जैसी हैं। केवल कढ़ी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है, और केवल भात खाने से भी। हमारे शिक्षा शास्त्री हमारे बच्चों को केवल तोता बना रही हैं और रटा रटा कर उनके मस्तिष्क में कई विषय ठूंसते जा रही हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें वाइस राय का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सुधार करने का प्रस्ताव किया है।
2: परंतु स्वामी जी, हमें तो ये मालूम है कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से उसे इतना महंगा कर देना चाहा कि लड़कों की पहुंच के लगभग बाहर हो जाएगी।
3: हाँ, इससे शिक्षा करीब करीब बंद ही हो जाएगी, और देश को कम से कम कुछ सांस लेने और विचार करने का समय तो मिलेगा। वाह, ग्रेजुएट बनने के लिए क्या दौड़ धूप, क्या गहमा गहमी लगी है, और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, और आखिर में वे सीखते क्या हैं? बस यही कि हमारा धर्म आचार विचार और रीति रिवाज सब खराब हैं, और पाश्चात्यों की सब बातें अच्छी हैं। इस तरह महानाश को निमंत्रित कर रहे हैं। आखिर इस उच्च शिक्षा के रहने या ना रहने से क्या बनता बिगड़ता है? ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय पेट तो भर सकेंगे।
2: हाँ, मारवाड़ी इस बात में होशियार है, वे नौकरी नहीं करते और कोई ना कोई व्यापार में लग जाते हैं।
3: बकवास है, वे इस देश को रसातल में पहुंचा रही हैं, अपने स्वार्थ को भी नहीं समझते। उनसे तुम लोग कहीं ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कल कारखानों से वस्तुओं के निर्माण की ओर है। मारवाड़ी लोग अपने व्यापार में जो पैसा लगाते हैं और जिससे उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, उससे तो ज्यादातर विदेशियों की ही जेब भरते हैं। यही पैसा अगर वे कुछ कल कारखानों को खोलने में लगाएं, तो देश की भलाई होगी और उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। केवल काबुली लोग ही नौकरी की परवाह नहीं करते, उनकी नस नस में स्वतंत्रता की भावना भरी है। उनको जरा नौकरी कर लेने की बात कह दो, फिर देखो क्या होता है।
2: पर महाराज, यदि उच्च शिक्षा बंद हो गई तो लोग फिर पहले जैसे मूर्ख बने रहेंगे।
3: क्या मूर्खता भरी बात कहते हो, क्या कभी सिंह भी सियार हो सकता है? हमारे कहने का क्या मतलब है? क्या कभी संभव है कि सृष्टि के आदिकाल से जिस देश की संतान अखिल विश्व को शिक्षा देती आ रही है, केवल इसलिए मूर्ख बन जाएगी कि लॉर्ड कर्जन उच्च शिक्षा बंद कर रहे हैं?
2: पर जरा सोचिए तो कि हमारे देशवासी अंग्रेजों के आगमन के पूर्व क्या थे और अब क्या हो गए हैं?
3: भौतिक शास्त्रों का अध्ययन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का यंत्रों द्वारा उत्पादन, क्या यही उच्च शिक्षा का अर्थ है? उच्च शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाना, और आज का सभ्य संसार आज भी इन्हीं समस्याओं पर गहन चिंतन कर रहा है। किंतु हमारे देश में सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही ये गुत्थियाँ सुलझा ली गईं।
2: पर आपका वेदांत भी तो लुप्त प्राय ही हो रहा था।
3: संभव है, काल के प्रवाह में कभी कभी ऐसा भास होता है कि वेदांत का महान प्रकाश अब बुझा। और जब ऐसी स्थिति आती है तब भगवान मानव देह धारण कर पृथ्वी पर आते हैं और फिर धर्म में पुनः एक ऐसी शक्ति, ऐसे जीवन का संचार हो जाता है कि वे फिर एकाध युग तक अदम्य उत्साह से आगे बढ़ता जाता है। आज वही शक्ति है और जीवन उसमें फिर आ गया है।
2: पर महाराज, इसका क्या प्रमाण है कि भारत ने ही शेष संसार को शिक्षित किया है?
3: संसार का इतिहास ही इसका साक्षी है। उचित शोध लगाने पर यही पाया जाता है कि विश्व में ज्ञान की जो विविध शाखाएं हैं, जो शास्त्र और उदात्त विचार हैं, उनका उद्गम भारत से ही हुआ।
0: प्रियनाथ जी से बात करते करते स्वामी जी थक गए थे, पर वे रुके नहीं। स्वामी जी का मुख एक अलौकिक आभा से दीप्त हो गया और वे बड़े उत्साह से इस विषय पर बड़ी देर तक बोलते रहे। उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और बहुत ज्यादा गर्मी से उनका गला सूख रहा था। उन्हें बार बार प्यास लग रही थी और वे पानी पीते जाते थे। अंत में उन्होंने कहा, सिंगी, कृपया मेरे लिए एक बर्फ के पानी का ग्लास मंगाओ, मैं फिर तुमको सब अच्छी तरह समझा दूंगा। पानी पीकर वे फिर बोलने लगे।
3: समझे ना, आज आवश्यकता है विदेशी नियंत्रण हटाकर हमारे विविध शास्त्रों, विद्याओं का अध्ययन हो और साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान भी सीखा जाए, जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन भी कर सकें और भविष्य के लिए कुछ बचा भी सकें।
2: तोलिया संस्कृत पाठशालाओं के बारे में आपका क्या कहना है?
3: क्या तुमने उपनिषदों की कथाएं नहीं पढ़ी है? मैं अभी एक कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मचारी सत्यकाम गुरु के पास अध्ययन के लिए गया। गुरु ने उसे गाय चराने के लिए जंगल में भेज दिया। गाय चराते चराते कई मास व्यतीत हो गए, गायों की संख्या भी दुगनी हो गई। तब सत्यकाम ने आश्रम लौट चलने का विचार किया। मार्ग में एक वृषभ, अग्नि तथा कुछ अन्य प्राणियों ने सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। जब शिष्य आश्रम में गुरु को प्रणाम करने पहुंचा तो गुरु ने उसे देखते ही जान लिया कि उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस कथा का सार यही है कि सच्ची शिक्षा सर्वदा प्रकृति के संपर्क में रहने से ही प्राप्त होती है। ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
2: इससे आपका क्या मतलब है?
3: पंडितों के टोल और पाठशालाओं में पढ़कर तो मनुष्य जीवन भर बंदर बना रहता है। बाल्यावस्था से ही ज्वाजल्यमान उज्ज्वल चरित्र युक्त किसी तपस्वी महापुरुषों के सहवास में रहना चाहिए, जिससे कि उच्चतम ज्ञान का जीवित आदर्श सदैव दृष्टि के समक्ष रहे। केवल पढ़ लेने से कि मिथ्या भाषण पाप है कोई लाभ नहीं। हर एक को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लेना चाहिए, तभी हृदय में श्रद्धा और भक्ति का उदय होगा। नहीं तो जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं वो मिथ्या क्यों नहीं बोलेगा। हमारे देश में अध्ययन का महान कार्य सदैव निष्प्रह और त्यागी पुरुषों ने ही किया है। कालांतर में पंडितों ने ज्ञान और विद्याओं पर एकाधिपत्य कर पाठशालाओं की चार दीवारी में बंद कर दिया और इस तरह देश का अधःपतन होना शुरू हो गया। जब तक अध्यापन कार्य त्यागी पुरुषों ने किया तब तक भारत समृद्ध बना रहा।
2: महाराज, आपका क्या अर्थ है? दूसरे देशों में तो सन्यासी नहीं है, पर देखिए उनकी ज्ञान गरिमा से आज भारत उनके चरण चूम रहा है।
3: मेरे मित्र, व्यर्थ की बातें मत बोलो, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। जब तक इस देश में अध्यापन और शिक्षा का भार त्यागी और निष्प्रह वहन नहीं करेंगे तब तक भारत वर्ष को दूसरे देशों के तलुए चाटने पड़ेंगे। तुम नहीं जानते किस तरह एक निरक्षर युवक ने अपनी निष्प्रहता और त्याग के प्रभाव से तुम्हारे दिग्गज पंडितों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी से विष्णु प्रतिमा खंडित हो गई। पंडितों की एक सभा हुई और उन्होंने अपने पुराने पोथे और ग्रंथ देखकर निर्णय दिया कि खंडित मूर्ति का पूजन शास्त्र विरुद्ध है और नई मूर्ति की प्रस्थापना की जाए। इस पर काफी वाद विवाद और शोरगुल मचा। अंत में श्री राम कृष्ण बुलाए गए। उन्होंने सब कुछ सुनकर पूछा, क्या पति पंगु हो जाए तो पत्नी उसे त्याग देगी? फिर क्या हुआ? पंडितों ने ये तर्क सुना तो मुंह से शब्द नहीं निकला, मूक हो गए। और इस सरल कथन के सामने उनके शास्त्र और भाष्य एक और धरे के धरे रह गए। यदि पंडितों की शिक्षा प्रणाली ठीक थी तो श्री रामकृष्ण क्यों अवतार धारण करते और क्यों पुस्तकीय ज्ञान का उपहास करते? उनके साथ जिस नूतन जीवन शक्ति का आविर्भाव हुआ, उससे जब हमारी शिक्षा ओतप्रोत हो जाएगी तब ही सफलता प्राप्त होगी।
2: पर ये कहना सरल है, करना कठिन।
3: यदि ये कार्य सरल होता तो श्री रामकृष्ण को अवतार धारण करने की आवश्यकता न पड़ती। अब तुम्हें जो करना है वो ये कि नगर नगर और ग्राम ग्राम में एक मठ की स्थापना की जाए। क्या तुम ये नहीं कर सकते? अधिक नहीं, कुछ तो करो ही। कलकत्ते के बीच में एक मठ स्थापित करो। एक सुशिक्षित साधु उसका अध्यक्ष रहे और उसके निरीक्षण में दो सन्यासी विज्ञान व अन्य विषयों का अध्यापन करें।
2: आपको ऐसे सन्यासी कहाँ मिलेंगे?
3: हमें ऐसे सन्यासियों का निर्माण करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे युवकों की आवश्यकता है जिनके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना प्रज्वलित हो। एक त्यागी पुरुष जितना शीघ्र किसी विषय पर अधिकार प्राप्त कर सकता है उतना अन्य कोई नहीं कर सकता।
0: कुछ समय बाद स्वामी जी बोले,
3: सिंगी, हमारी शताब्दी में इतना अधिक काम करना है कि मेरे और तुम्हारे जैसे सहस्त्र सहस्त्र मानवों की आवश्यकता है। केवल बोलने से क्या हो सकता है? देखो देश कितनी विपत्र और दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गया है। इस समय कुछ करो। बच्चों के लिए उपयोगी एक पुस्तक तक तो इस देश में नहीं है।
2: क्यों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इतनी सारी किताबें तो हैं। मेरा ऐसे कहते ही स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले,
3: इनमें यही पढ़ते हो ना, ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप सुबल अति सुबोध बालक आदि आदि। पर इससे काम नहीं चलने का। हमें बंगाली और साथ साथ अंग्रेजी में कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए जिनमें बहुत ही सरल और सीधी भाषा में रामायण महाभारत और उपनिषदों की कथाओं का संग्रह हो और फिर ये पुस्तकें बालकों को पढ़ने के लिए दी जाएं।
2: 11 बज रहे थे, आकाश में बादल घिर आए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। वर्षा होने की संभावना से स्वामी जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उठकर कहा, चलो सिंगी, चलो गंगा तट पर चलो। हम दोनों चल पड़े। मार्ग में स्वामी जी ने कालिदास के मेघदूत के कई श्लोक सुनाए, पर विचारधारा का अंततः प्रवाह एक ही था, भारत का हित। वे बोले,
3: सिंगी, तुम एक काम कर सकते हो, क्या कुछ दिनों तक हमारे युवकों के विवाह बंद नहीं कर सकते?
2: महाराज, ये कैसे होगा जब सभी बाबू विवाहों में होने वाले व्यय को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
3: तुम इसकी चिंता ना करो, काल का प्रवाह कौन बदल सकता है। इस प्रकार के सब आंदोलन व्यर्थ हैं। कुछ दिन शोरगुल रहेगा, फिर सब शांत हो जाएंगे। विवाह शादियां जितनी ज्यादा खर्चीली होती जाएंगी उतना ही देश का भला होगा। परीक्षाएं पास करने और फिर विवाह करने के लिए कितनी भगदड़ कितनी दौड़ धूप हो रही है। ऐसा लगता है कोई कुंवारा नहीं बचेगा। पर अगले वर्ष फिर वही हाल होता है।
2: फिर क्या करना चाहिए?
3: यदि मुझे कुछ अविवाहित ग्रेजुएट मिल जाएं, तो मैं उन्हें जापान भेजकर उन्हें यांत्रिक शिक्षा दिलाने का प्रबंध कर दूंगा, जिससे कि जब वे स्वदेश लौटें, तो अपने ज्ञान से भारत का कुछ हित कर सकें।
2: महाराज, इंग्लैंड की अपेक्षा जापान जाना क्या हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगा?
3: अवश्य। मेरे मत में हमारे शिक्षित धनी व्यक्ति यदि जापान जाएं और वहां का हालचाल देखें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी।
2: वो कैसे?
3: जापान में तुम पाओगे कि उन्होंने दूसरों से जो सीखा है उसे आत्मसात कर अपना बना लिया है, पचा लिया है। हमने जो विदेशियों से सीखा उसे हम पचा नहीं पाए। उन्होंने यूरोप वासियों की हर चीज ग्रहण की, पर वे जापानी ही बने रहे, यूरोपीय नहीं बने। पर हमारे यहाँ तो पाश्चात्य ढंग से रहने का एक संक्रामक रोग पैदा हो गया है।
2: महाराज, मैंने कुछ जापानी चित्रकला के नमूने देखे हैं। उनकी कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, और स्फूर्ति का स्रोत उनकी अपनी संस्कृति है, उसमें नकल उनकी प्रेरणा नहीं है।
3: बिल्कुल ठीक है। आज जापान एक महान राष्ट्र है और इसका कारण है उनकी कला। देखते नहीं, हमारे समान वे भी एशियावासी हैं, और यद्यपि आज हम अपना सर्वस्व खो बैठे हैं, फिर भी जो कुछ हमारे पास अवशेष है वही विश्व को चकित कर देने के लिए काफी है। एशिया की आत्मा ही कलात्मक है। एशिया का हृदय चिरकाल से कला की क्रीड़ा स्थली रहा है। एशियावासी कला शून्य वस्तु का कभी उपयोग ही नहीं करते, उसका उपयोग ही हर वस्तु कला से शोभित है। तुम नहीं जानते, हमारे यहाँ कला हमारे धार्मिक जीवन का एक अंग बन गई है। हमारे देश में कई युवती तीज त्योहार पर्व उत्सव के दिन यदि घर के आंगन और दीवार पर सुंदर चित्र बनाना जानती है तो उसकी कितनी प्रशंसा होती है। श्री राम कृष्ण स्वयं कितने महान कलाकार थे।
0: अंग्रेजों की कला भी अच्छी है, नहीं क्या?
3: तुम कितने अनाड़ी हो, पर तुम्हें दोष देने से क्या लाभ, जबकि सर्व साधारण की यही धारणा है। अफसोस, आज देश की यही दशा हो गई है। आज हम अपने सोने को पीतल समझ बैठे हैं और दूसरों का पीतल हमारे लिए सोना बन गया है। वो हमारी आधुनिक शिक्षा का जादू है। देखो, यूरोपीय जब एशिया के संपर्क में आए हैं तब से कहीं उन्होंने अपने जीवन को कलामय बनाने का प्रयत्न शुरू किया।
0: महाराज, यदि कोई आपकी बात सुनेंगे तो कहेंगे कि आप निराशावादी हो रहे हैं।
3: स्वाभाविक है, जो जड़ हो गए हैं वे और क्या सोच सकेंगे। उफ, कोई मेरी आंखों से देखे, उनकी इमारतें देखो, वे कितनी साधारण कितनी अर्थशून्य हैं। इन विशाल सरकारी इमारतों को देखो, क्या उनका बाह्य स्वरूप देखकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस भाव किस आदर्श की प्रतीक है? नहीं, क्योंकि वे सब प्रतीक शून्य है। पाश्चात्यों का पहनावा ही लो, उनके तंग कोट सीधे पैंट शरीर पर इतने तंग और चिपके होते हैं कि बिल्कुल भद्दे मालूम देते हैं। नहीं, पर हम लोग पता नहीं उसमें क्या सुंदरता देखते हैं। जिसे देखो कोट पतलून ठासे है। इस देश का भ्रमण तो करो, और यदि देखने के लिए आंखें हैं समझने के लिए बुद्धि है तो देखो इस देश की प्राचीन इमारतों को देखो। उनके देखने भर से ही मालूम होता है कितनी कला भरी है। उनका जलपात्र है कांच का गिलास, पर हमारा है धातु निर्मित लोटा। दोनों में कौन कलापूर्ण है? तुमने देहातों में किसानों के घर देखे?
0: जी हाँ, अवश्य।
3: उनमें क्या देखा?
0: महाराज, वे अत्यंत साफ सुथरे होते हैं और रोज उनका आंगन लीपा पोता जाता है।
3: क्या तुमने उनके अन्न भंडार देखे? उनमें कितनी कला है। उनकी मिट्टी की दीवारों पर भी कितने प्रकार के चित्र बने होते हैं। और जरा पाश्चात्य देशों में जाकर देखो निम्न वर्ग के लोग किस तरह रहते हैं, तब तुम्हें मालूम होगा कि दोनों में कितना महान अंतर है। उनका आदर्श है उपयोगिता, हमारा है कला। पश्चिम का निवासी हर एक वस्तु में उपयोगिता ढूंढता है और हम कला। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर हमने कला पूर्ण लोटा तो फेंक दिया और उसके स्थान पर घरों में विदेशी इनामेल के गिलास विराजमान हो गए हैं। हमने इस उपयोगितावाद के आदर्श को इस सीमा तक अपना लिया है कि अब वो हास्यास्पद लगने लगा है। अब हमें उपयोगिता और कला के समन्वय की आवश्यकता है। जापान ये समन्वय लाने में जल्दी सफल हो गया और उसने अभूतपूर्व प्रगति कर ली। अब जापान पाश्चात्य देशों को भी सिखाने की क्षमता रखता है।
0: विश्व में किस राष्ट्र की वेशभूषा सर्वोत्तम है?
3: आर्यों की। यूरोप वासी भी इसे स्वीकार करते हैं। आर्यों के परिधान की पटलियां किस कलापूर्ण ढंग से लटकती हैं। अधिकांश देशों के राजवस्त्र आर्यों के वेशभूषा की ही नकल हैं। उनमें भी आर्यों के समान पटलियां बनाकर लटकाने का यत्न किया जाता है और इन राजवस्त्रों में व उन देशों के सर्वसाधारण की वेशभूषा में बहुत अंतर है। सिंगी, तुम भी ये भद्दे यूरोपीय कमीज पहनना छोड़ दो।
0: क्यों महाराज?
3: इसलिए कि पाश्चात्य लोग इसका केवल अंतर वस्त्र के रूप में ही प्रयोग करते हैं। वे उसे सदैव कोट और जैकेट के नीचे ही पहनते हैं, केवल कमीज कभी नहीं पहनते। पर हम भारतीय कितनी भूल कर रहे हैं, जिसे देखो कोट पतलून कमीज धारण करने में गर्व का अनुभव करता है, जैसे वेशभूषा के संबंध में कोई नियम ही ना हो, कोई विधि परिपाटी या प्रणाली ही ना हो, और जिसकी जो मर्जी आए और जो दिखे वही कपड़े पहन ले। हमारे यहाँ किसी और का छुआ अन्न यदि कोई खा लेता है तो उसे जात से बाहर कर देते हैं। यदि यही नियम विदेशी वेशभूषा धारण करने पे लगवाया जाए तो कितना अच्छा होगा। अपनी प्राचीन भारतीय वेशभूषा क्यों धारण नहीं की जाती? इस यूरोपीय कोट कमीज के पहनने में कौन सी शान है, क्या अर्थ है?
2: अब वर्षा होने लगी और भोजन बेला सूचक घंटी भी बज गई थी, इसलिए सबके साथ हम भी प्रसाद ग्रहण

0: ये मांस मछली खाना संभव है?
1: क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा तो खा ही सकते हैं। एक दिन में पाव भर काफी है। हमारा सबसे बड़ा दोष है आलस, और यही हमारी गुलामी का कारण है। समझो किसी की नौकरी छूट गई, या घर में जो दो तीन आदमी कमाने वाले थे उसमें से कोई मर गया, तो लोग क्या करते हैं? वे या तो बच्चों का दूध बंद कर देते हैं, या एक बार खाते हैं, कभी शाम को भात ही खाकर सो जाते हैं।
0: पर ऐसी परिस्थिति में और कर भी क्या सकते हैं?
1: पर वे ज्यादा मेहनत कर थोड़ा सा और कमा लेने का प्रयत्न क्यों नहीं करते, जिससे कम से कम दो बार भोजन तो मिल ही जाए। पर नहीं, मेहनत कौन करे, उन्हें अड्डों पर जाकर गप्पे लगाने और समय नष्ट करने की आदत जो पड़ गई है। अगर वे जाने कि वे समय का कितना नाश और दुरुपयोग कर रही हैं, तो इस देश की काया पलट हो जाए।
2: आपने अब तक की बातचीत से स्वामी जी को विभिन्न विषयों पर बोलते सुना। इसी तरह की सारगर्भित बातचीत का अंश हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। इन वार्तालापों से स्वामी जी के बहुमुखी व्यक्तित्व का ज्ञान हमें होता है। उनके सुस्पष्ट विचार हमेशा मौलिक हुआ करते थे। लोग शायद उनके सभी विचारों से सहमत ना हों, परंतु ये विचारोत्तेजक उद्गार हमें उन विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनिएगा 7:20 से। बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर सुनिएगा कार्यक्रम वतन का राग 8 बजे से। प्रकृति के पुकार ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 8:30 से।

सुबह 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम योग संवाद। अब्बास तैयब जी की पुण्यतिथि पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम सुनिएगा 9:30 से।

परिक्रमा और रेडियो रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे 10 बजे से। हरे कृष्ण तलवार की शहादत पर केंद्रित कार्यक्रम आजाद हिंद सुनेगा 10:30 से।

निजी स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनेगा आयुर्वेद में प्रकृति का स्वास्थ्य से संबंध विषय पर बातचीत। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी कल प्रातःकालीन

रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।